0: ये जो जीवन की लय है, सब कुछ पहले से ही तय है। इसलिए जय रघुनंदन, जय सियाराम।
1: श्री रामचंद्र आशीष
0: पारिजात, तुम्हें प्रणाम। आप सुन रहे हैं।

जय रघुनंदन जय सियाराम। आप सुन रहे हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रेडियो का ये खास प्रोग्राम हमारे संग संगीता माल्या दुबई से। और जब राम जी

आप सुन रहे हैं पायो जीवनी राम रतन मोहन पायो प्रोग्राम राम रेडियो से डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये राम रेडियो है। आपकी आवाज आपकी पहचान। आज की पायलट सिंगर

ऐसा ही सुख हमें मिला है इस प्रोग्राम को सुन के संगीता जी। पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। बहुत आभार इस प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट को साथ।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड राम रेडियो का विशेष आयोजन पायो जी मैंने राम रतन मोहन पायो।
1: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और स्वयं।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेतु दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल है, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्याशंकर

यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपी आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठे खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठे खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाए तो एक चीज हमारे बीच स्वरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, एमडी त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मुंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
4: आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्ति में प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न तो कोई आरंभ है और न कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ भोर भई अब जा

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहां भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप ले।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

मत खो। दोस्तों, आदि शक्ति को सनातन निराकार परब्रह्म जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर और भाव से चलें तो बहुत पास, नजरों से देखें तो कण कण में और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, आप सभी के जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा क्षण अवश्य आया होगा जब आपने अपने अंतर्मन के तार उस अलौकिक आदर्श शक्ति से जुड़े हुए महसूस किए होंगे। कुछ ऐसे ही अनुभूति ये भजन सुनकर आपको अवश्य होगी, जिसे लेकर आ रहे हैं संजय गुप्ता जी।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मजरू सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए

आपने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं।

0: वाह संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार।

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाए समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्कार।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: चाहिए सही दिशा और उज्जवल भविष्य, तो आज ही जुड़िए MIT ढालवाला ऋषिकेश मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, फार्मेसी और होटल मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में। साथ ही उपलब्ध है MSc बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और IT जैसे PG डिग्री कोर्सेज। और अगर आपका सपना है शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना, तो BEd और MEd जैसे कोर्सेज भी हैं।
3: जय श्री कृष्ण मित्रों,
2: MIT ऋषिकेश से आए बेहतर शिक्षा, अनुभवी फैकल्टी और शानदार करियर अवसर। हमारा पता है ढालवाला ऋषिकेश, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9412।

0: अरे
1: मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ प्रेरणा पुंज चैनल पर, जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं, वह भी बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में हमने बड़ी गहराई से जाना कि आत्मा और भौतिक शरीर में क्या अंतर है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, जबकि यह शरीर नश्वर है, परिवर्तनशील है। इसी के साथ हमने यह भी समझा कि मनुष्य को जीवन में किन किन कर्मों का चयन करना चाहिए और किन कर्मों के फल उसे किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गीता के 14वें अध्याय की ओर। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें यह दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं कि संपूर्ण सृष्टि और हमारा स्वभाव तीन गुणों में बटा हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यही तीनों गुण हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं आपको ले चलता हूं इस अलौकिक यात्रा पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय की शिक्षाओं को सरल शब्दों में समझेंगे और जानेंगे कि इन गुणों को पहचान कर हम अपने जीवन को किस प्रकार दिव्य और श्रेष्ठ बना सकते हैं। मित्रों, अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 गुण विभाग योग पर। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर अपने प्रिय शिष्य और सखा अर्जुन को श्रेष्ठतम ज्ञान प्रदान किया। यहां वे बताते हैं कि जीवात्मा किस प्रकार जड़ प्रकृति में आकर बंधन में पड़ जाता है। कारण यह है कि प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जीवात्मा को अपने प्रभाव में बांध लेते हैं और उसे जन्म मरण के चक्र में बनाए रखते हैं। आज के आधुनिक वैज्ञानिक यह कहते हैं कि इस जगत की रचना तीन मूल तत्वों, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आधारित है। परंतु मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पूर्व ही यह रहस्य उद्घाटित कर दिया था कि वास्तव में यह संपूर्ण प्रकृति तीन गुणों से निर्मित है और इन्हीं से संचालित होती है। प्रकृति अनादि है, शाश्वत है, किंतु जीवात्मा इन तीनों गुणों की पकड़ में आकर बंधा रहता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण विस्तार से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का स्वरूप तथा उनके प्रभाव को समझाते हैं, जिससे मनुष्य यह जान सके कि कौन सा गुण उसके जीवन पर हावी है और उसे किस दिशा में ले जा रहा है। मित्रों, इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परम भूय है प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। अर्थात, अब मैं तुम्हें पुनः वह सर्वोच्च ज्ञान सुनाऊंगा जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसे जानकर महान संत और ऋषि मुनि परम सिद्ध अर्थात मोक्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। यह वह दिव्य ज्ञान है जो आत्मा को भौतिक बंधनों से मुक्त कर परम सत्य से जोड़ता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में भौतिक शक्ति प्रकृति की प्रकृति का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि यही शक्ति शरीर और उसके समस्त तत्वों की जननी है और इसी से मन तथा पदार्थ दोनों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकृति को तीन प्रमुख गुणों, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ने बांध रखा है। शरीर, मन और बुद्धि, जो सब प्राकृत शक्ति से बने हैं, इन तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं और यही गुणों का मिश्रण प्रत्येक जीव के स्वभाव, उसके व्यक्तित्व और जीवन पथ को निर्धारित करता है। सत्वगुण शांति, संतुलन, करुणा, सद्गुण और शुद्धता का प्रतीक है। यह मनुष्य को ज्ञान, प्रकाश और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। रजोगुण निरंतर इच्छाओं, भोग वासनाओं और सांसारिक आकर्षणों को बढ़ाता है। यह महत्वाकांक्षा और कर्मशीलता तो देता है, लेकिन साथ ही चित्त को अशांत और असंतोषी भी बना देता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य, मोह, नशे और निद्रा का कारण है। यह जीवात्मा को जड़ता और अंधकार की ओर धकेलता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब तक आत्मा जागृत नहीं होती और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक उसे इन तीनों गुणों की प्रबल शक्तियों से जूझना पड़ता है। सच्ची मुक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठने में है। जब जीवात्मा स्वयं को केवल आत्मा के रूप में अनुभव करता है और अपनी चेतना को परमात्मा में स्थिर कर देता है, तभी वह गुणातीत अर्थात गुणों से परे होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। मित्रों, यही इस अध्याय का सार है कि मनुष्य को इन तीन गुणों की पहचान करनी चाहिए। उनमें से सत्व को अपनाते हुए धीरे धीरे गुणातीत होकर उस परम शांति और आनंद को प्राप्त करना चाहिए जो केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही संभव है। आगे श्री कृष्ण बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं कि इन तीन गुणों सत्व, रजस और तमस के बंधनों को काटने का एक सरल और सर्वोत्तम उपाय है। वे कहते हैं कि परम शक्तिशाली भगवान स्वयं इन गुणों से परे हैं, अर्थात वे गुणातीत हैं। जब मनुष्य अपना मन, बुद्धि और चित्त पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त कर देता है, तब धीरे धीरे उसका मन भी दिव्यता की ओर अग्रसर होता है और वह सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त होने लगता है। इस बिंदु पर अर्जुन बड़ी विनम्रता से पूछते हैं कि हे माधव, जो व्यक्ति इन तीन गुणों से परे हो जाता है, उस प्रबुद्ध आत्मा के लक्षण क्या होते हैं? वह किस प्रकार आचरण करता है और संसार में रहकर भी कैसे इन गुणों के प्रभाव से अछूता रहता है? तब श्री कृष्ण अत्यंत करुणा और सहानुभूति के साथ ऐसे दिव्य व्यक्तियों के लक्षणों का निरूपण करते हैं। वे बताते हैं कि गुणातीत पुरुष सदैव संतुलित, स्थिर और धैर्यवान रहते हैं। वे संसार में तीन गुणों के कार्य व्यापार को पहचानते हैं और व्यक्तियों, पदार्थों तथा परिस्थितियों में गुणों के प्रभाव को देखकर भी विचलित नहीं होते। उनके लिए सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान समान हो जाते हैं। वे किसी भी परिस्थिति में न तो अत्यधिक हर्षित होते हैं और न ही गहन दुखी। ऐसे ज्ञानी लोग सब वस्तुओं और परिस्थितियों को भगवान की ही शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। वे समझते हैं कि सब कुछ अंततः परमेश्वर के नियंत्रण में है, इसीलिए वे किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते। संसार की घटनाएं उन्हें मोहग्रस्त या भयभीत नहीं करती। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि गुणातीत पुरुष आसक्ति और द्वेष से रहित होते हैं। वे किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक मोह नहीं रखते और न ही किसी से घृणा करते हैं। वे करुणा से पूर्ण होते हैं, परंतु भावनाओं के बंधन में बंधकर निर्णय नहीं लेते।

उनकी दृष्टि सब में संभव की होती है। इस प्रकार बिना विचलित हुए वे अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। वे न तो बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित होते हैं और न ही भीतर के गुणों के उतार चढ़ाव से। वे केवल भगवान में स्थिर होकर शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा। हे महाबाहु अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों सत्व, रजस और तमस से निर्मित है। यही गुण अविनाशी और शाश्वत आत्मा को नश्वर शरीर और उसकी सीमाओं के बंधन में डाल देते हैं। भगवान विस्तार से समझाते हैं कि इन तीनों में सत्व गुण सर्वोत्तम और पवित्रतम है। यह गुण ज्ञान, विवेक और आंतरिक शांति से जोड़ता है। सत्वगुणी व्यक्ति के जीवन में सादगी, संतुलन और करुणा स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। सत्व का प्रभाव आत्मा को ऊपर उठाकर उसे दिव्यता के निकट ले जाता है। इसके विपरीत रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह मनुष्य को निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, परंतु साथ ही कर्मों के फल में बांध देता है। रजोगुण व्यक्ति को महत्वाकांक्षी, कर्मठ और सक्रिय तो बनाता है, लेकिन साथ ही असंतोष, चिंता और अपेक्षाओं का बोझ भी देता है। तमोगुण तीसरा और सबसे नीचा गुण है। यह मनुष्य को आलस्य, प्रमाद, मोह, भोग विलास और अज्ञान में फंसा देता है। तमस से ग्रस्त व्यक्ति सत्य को पहचान नहीं पाता और न ही अपने जीवन का सही मार्ग खोज पाता है। यह गुण आत्मा को नीचे गिराकर अगले जन्मों में कीट पतंग या पशु योनि तक में भेज सकता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य के भीतर शांति, संतोष और प्रकाश का अनुभव बढ़े, तब समझना चाहिए कि सत्वगुण प्रबल हो रहा है। जब मन लालसा, इच्छाओं और स्वार्थ से भर जाए, तब यह संकेत है कि रजोगुण बढ़ रहा है। और जब मन भारीपन, अंधकार, निद्रा और विषयों की आसक्ति में डूबा हो, तब समझो कि तमोगुण का प्रभाव बढ़ चुका है। गुणों का यह खेल जन्म और मृत्यु तक चलता रहता है। सत्वगुण में मृत्यु होने वाला मनुष्य अगले जन्म में उच्च लोकों या देवताओं की ओर जाता है और धीरे धीरे परमात्मा को प्राप्त करता है। रजोगुणी मृत्यु वाला मनुष्य पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेकर संसार के कर्म चक्र में बंधा रहता है, जबकि तमोगुण से मरने वाला प्राणी अधोगति को प्राप्त होकर पशु, कीट या निम्न जीवन रूप में जन्म लेता है। इस प्रकार सात्विक कर्म का फल है सुख और ज्ञान, राजसिक कर्म का फल है दुख, असंतोष और पुनर्जन्म का बंधन, तामसिक कर्म का फल है अज्ञान, अंधकार और पतन। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो ज्ञानी यह समझ लेता है कि वास्तव में सभी कर्म इन तीन गुणों के कारण ही घटित होते हैं, वही उनसे ऊपर उठकर वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति संसार के मोह माया और कर्तव्य बोध के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके लिए सोना, पत्थर और मिट्टी एक समान हो जाते हैं। सम्मान और अपमान, सुख और दुख उसके लिए कोई भेद नहीं रखते। अंततः ऐसा गुणातीत पुरुष भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्राप्त कर लेता है वही परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान इस अध्याय का समापन करते हुए पुनः हमें भक्ति की महिमा का स्मरण कराते हैं। वे बताते हैं कि केवल भक्ति ही ऐसा साधन है जो आत्मा को इन तीन गुणों से परे उठाकर सीधे परमात्मा से जोड़ सकती है। भक्ति से ही मनुष्य गुणातीत होकर शाश्वत शांति, आनंद और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, यह तीन प्रकार के गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक हमारे जीवन का आधार है और इनका प्रभाव हमारे हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म पर पड़ता है। यही कारण है कि गीता में भगवान ने बार बार इनका महत्व और उनके प्रभाव
भावों को समझाया है। यदि हम वास्तव में जीवन में सफलता, शांति और स्थिरता चाहते हैं, तो हमें अपने दैनिक व्यवहार और विचारों में सात्विक गुणों को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें आलस्य, अतिनिद्रा, चिंता, मोह, वासना, क्रोध, लालच और नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा, क्योंकि ये सब तमोगुण और रजोगुण की जड़ें हैं जो हमें धीरे धीरे पतन की ओर ले जाती हैं। इसके स्थान पर हमें अपने जीवन में शुद्धता, प्रेम, करुणा, भक्ति, संतोष, त्याग, समर्पण, सहनशीलता और सकारात्मक चिंतन को अपनाना चाहिए। यही सात्विक गुण हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाते हैं, बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता और संतोष प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे के अध्यायों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर्म करते हैं और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब मन हमेशा प्रसन्न और संतुलित रहता है। लेकिन यदि हम कर्म तो करें परंतु साथ ही अच्छे परिणाम की आसक्ति रखें, तो मन में असुरक्षा और चिंता बनी रहती है। ऐसा करने से हमें यह निश्चित नहीं होता कि अंततः परिणाम सुख देगा या दुख। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना से कर्म करता है, तो गीता के अनुसार यह निश्चित है कि किसी न किसी समय वह दुख उसे स्वयं भोगना पड़ेगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। यदि हम प्रेम और सेवा का बीज बोते हैं, तो जीवन में शांति और आनंद अवश्य प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि हम ईर्ष्या और द्वेष का बीज बोएंगे, तो दुख और पीड़ा ही लौट कर आएंगे। मित्रों, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हमें अपने भीतर सात्विकता को बढ़ाकर गुणों से परे उठना है और भगवान की शरण में जाकर कर्म करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको श्रीमद् भगवद् गीता के 14वें अध्याय गुण विभाग योग की यह सरल और सहज व्याख्या अवश्य पसंद आई होगी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी हम सबके जीवन के लिए मार्गदर्शक है, और यदि हम इसे समझकर अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित ही हमारे विचार, कर्म और संपूर्ण व्यक्तित्व सात्विक और दिव्य बन सकते हैं। आपने इस अध्याय से क्या सीखा और किस भाग ने आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श किया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमें और अधिक सेवा करने की प्रेरणा देती हैं। यदि इस वीडियो या व्याख्या में मुझसे कोई त्रुटि या कमी रह गई हो, तो मैं विनम्रता पूर्वक क्षमा प्रार्थी हूं।

जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, मनुष्य जो रिश्ता आपको रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता आपको रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। मनुष्य को सदा शांत रहना चाहिए, क्योंकि शांति से ही भीतर की शक्ति बढ़ती है। जैसे लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है और गर्म होने पर किसी भी आकार में ढल जाता है, वैसे ही मनुष्य भी शांति में मजबूत बनता है। विपत्ति के समय मनुष्य को 7 गुण अवश्य बचाकर रखने चाहिए। ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। आत्मा सदैव जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, पर मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने मन को समझना और नियंत्रित करना है। कठिन समय में व्यक्ति भले ही अकेला पड़ जाए, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत बना देती हैं। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए, क्योंकि हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न ही कामनाओं में बंधा रहता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्याग कर देता है, वही ज्ञानी पुरुष उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग, और इन तीनों में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे दीपक की लौ के नीचे छिपा अंधकार दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और दुर्बलता दिखाई नहीं देती। मनुष्य का मन उसे जीवन के अंत तक अपने जाल में बांधे रखता है, तरह तरह से नचाता है और उसे इतना व्यस्त रखता है कि वह अपने भीतर झांक कर आत्मा को पहचान ही नहीं पाता। इसी कारण वह आत्मा के भीतर स्थित उस परमात्मा के प्रकाश का साक्षात्कार नहीं कर पाता। इसी जिज्ञासा में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे केशव, यदि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं और न अग्नि जला सकती है, तो फिर जीव को सुख, दुख, शोक, आनंद, मान और अपमान का अनुभव क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है कि सुख और दुख का अनुभव आत्मा का नहीं, बल्कि शरीर और मन का विषय है। आत्मा तो सदा निर्लेप और साक्षी भाव में स्थित रहती है। इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, शरीर को तो पीड़ा तब होती है जब उसे कोई चोट लगे, कोई अंग कटे या आग में जले। वह पीड़ा तो स्पष्ट रूप से शरीर की होती है, किंतु जब मानहानि होती है, अपकीर्ति मिलती है या अपमान का अनुभव होता है, तब शरीर को तो कोई आघात नहीं पहुंचता। फिर वह दुख किसे होता है? क्या वह आत्मा को नहीं होता? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, नहीं अर्जुन, मान अपमान, कीर्ति अपकीर्ति, लाभ हानि, जीत का आनंद और हार की पीड़ा, यह सब भी आत्मा को नहीं होते। ये आत्मा के धर्म नहीं है, बल्कि मन की चंचलता और उसकी शरारतें हैं। हे अर्जुन, यह स्मरण रखो कि शरीर के भीतर एक अदृश्य अंग है, मन। वह दिखाई नहीं देता, पर सबसे अधिक शक्तिशाली है। आत्मा से उसका सीधा संबंध नहीं है। आत्मा रथ का स्वामी है और मन उस शरीर रूपी रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और यौवन के आवेश में अत्यंत चंचल हो जाता है। यही चंचल मन कभी मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और संसार उसका अधीन है। जब यौवन की शक्ति क्षीण होने लगती है और शरीर का दीपक बुझने लगता है, तब यही मन घबरा कर कहता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोना धोना भी मन का ही नाटक है। हे अर्जुन,
मैं के अहंकार की मदिरा पिलाकर मनुष्य को मदहोश करने वाला यही मन है। इसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे यह इच्छाओं पर फैलाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेता है। मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी सुख सुविधाओं से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। सुख में यह आनंद के गीत गाता है और दुख में पीड़ा के गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके भी इसे विचित्र सुख मिलता है। इसलिए हे पार्थ, मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को वश में करे और अंतर मन में झांक कर आत्मा का दर्शन करे। तभी उस आत्मा के भीतर स्थित परमात्मा का प्रकाश उसे स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने और निष्प्रयोजन शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। यदि किसी पर विश्वास करना हो तो उसके शब्दों से अधिक उसके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को सरल बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे वास्तविक रूप से जान लेता है, उसके लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवद गीता को पढ़कर उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके समस्त दुष्कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जो भाग्य में है वह दौड़ कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह पास आकर भी चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके दिशाओं को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, परंतु शब्द आत्मा तक को घायल कर सकते हैं। जो मनुष्य स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और इस शरीर से भी अपना स्थायी संबंध नहीं जोड़ता, वही सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। यदि प्रसन्न रहना है तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लेने चाहिए। जो लोग दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं, वे सदा असंतुष्ट ही रहते हैं। जो आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, और जो भगवान से एकात्म हो चुके हैं, उनका जीवन स्थिरता और शांति से परिपूर्ण होता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का मूल उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सदा लोक कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां कभी मत जाओ, क्योंकि अपमान मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वास्तव में उनके पास समय तो होता है, बस उनकी प्राथमिकताओं में आपका स्थान नहीं होता। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के रहस्य को सही रूप में समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं का त्याग कर मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में कभी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही शाश्वत सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे दिव्य गुण सत्संग के बिना विकसित नहीं होते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से मनुष्य की परिस्थिति बदले या ना बदले, परंतु यह निश्चित है कि उस प्रार्थना से उसके चरित्र में अवश्य परिवर्तन आता है। अपने शब्दों को इतना मधुर रखो कि यदि कभी उन्हें वापस भी लेना पड़े
तो वे स्वयं तुम्हें कड़वे न लगे। जीवन में थोड़ा सा स्वाभिमान होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में लोग वहां भी तुम्हें दबाने का प्रयास करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। कुछ महापुरुष आत्मा को एक अद्भुत आश्चर्य की भांति देखते हैं, वैसे ही कोई अन्य महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य रूप में वर्णन कर सकता है और कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की तरह सुन सकता है। फिर भी ऐसे भी लोग होते हैं जो सुनकर भी इस सत्य को नहीं समझ पाते। श्री भगवान कहते हैं कि जो धीर पुरुष सुख दुख को समान भाव से देखता है और जिसे इंद्रियां तथा विषय व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जब तक मनुष्य स्वयं से हार नहीं मानता, तब तक संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, केवल तुम्हारा समय कठिन है और समय सभी का बदलता है, इसलिए निरंतर अपने कर्म में लगे रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव कभी नहीं होता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनके भीतर करुणा है और जो हृदय से सच्चे होते हैं, उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि संभव है कि तुम किसी पर उपकार नहीं बल्कि अपने पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। घमंड से ग्रस्त मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं। यदि विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का उदाहरण स्मरण कर लो। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और क्षमा से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस व्यक्ति के पास

पास धैर्य की शक्ति है, उसकी सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती। व्यर्थ की चिंता और मन का भय ऐसा रोग है जो हमारी आंतरिक शक्ति को धीरे धीरे क्षीण कर देता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप का ही भक्षण करते हैं। अर्थात जो ईश्वर का स्मरण किए बिना केवल जीवन निर्वाह में लगे रहते हैं उन्हें शास्त्रों में चोर कहा गया है। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षय तत्व है जो हर अवस्था, हर परिस्थिति और हर समय मनुष्य का साथ निभाता है। जिस प्रकार धरती पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। चाहे युद्ध हो या जीवन का संग्राम, सफलता केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यदि कुछ पाना है तो स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। मित्र गरीब हो या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व इस बात का है कि वह तुम्हारे कठिन समय में कितना साथ देता है। धर्म कोई भी हो, अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि अंततः हिसाब कर्मों का होगा, धर्म के नाम का नहीं। यदि तुम खुशी के लिए काम करोगे तो शायद खुशी न मिले, लेकिन यदि खुश होकर काम करोगे तो खुशी स्वयं तुम्हारे जीवन में आएगी। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई लौटकर तुम्हारे जीवन में भी आती है। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुम अभी क्या हो, बल्कि इससे तय होता है कि तुम स्वयं को क्या बना सकने की क्षमता रखते हो। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वह तुमसे करवा रहा है उसे स्मरण रखना। समय आने पर वह इतना देगा कि संभालना भी कठिन हो जाएगा। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। खुशी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, और स्वतंत्रता इस बात पर कि तुम कितने साहसी हो। विश्वास के बिना इस संसार में कोई भी रिश्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे स्मरण करके आज के दिन को व्यर्थ मत करो। अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कर्म करते हुए ही परम सिद्धि प्राप्त की। जनक जैसे ज्ञानी भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम लक्ष्य तक पहुंचे। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की आकांक्षा से दूर रहना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे लिए इन तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य शेष है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करता हूं ताकि लोक व्यवस्था बनी रहे। यदि मैं कर्म में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाए, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में पराजित और दुखी व्यक्ति की सहायता बहुत कम लोग करते हैं, और यदि कोई थोड़ा सा सफल हो जाए तो भी बहुत कम लोग उससे प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपना दुख हर किसी को मत बताओ और अपनी खुशी भी सबके सामने प्रकट मत करो। मनुष्य का आहार सदा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। यही जीवन का गूढ़ सत्य है। जो मंदबुद्धि मनुष्य केवल दिखावे के लिए यह कहता है कि उसने अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु भीतर ही भीतर वह उन्हीं इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी और दंभी कहलाता है। जो पुरुष परंपरा से हटकर चलता है, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता और अपने कर्तव्यों से विमुख रहता है, वह इंद्रियों के भोगों में फंसकर
पापमय जीवन जीता है और उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई बाहरी कर्तव्य शेष नहीं रहता। यहां आत्मा का अर्थ उस परम सत्य से है और जो सत्य को समझकर उसी में आनंद पूर्वक स्थित हो जाता है, उसके लिए कर्तव्य का बंधन नहीं रहता। परंतु ऐसे महापुरुष इस संसार में करोड़ों में एक ही होते हैं। जिसे परमात्मा की अनुभूति हो चुकी है, उसके लिए न तो कर्म करने से कोई विशेष प्रयोजन रह जाता है और न ही कर्म न करने से। उसका किसी भी प्राणी से कोई स्वार्थपूर्ण संबंध नहीं रह जाता। किंतु जो ज्ञानी हैं और जिन्हें ईश्वर के सत्य का बोध हो चुका है, उनके ऊपर यह उत्तरदायित्व अवश्य होता है कि उनके आचरण से किसी अन्य के मन में कर्म और कर्तव्य के प्रति अनादर उत्पन्न न हो। इसलिए ज्ञानी जन अपने जीवन से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे सामान्य जन भी अपने कर्तव्यों के पालन के लिए प्रेरित हों। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य, प्रमाद और नींद में डूबे रहते हैं। राजसिक गुण वाले व्यक्ति बार बार शौर्य और बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं। परंतु ज्ञानी मनुष्य यह समझता है कि वास्तव में उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, जबकि अज्ञानी यह मान बैठता है कि सब कुछ वही कर रहा है। यदि सच में जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले मन को बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मन होगा वैसे ही विचार होंगे और जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बन जाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जीवन का कटु सत्य यह भी है कि जितने सरल, सीधे और कोमल हृदय के बनोगे, उतना ही चतुर और स्वार्थी लोग तुम्हें ठेस पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जीवन में बहुत कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और टूटा हुआ भरोसा फिर कभी वैसा नहीं लौटता। भरोसा उसी पर करो जो निभाने के योग्य हो, क्योंकि अर्थी उठाने वाले भी कुछ पल का साथ दे ही देते हैं। सच्चे लोगों पर उतना ही विश्वास रखो जितना औषधियों पर रखते हो। वे कड़वी अवश्य लगती हैं, पर अंततः हितकारी होती है। जिन्होंने कभी तुम्हारी निकटता की कदर नहीं की, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। वास्तव में बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही अधिक शांत और प्रसन्न रहोगे। हर रिश्ते की अपनी सीमा होती है, पर जहां आत्मसम्मान का प्रश्न आ जाए वहां किसी भी रिश्ते को समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की लंबी नींद मनुष्य के इरादों को कमजोर कर देती है। लक्ष्य को पाने वाले लोग देर तक सोने के आदि नहीं होते। मदद ऐसा कर्म है कि करो तो लोग भूल जाते हैं और न करो तो लोग जीवन भर याद रखते हैं। मनुष्य दो स्थानों पर प्रायः हार जाता है, एक अपने परिवार के सामने और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति के सामने। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि जो उसकी सहायता करता है उसका भी नुकसान कर देता है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और भय के लिए समय ही न बचे। यदि कोई भरोसा तोड़ दे तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह हमें यह सिखा जाता है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। यदि जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को स्वयं पर हावी न होने दो। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन होते हैं, पर अपने बनाए हुए रिश्ते तुम्हारी असली पूंजी होते हैं। उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। किसी के गुण दोष का निर्णय करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक है। अपनी कमजोरियां हर किसी को मत बताओ, क्योंकि प्रायः लोग दूसरों की कमजोरियों का लाभ उठाते हैं। जीवन में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वह जिसने तुम्हें कष्ट दिया और दूसरा वह जिसने कष्ट के समय तुम्हारा साथ दिया।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपना मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उनकी ही तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जीवन की आधी शिकायतें तो उसी दिन समाप्त हो जाएं जिस दिन लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय एक दूसरे से बात करना सीख लें। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय स्वयं को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में तुम्हें खो देने का भय सदा बना रहे। चार वेदों का गूढ़ अर्थ न भी जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म यदि समझ लिया जाए तो जीवन अपने आप सार्थक हो जाता है। बुद्धियुक्त पुरुष इसी लोक में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस क्षण तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर लेती है, उसी क्षण तुम इस लोक और परलोक से जुड़े सुने हुए और सुनने में आने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हो। हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य अपने मन में स्थित समस्त कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसी अवस्था में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिसके मन में दुख आने पर उद्वेग नहीं होता, सुख मिलने पर मोह उत्पन्न नहीं होता, और जिसके भीतर से राग, भय तथा क्रोध समाप्त हो जाते हैं, वही मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से पूरी तरह हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। किससे, कब और कितना बोलना है, यदि यह विवेक आ गया तो समझो जीवन की सबसे बड़ी समझ प्राप्त हो गई। कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थ नहीं बल्कि धर्म है। धर्म से भरा हुआ हृदय सदैव धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हुआ हृदय अधर्म की ओर ही ले जाता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको सब कुछ मिलता है, किंतु समय से पहले की चाह ही दुख का वास्तविक कारण बनती है। किसी से सच्चा प्रेम होना पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी घटित हुआ है उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं है, इसलिए अनावश्यक परेशान होना व्यर्थ है। हर वस्तु की शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पर आकर ही होता है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख सच्चा सुख नहीं होता। यह सुख पहले अमृत की तरह मीठा लगता है, पर अंततः विनाश का कारण बन जाता है। कान्हा कहते हैं, हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। यदि मेरी बातें तुम्हें कठिन या अटपटी लगती हैं, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तुम संसार को उस दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो जिस दृष्टि से मैं देखता हूं। एक बार यदि तुमने मुझ पर पूर्ण विश्वास कर लिया तो जीवन में कभी निराश नहीं होगे। जो मुझ पर विश्वास करता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ छल करता है उसके लिए मैं स्वयं शत्रु बन जाता हूं। जिसने मेरे किसी भक्त को एक बार भी धोखा दिया उसका उद्धार जन्मों तक नहीं होता। मैं प्रत्येक हृदय को मंदिर की तरह देखता हूं, और जो हृदय जितना निर्मल होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। श्री भगवान कहते हैं, इस संसार में प्रेम सभी से करो, पर पूर्ण विश्वास केवल परमात्मा पर रखो। जब तुम किसी कार्य की शुरुआत करोगे
तो संभव है कि प्रारंभ में असफलता मिले, गिरना भी पड़े, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उस मार्ग को छोड़ दिया जाए। एक समय ऐसा आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। उस मार्ग में मैं हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे छोटे बड़े हर कर्म में। जो भी करो उसे नम्रता और सरलता के साथ करो, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य अंततः इससे मुक्त होना है। वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर रहता है और सुख दुख को समान भाव से सहन करता है। जो अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है वही मुझसे संवाद कर सकता है और मेरा दर्शन कर सकता है। जो व्यक्ति मुझे प्रत्येक वस्तु में देखता है और मेरे अस्तित्व का अनुभव करता है वही मेरा सच्चा भक्त है, और ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस संसार में न कोई सदा से है और न कोई सदा रहेगा, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी के हृदय में निवास करता हूं, मेरी ऊर्जा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। जो मुझे पहचान लेता है उसे मैं निरंतर भक्ति रस प्रदान करता रहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी यदि पूर्ण समर्पण और सच्चे भाव से मेरी उपासना करे तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं। जो कुछ तुम सुनते हो उस पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। कुछ लोग विवेक के मार्ग से मुझे अपनाते हैं, कुछ ज्ञान के द्वारा, कुछ कर्म के द्वारा और कुछ योग के माध्यम से। तुम मुझे जिस रूप में पाना चाहते हो वह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम मुझे जिस नाम और भाव से पुकारोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तुम सदा मेरे प्रति सजग रहो, मेरी उपासना करो और अपने हर कार्य में मेरा स्मरण रखो। मैं वचन देता हूं कि तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे लोग मूर्ख हैं जो प्रेम को व्यर्थ कहते हैं, क्योंकि प्रेम ही इस संसार की मूल शक्ति है। इसी प्रेम से यह सृष्टि बनी है। रिश्तों में नियमित दूरी उन्हें मजबूत बनाती है, जबकि अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए संघर्ष करना सीखो, अधर्म का अंत करना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा जल में तेल की बूंद के समान होता है। कितना ही असत्य क्यों ना फैल जाए, सत्य ऊपर ही तैरता रहता है। जीवन में कभी आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे पूरे संसार को जान ले, पर यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही रहता है। अपने स्वार्थ के लिए लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुमसे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, पर उनके व्यवहार को सत्य मानकर यदि तुम फंस गए तो अंततः नुकसान तुम्हारा ही होगा। प्रायः सबसे अधिक चोट वही लोग देते हैं जो हमारे सबसे अधिक अपने होते हैं। यही गीता का गहन सत्य है, क्योंकि महाभारत केवल बाहरी लोगों की नहीं बल्कि एक ही परिवार की लड़ाई थी। किसी की सहायता करो या ना करो, पर जानबूझकर कभी किसी का हृदय मत दुखाओ, क्योंकि जब किसी का दिल तुम्हारी वजह से दुखता है तो वह पीड़ा एक दिन तुम्हें भी अवश्य मिलती है। किसी भी वस्तु की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अति अंततः स्वयं के लिए हानिकारक होती है। जीवन संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ अधर्म या अन्याय करते हैं उनका विरोध करना आवश्यक है, क्योंकि अन्याय सहना भी पाप में सहभागी बनना है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखना चाहिए। जीवन में वही करो जो तुम्हारे लिए सही है, न कि वह जो लोग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी रक्षा स्वयं नहीं करता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो अपने महत्व को नहीं समझता उसे संसार भी महत्व नहीं देता। बुरा व्यक्ति अपनी बुराई नहीं छोड़ता, चाहे तुम उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना करो।
इसलिए जैसा व्यवहार सामने वाला करे वैसा ही व्यवहार करना भी कभी कभी आवश्यक हो जाता है। जो समय की कदर नहीं करता समय भी उसकी कदर नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। संगति का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा व्यक्ति यदि बुरी संगति में रहेगा तो एक दिन वह भी बुरा बन सकता है। इसलिए सदैव अच्छे लोगों की संगति अपनाओ। इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त किसी को अपना मत समझो, क्योंकि जब संसार के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग सदैव खुला रहता है। सदा संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, न इस लोक में न अगले लोक में न परलोक में। जब तक मनुष्य संदेह में रहता है तब तक वह किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकता। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या उत्पन्न किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ही वह मार्ग है जिसके द्वारा जीवात्मा स्वयं से जुड़ती है। कर्म योग आत्मज्ञान को जागृत करता है और इसके माध्यम से मनुष्य न केवल अपने वर्तमान जीवन का उद्देश्य समझता है बल्कि जीवन के पश्चात की अपनी गति का भी बोध प्राप्त करता है। इस मार्ग में कर्म के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद् गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग माना गया है। गृहस्थ और कर्मशील व्यक्ति के लिए यह योग अत्यंत उपयुक्त है। कर्म योग यह सिखाता है कि कर्म केवल कर्म के लिए करो, आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है क्योंकि कर्म करना उसके स्वभाव में है। इसके पीछे किसी फल की आकांक्षा नहीं होती। वह कर्म का त्याग नहीं करता बल्कि कर्म फल का त्याग करता है, और इसी कारण कर्म से उत्पन्न होने वाले दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान होती है, जो देता तो है पर बदले में कुछ पाने की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि देना ही उसका धर्म है और मांगना उसका उद्देश्य नहीं, इसलिए वह दुख के बंधन में नहीं पड़ता। जब कर्म फल का त्याग कर निष्काम भाव से कार्य किया जाता है तब वही कर्म पूजा के समान बन जाता है, क्योंकि इस संसार का कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है। इसलिए कार्य की प्रकृति चाहे जैसी भी हो, निष्काम कर्म अंततः ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। गीता के अनुसार पुनर्जन्म का मुख्य कारण वासनाओं और अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्म योगी कर्म फल के बंधन में नहीं पड़ता, इसलिए उसके भीतर वासनाओं का संचय भी नहीं होता, और इसी कारण वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तीन का मन वायु की तरह अत्यंत चंचल है। यही मन मनुष्य को कामनाओं और वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। मन को वश में करने से बुद्धि की शक्ति केंद्रित होती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगती है। गीता यह भी बताती है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया वह व्यर्थ की चिंताओं और अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सुख और दुख में समान भाव से शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, जो शुभ और अशुभ की प्राप्ति में न तो हर्षित होता है और न द्वेष करता है, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि के समान होता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर चित्त और संयमित इंद्रियों के साथ ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है और सदैव संतुष्ट रहता है। क्रोध को भगवान नरक का द्वार बताते हैं।
क्योंकि क्रोध से मन अशांत हो जाता है, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, बुद्धि नष्ट होती है और अंततः मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करना चाहिए। श्री भगवान यह भी कहते हैं कि जैसे समुद्र भारी से भारी तूफानों और असंख्य नदियों के जल के प्रवाह को अपने भीतर समाहित कर लेने पर भी अपनी मर्यादा और स्थिरता नहीं छोड़ता, उसी प्रकार परमात्मा में स्थित योगी की अवस्था भी अचल रहती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख, लाभ हानि या संयोग वियोग से उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह योगी परमात्मा में निरंतर अटल और एकरस भाव से स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता, अहंकार और मोह से रहित होकर जीवन यापन करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश की ज्योति स्वतः चमक उठती है, उसी प्रकार सत्य भी स्वयं प्रकाशित होता है। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वही सत्य है, जबकि झूठ सदैव स्वयं को ही सत्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम सदैव अनुकूल हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य जन भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए सज्जन व्यक्तियों का आचरण सदैव उत्तम होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे अज्ञानी होते हैं और जीवन में कभी भी सच्चे सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलने लगती है और वे लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों को गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे अनुचित आचरणों में लिप्त हो जाते हैं और इस लोक तथा परलोक दोनों में पतन को प्राप्त होते हैं। अंत में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, यदि उसकी मृत्यु भी हो जाए तो वह मृत्यु उसके लिए भी परम कल्याणकारी बन जाती है और वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। उन सभी जन्मों को तुम नहीं जानते, किंतु मैं उन्हें भलीभांति जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति के अधीन होकर अपनी योग माया से बार बार प्रकट होता हूं। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर लोगों के सम्मुख आता हूं। मनुष्य जिस भाव और जिस रूप में मेरी उपासना करता है, मैं भी उसे उसी भावना के अनुरूप दर्शन देता हूं। जो भाव लेकर मनुष्य मेरी भक्ति करता है, मैं उसी भाव का अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं भी चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, मैं भी उसके लिए व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पित कर देता हूं। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोगों की इच्छा से लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। परंतु मेरी भक्ति का स्वरूप ऐसा नहीं है। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो मैं उनकी उस कामना को भी पूर्ण करता हूं, जिससे धीरे धीरे उनका विषयों से वैराग्य हो जाए और मेरे प्रति प्रेम व विश्वास बढ़े। इसी कारण सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल तुरंत दिखाई नहीं देता और मंदबुद्धि लोग शीघ्र फल की इच्छा से अन्य देवताओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मनुष्य प्रायः अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके अपने हाथों में है। जो हुआ
वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए बीते हुए का पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो, क्योंकि वास्तविक जीवन तो वर्तमान में ही है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वही कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान होता है, और वह सुखपूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। न मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और न ही किसी के कर्म फल का। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगता है और उन्हीं कर्मों से उसका भाग्य बनता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी। ज्ञानी पुरुष कर्म योग या भक्ति योग के द्वारा एक ही जन्म में इस संसार रूपी समुद्र को पार कर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जबकि अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वह इस लोक में हो या परलोक में, जहां भी रहता है, परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं और मुझे जानने का प्रयास भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य न इस जीवन में और न ही जीवन के बाद मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह निश्चित ही मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि और निष्काम प्रेमी भक्त के प्रेम से अर्पित उस साधारण से अर्पण को भी मैं प्रसन्नता से स्वीकार करता हूं। हे अर्जुन, तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित कर दो। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए न कोई प्रिय है और न अप्रिय, पर जो भक्त प्रेम से मेरा भजन करते हैं, वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें निवास करता हूं। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मेरी शरण में आता है, तो वह भी साधु के समान माना जाता है, क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर की भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच या चांडाल कोई भी हो, जो मेरी शरण में आता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हमारे भीतर के तामसिक गुणहीन भावना उत्पन्न कर हमें गिराते हैं और राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु तथा लोभी बना देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने तामसिक और राजसिक गुणों का त्याग कर सात्विक गुणों को अपनाना चाहिए। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को समस्त सृष्टि से जोड़ता है और प्रेम करना सिखाता है। यदि किसी का भला न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि संसार भले ही दुर्बल हो, पर उसे रचने वाला परमात्मा सर्वशक्तिमान है। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह वास्तव में केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अपनी अंतरात्मा। इसलिए अपने आप को पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा सहारा। जिसने इस सहारे को पहचान लिया, वह भय, चिंता और दुखों से स्वतः मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए सबसे पहला और सबसे आवश्यक कार्य है स्वयं का आकलन करना, अर्थात अपने बारे में गहराई से जानना, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता और अपनी सीमाओं को पहचानना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता, तब तक उसका वास्तविक उद्धार संभव नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को
अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग स्वयं पर विश्वास करते हैं वे अंततः सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। जैसा

नहीं होता। जो लोग अपने हर काम को मन लगाकर करते हैं और छोटे से छोटे कार्य में भी आनंद ढूंढ लेते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत, जो लोग अपने काम को बोझ समझकर केवल किसी तरह पूरा करना चाहते हैं और उसे सही ढंग से नहीं करते, वे प्रायः जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें केवल अपना लाभ दिखाई देता है और दूसरों की भलाई से कोई सरोकार नहीं होता, उनका अंततः कभी भला नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता के सार में ऐसे लोगों के लिए गहन शिक्षा दी है। भगवान कहते हैं कि स्वार्थ शीशे पर जमी धूल की तरह है, जिसके कारण मनुष्य अपना वास्तविक प्रतिबिंब नहीं देख पाता। स्वार्थ व्यक्ति को दूसरों से दूर करता है और नकारात्मक परिस्थितियों की ओर धकेल देता है, जिससे वह अंततः अकेला रह जाता है। यदि आप जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं, तो स्वार्थ को अपने पास आने ही न दें, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति मित्रता भी केवल अपना मतलब निकालने के लिए करता है। ईश्वर सदैव मनुष्य का साथ देता है। जो व्यक्ति इस गहरे सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि का संचालन करने वाला केवल ईश्वर है, मनुष्य तो मात्र उसके हाथ की कठपुतली है। इसलिए न तो भविष्य की अत्यधिक चिंता करनी चाहिए और न ही अतीत में उलझे रहना चाहिए। हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर मनुष्य का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालता है। इसी कारण हमें हर स्थिति में परमात्मा पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि पहले अपने कर्तव्यों और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें, उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करें, तभी दूसरों के कार्यों में हाथ बटाएं। जो लोग अपने काम छोड़कर केवल दूसरों के काम करते रहते हैं, वे अक्सर परेशान और असंतुष्ट रहते हैं। मनुष्य हृदय से जो दान कर सकता है, वह केवल हाथों से संभव नहीं होता, और मौन रहकर जो भाव व्यक्त किए जा सकते हैं, वे शब्दों से नहीं कहे जा सकते। जो विषय हमारे नियंत्रण और दायरे से बाहर हैं, उनमें समय नष्ट करना मूर्खता है। किसी को भी समय से पहले या भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करना आवश्यक है। कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें वह सब प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए जीवन के कठिन समय में परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना ही सबसे बड़ा बल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना ही बुरा समय क्यों ना आ जाए, मनुष्य को कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि इस संसार का नियम है कि जो जन्म लेता है, उसे दुख का सामना भी करना ही पड़ता है। रोने और चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता, उलटे दुख और बढ़ जाता है। जीवन में आगे बढ़ने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि परिस्थितियों के अनुसार आपको क्रांतिकारी बदलाव भी करने पड़े, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आवश्यकता के अनुसार स्वयं को बदलना चाहिए और समाज की आलोचना की परवाह किए बिना अपने कर्मों को पूर्ण करना चाहिए। जीवन में मित्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सच्चे मित्रों की पहचान हमेशा कठिन समय में ही होती है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के कठिन काल में उनका साथ दिया, उसी प्रकार हमें भी अपने मित्रों का साथ देना चाहिए और ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो विपत्ति के समय हमारे साथ खड़े रहें। जीवन में हार और जीत का क्रम चलता रहता है, परंतु सफलता उसी को प्राप्त होती है जो अपनी हार और गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ता है। हार मानकर निराश हो जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए सही और सशक्त रणनीति का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना योजना के किसी भी मोर्चे पर विजय संभव नहीं होती।
यदि पांडव भी श्री कृष्ण

द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन न करते तो कौरवों के विरुद्ध युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त न होती। भगवान कहते हैं कि यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसकी अधूरी साधना को पूर्ण कराने के लिए उसे फिर से श्रेष्ठ और शुद्ध वातावरण में जन्म प्रदान करते हैं। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं है, मैं ही इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूं। जैसे मोती सूत के धागे में पिरोए होते हैं, वैसे ही यह पूरा जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। यह संसार मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में स्थित रहता है और अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान के अतिरिक्त इस संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार करना अत्यंत कठिन है। मनुष्य इसी माया में बंधकर भोग और संग्रह की इच्छाओं को नहीं छोड़ पाता। कभी वह स्वयं को सुखी मानता है, कभी दुखी, कभी बुद्धिमान, कभी अज्ञानी, कभी निर्बल तो कभी बलवान, और इसी प्रकार मेरी माया में उलझा रहता है। किंतु जो मनुष्य मेरी शरण में आ जाता है वह इस माया को सहज ही पार कर लेता है, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल मेरी ओर रहती है और वह माया के जाल में नहीं फंसता। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले मेरे चार प्रकार के भक्त होते हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। पहले आर्त भक्त होते हैं जो दुख से मुक्ति चाहते हैं। दूसरे अर्थार्थी भक्त होते हैं जो धन और संपत्ति की कामना से भजन करते हैं। तीसरे जिज्ञासु भक्त होते हैं जिन्हें केवल मुझे जानने की उत्कंठा होती है। और चौथे ज्ञानी भक्त होते हैं जो ज्ञान सहित मुझे जानते हैं। आर्त भक्त वे होते हैं जो प्राण संकट आने पर केवल भगवान को ही पुकारते हैं और अपने कष्ट का निवारण किसी अन्य से नहीं चाहते। द्रौपदी और गजेंद्र का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि जब तक मनुष्य अन्य सहारों पर निर्भर रहता है तब तक वह दुख भोगता रहता है। द्रौपदी ने चीरहरण के समय जब तक भीष्म पितामह और पांडवों पर भरोसा किया तब तक वह पीड़ा में रही, परंतु जब उसने सब सहारे छोड़कर अनन्य भाव से भगवान को पुकारा तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई। इसी प्रकार गजेंद्र भी जब तक अन्य हाथियों और अपनी शक्ति का सहारा लेता रहा तब तक ग्रह से संघर्ष करता रहा, किंतु जब उसने पूर्ण समर्पण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर भगवान को पुकारा तब भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसका उद्धार किया। अर्थ भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि संकट आने पर उसने किसी अन्य उपाय का सहारा न लेकर सीधे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उसने निवेदन किया, हे जगतपति, अश्वत्थामा का यह दहकता हुआ बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ा आ रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। तुरंत भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर गर्भ की रक्षा की और परीक्षित की प्राण रक्षा की। इसका तात्पर्य यह है कि जो भक्त अपने सुख सुविधा और आवश्यकताओं के लिए धन संपत्ति की कामना करता भी है तो वह उसे केवल भगवान से ही चाहता है, किसी अन्य से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वह होता है जिसके भीतर भगवान को जानने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है और वह भक्ति के रहस्यों को समझने के लिए व्याकुल रहता है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान, सनातन और अजन्मा है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं और न अग्नि जला सकती है, तो फिर जीव को सुख दुख शोक आनंद मान और अपमान का अनुभव क्यों होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है कि सुख और दुख का अनुभव आत्मा का नहीं बल्कि शरीर और मन का विषय है। आत्मा तो सदा निर्लेप और साक्षी भाव में स्थित रहती है। इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, शरीर को तो पीड़ा तब होती है जब उसे कोई चोट लगे, कोई अंग कटे
या आग में जले। वह पीड़ा तो स्पष्ट रूप से शरीर की होती है, किंतु जब मानहानि होती है, अपकीर्ति मिलती है या अपमान का अनुभव होता है, तब शरीर को तो कोई आघात नहीं पहुंचता। फिर वह दुख किसे होता है? क्या वह आत्मा को नहीं होता? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, नहीं अर्जुन, मान अपमान, कीर्ति अपकीर्ति, लाभ हानि, जीत का आनंद और हार की पीड़ा, यह सब भी आत्मा को नहीं होते। ये आत्मा के धर्म नहीं है, बल्कि मन की चंचलता और उसकी शरारतें हैं। हे अर्जुन, यह स्मरण रखो कि शरीर के भीतर एक अदृश्य अंग है, मन। वह दिखाई नहीं देता, पर सबसे अधिक शक्तिशाली है। आत्मा से उसका सीधा संबंध नहीं है। आत्मा रथ का स्वामी है और मन उस शरीर रूपी रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और यौवन के आवेश में अत्यंत चंचल हो जाता है। यही चंचल मन कभी मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और संसार उसका अधीन है। जब यौवन की शक्ति क्षीण होने लगती है और शरीर का दीपक बुझने लगता है, तब यही मन घबरा कर कहता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोना धोना भी मन का ही नाटक है। हे अर्जुन, मैं के अहंकार की मदिरा पिलाकर मनुष्य को मदहोश करने वाला यही मन है। इसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे यह इच्छाओं पर फैलाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेता है। मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी सुख सुविधाओं से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। सुख में यह आनंद के गीत गाता है और दुख में पीड़ा के गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके भी इसे विचित्र सुख मिलता है। इसलिए हे पार्थ, मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को वश में करे और अंतर मन में झांक कर आत्मा का दर्शन करे। तभी उस आत्मा के भीतर स्थित परमात्मा का प्रकाश उसे स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने और निष्प्रयोजन शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। यदि किसी पर विश्वास करना हो तो उसके शब्दों से अधिक उसके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को सरल बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे वास्तविक रूप से जान लेता है, उसके लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवद गीता को पढ़कर उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके समस्त दुष्कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जो भाग्य में है वह दौड़ कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह पास आकर भी चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके दिशाओं को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, परंतु शब्द आत्मा तक को घायल कर सकते हैं। जो मनुष्य स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और इस शरीर से भी अपना स्थायी संबंध नहीं जोड़ता, वही सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। यदि प्रसन्न रहना है तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लेने चाहिए। जो लोग दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं, वे सदा असंतुष्ट ही रहते हैं। जो आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, और जो भगवान से एकात्म हो चुके हैं, उनका जीवन स्थिरता और शांति से परिपूर्ण होता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का मूल उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सदा लोक कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां कभी मत जाओ,
क्योंकि अपमान मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वास्तव में उनके पास समय तो होता है, बस उनकी प्राथमिकताओं में आपका स्थान नहीं होता। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के रहस्य को सही रूप में समझ लेता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं का त्याग कर मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है वह जीवन में कभी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही शाश्वत सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे दिव्य गुण सत्संग के बिना विकसित नहीं होते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से मनुष्य की परिस्थिति बदले या न बदले, परंतु यह निश्चित है कि उस प्रार्थना से उसके चरित्र में अवश्य परिवर्तन आता है। अपने शब्दों को इतना मधुर रखो कि यदि कभी उन्हें वापस भी लेना पड़े तो वे स्वयं तुम्हें कड़वे न लगे। जीवन में थोड़ा सा स्वाभिमान होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में लोग वहां भी तुम्हें दबाने का प्रयास करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। कुछ महापुरुष आत्मा को एक अद्भुत आश्चर्य की भांति देखते हैं, वैसे ही कोई अन्य महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य रूप में वर्णन कर सकता है, और कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की तरह सुन सकता है। फिर भी ऐसे भी लोग होते हैं जो सुनकर भी इस सत्य को नहीं समझ पाते। श्री भगवान कहते हैं कि जो धीर पुरुष सुख दुख को समान भाव से देखता है और जिसे इंद्रियां तथा विषय व्याकुल नहीं करते वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जब तक मनुष्य स्वयं से हार नहीं मानता तब तक संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, केवल तुम्हारा समय कठिन है, और समय सभी का बदलता है, इसलिए निरंतर अपने कर्म में लगे रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव कभी नहीं होता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनके भीतर करुणा है और जो हृदय से सच्चे होते हैं उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि संभव है कि तुम किसी पर उपकार नहीं बल्कि अपने पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। घमंड से ग्रस्त मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं। यदि विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का उदाहरण स्मरण कर लो। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और क्षमा से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस व्यक्ति के पास धैर्य की शक्ति है उसकी सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती। व्यर्थ की चिंता और मन का भय ऐसा रोग है जो हमारी आंतरिक शक्ति को धीरे धीरे क्षीण कर देता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप का ही भक्षण करते हैं। अर्थात जो ईश्वर का स्मरण किए बिना केवल जीवन निर्वाह में लगे रहते हैं उन्हें शास्त्रों में चोर कहा गया है। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षय तत्व है जो हर अवस्था, हर परिस्थिति और हर समय मनुष्य का साथ निभाता है। जिस प्रकार धरती पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। चाहे युद्ध हो या जीवन का संग्राम, सफलता केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यदि कुछ पाना है तो स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं।
मित्र गरीब हो या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व इस बात का है कि वह तुम्हारे कठिन समय में कितना साथ देता है। धर्म कोई भी हो, अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि अंततः हिसाब कर्मों का होगा, धर्म के नाम का नहीं। यदि तुम खुशी के लिए काम करोगे तो शायद खुशी न मिले, लेकिन यदि खुश होकर काम करोगे तो खुशी स्वयं तुम्हारे जीवन में आएगी। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई लौटकर तुम्हारे जीवन में भी आती है। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुम अभी क्या हो, बल्कि इससे तय होता है कि तुम स्वयं को क्या बना सकने की क्षमता रखते हो। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वह तुमसे करवा रहा है उसे स्मरण रखना। समय आने पर वह इतना देगा कि संभालना भी कठिन हो जाएगा। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। खुशी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, और स्वतंत्रता इस बात पर कि तुम कितने साहसी हो। विश्वास के बिना इस संसार में कोई भी रिश्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे स्मरण करके आज के दिन को व्यर्थ मत करो। अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कर्म करते हुए ही परम सिद्धि प्राप्त की। जनक जैसे ज्ञानी भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम लक्ष्य तक पहुंचे। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की आकांक्षा से दूर रहना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे लिए इन तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य शेष है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं कर्म करता हूं ताकि लोक व्यवस्था बनी रहे। यदि मैं कर्म में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाए, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में पराजित और दुखी व्यक्ति की सहायता बहुत कम लोग करते हैं, और यदि कोई थोड़ा सा सफल हो जाए तो भी बहुत कम लोग उससे प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपना दुख हर किसी को मत बताओ और अपनी खुशी भी सबके सामने प्रकट मत करो। मनुष्य का आहार सदा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। यही जीवन का गूढ़ सत्य है। जो मंदबुद्धि मनुष्य केवल दिखावे के लिए यह कहता है कि उसने अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु भीतर ही भीतर वह उन्हीं इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी और दंभी कहलाता है। जो पुरुष परंपरा से हटकर चलता है, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता और अपने कर्तव्यों से विमुख रहता है, वह इंद्रियों के भोगों में फंसकर पापमय जीवन जीता है और उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई बाहरी कर्तव्य शेष नहीं रहता। यहां आत्मा का अर्थ उस परम सत्य से है, और जो सत्य को समझकर उसी में आनंद पूर्वक स्थित हो जाता है, उसके लिए कर्तव्य का बंधन नहीं रहता। परंतु ऐसे महापुरुष इस संसार में करोड़ों में एक ही होते हैं। जिसे परमात्मा की अनुभूति हो चुकी है, उसके लिए न तो कर्म करने से कोई विशेष प्रयोजन रह जाता है और न ही कर्म न करने से। उसका किसी भी प्राणी से कोई स्वार्थपूर्ण संबंध नहीं रह जाता। किंतु जो ज्ञानी हैं और जिन्हें ईश्वर के सत्य का बोध हो चुका है, उनके ऊपर यह उत्तरदायित्व अवश्य होता है कि उनके आचरण से किसी अन्य के मन में कर्म और कर्तव्य के प्रति अनादर उत्पन्न न हो। इसलिए ज्ञानी जन अपने जीवन से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे सामान्य जन भी अपने कर्तव्यों के पालन के लिए प्रेरित हों। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य, प्रमाद और नींद में डूबे रहते हैं। राजसिक गुण वाले व्यक्ति बार बार शौर्य और बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं। परंतु ज्ञानी मनुष्य यह समझता है
कि वास्तव में उसके गुण ही उससे कर्म

करवा रहे हैं, जबकि अज्ञानी यह मान बैठता है कि सब कुछ वही कर रहा है। यदि सच में जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले मन को बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मन होगा वैसे ही विचार होंगे और जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बन जाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जीवन का कटु सत्य यह भी है कि जितने सरल सीधे और कोमल हृदय के बनोगे उतना ही चतुर और स्वार्थी लोग तुम्हें ठेस पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जीवन में बहुत कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और टूटा हुआ भरोसा फिर कभी वैसा नहीं लौटता। भरोसा उसी पर करो जो निभाने के योग्य हो, क्योंकि अर्थी उठाने वाले भी कुछ पल का साथ दे ही देते हैं। सच्चे लोगों पर उतना ही विश्वास रखो जितना औषधियों पर रखते हो, वे कड़वी अवश्य लगती हैं पर अंततः हितकारी होती है। जिन्होंने कभी तुम्हारी निकटता की कदर नहीं की उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। वास्तव में बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही अधिक शांत और प्रसन्न रहोगे। हर रिश्ते की अपनी सीमा होती है, पर जहां आत्मसम्मान का प्रश्न आ जाए वहां किसी भी रिश्ते को समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की लंबी नींद मनुष्य के इरादों को कमजोर कर देती है। लक्ष्य को पाने वाले लोग देर तक सोने के आदि नहीं होते। मदद ऐसा कर्म है कि करो तो लोग भूल जाते हैं और न करो तो लोग जीवन भर याद रखते हैं। मनुष्य दो स्थानों पर प्रायः हार जाता है, एक अपने परिवार के सामने और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति के सामने। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है बल्कि जो उसकी सहायता करता है उसका भी नुकसान कर देता है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और भय के लिए समय ही न बचे। यदि कोई भरोसा तोड़ दे तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह हमें यह सिखा जाता है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। यदि जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को स्वयं पर हावी न होने दो। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन होते हैं, पर अपने बनाए हुए रिश्ते तुम्हारी असली पूंजी होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। किसी के गुण दोष का निर्णय करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक है। अपनी कमजोरियां हर किसी को मत बताओ, क्योंकि प्रायः लोग दूसरों की कमजोरियों का लाभ उठाते हैं। जीवन में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वह जिसने तुम्हें कष्ट दिया और दूसरा वह जिसने कष्ट के समय तुम्हारा साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपना मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उनकी ही तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जीवन की आधी शिकायतें तो उसी दिन समाप्त हो जाएं जिस दिन लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय एक दूसरे से बात करना सीख लें। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय स्वयं को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में तुम्हें खो देने का भय सदा बना रहे। चार वेदों का गूढ़ अर्थ न भी जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म यदि समझ लिया जाए तो जीवन अपने आप सार्थक हो जाता है। बुद्धियुक्त पुरुष इसी लोक में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस क्षण तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर लेती है उसी क्षण तुम इस लोक और परलोक से जुड़े सुने हुए
और सुनने में आने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हो। हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य अपने मन में स्थित समस्त कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसी अवस्था में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिसके मन में दुख आने पर उद्वेग नहीं होता, सुख मिलने पर मोह उत्पन्न नहीं होता और जिसके भीतर से राग, भय तथा क्रोध समाप्त हो जाते हैं, वही मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से पूरी तरह हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। किससे, कब और कितना बोलना है, यदि यह विवेक आ गया तो समझो जीवन की सबसे बड़ी समझ प्राप्त हो गई। कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थ नहीं बल्कि धर्म है। धर्म से भरा हुआ हृदय सदैव धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हुआ हृदय अधर्म की ओर ही ले जाता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको सब कुछ मिलता है, किंतु समय से पहले की चाह ही दुख का वास्तविक कारण बनती है। किसी से सच्चा प्रेम होना पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी घटित हुआ है उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं है, इसलिए अनावश्यक परेशान होना व्यर्थ है। हर वस्तु की शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पर आकर ही होता है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख सच्चा सुख नहीं होता। यह सुख पहले अमृत की तरह मीठा लगता है पर अंततः विनाश का कारण बन जाता है। कान्हा कहते हैं, हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। यदि मेरी बातें तुम्हें कठिन या अटपटी लगती हैं तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तुम संसार को उस दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो जिस दृष्टि से मैं देखता हूं। एक बार यदि तुमने मुझ पर पूर्ण विश्वास कर लिया तो जीवन में कभी निराश नहीं होगे। जो मुझ पर विश्वास करता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ छल करता है उसके लिए मैं स्वयं शत्रु बन जाता हूं। जिसने मेरे किसी भक्त को एक बार भी धोखा दिया उसका उद्धार जन्मों तक नहीं होता। मैं प्रत्येक हृदय को मंदिर की तरह देखता हूं और जो हृदय जितना निर्मल होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। श्री भगवान कहते हैं, इस संसार में प्रेम सभी से करो पर पूर्ण विश्वास केवल परमात्मा पर रखो। जब तुम किसी कार्य की शुरुआत करोगे तो संभव है कि प्रारंभ में असफलता मिले, गिरना भी पड़े, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उस मार्ग को छोड़ दिया जाए। एक समय ऐसा आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। उस मार्ग में मैं हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे छोटे बड़े हर कर्म में। जो भी करो उसे नम्रता और सरलता के साथ करो, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य अंततः इससे मुक्त होना है। वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर रहता है और सुख दुख को समान भाव से सहन करता है। जो अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है वही मुझसे संवाद कर सकता है और मेरा दर्शन कर सकता है। जो व्यक्ति मुझे प्रत्येक वस्तु में देखता है और मेरे अस्तित्व का अनुभव करता है वही मेरा सच्चा भक्त है, और ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस संसार में न कोई सदा से है और न कोई सदा रहेगा, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी के हृदय में निवास करता हूं, मेरी ऊर्जा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। जो मुझे पहचान लेता है उसे मैं निरंतर भक्ति रस प्रदान करता रहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी यदि पूर्ण समर्पण और सच्चे भाव से मेरी उपासना करे तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं। जो कुछ तुम सुनते हो
उस पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। कुछ लोग विवेक के मार्ग से मुझे अपनाते हैं, कुछ ज्ञान के द्वारा, कुछ कर्म के द्वारा और कुछ योग के माध्यम से। तुम मुझे जिस रूप में पाना चाहते हो वह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम मुझे जिस नाम और भाव से पुकारोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तुम सदा मेरे प्रति सजग रहो, मेरी उपासना करो और अपने हर कार्य में मेरा स्मरण रखो। मैं वचन देता हूं कि तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे लोग मूर्ख हैं जो प्रेम को व्यर्थ कहते हैं, क्योंकि प्रेम ही इस संसार की मूल शक्ति है। इसी प्रेम से यह सृष्टि बनी है। रिश्तों में नियमित दूरी उन्हें मजबूत बनाती है, जबकि अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए संघर्ष करना सीखो, अधर्म का अंत करना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा जल में तेल की बूंद के समान होता है। कितना ही असत्य क्यों ना फैल जाए, सत्य ऊपर ही तैरता रहता है। जीवन में कभी आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे पूरे संसार को जान ले, पर यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही रहता है। अपने स्वार्थ के लिए लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुमसे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, पर उनके व्यवहार को सत्य मानकर यदि तुम फंस गए तो अंततः नुकसान तुम्हारा ही होगा। प्रायः सबसे अधिक चोट वही लोग देते हैं जो हमारे सबसे अधिक अपने होते हैं। यही गीता का गहन सत्य है, क्योंकि महाभारत केवल बाहरी लोगों की नहीं बल्कि एक ही परिवार की लड़ाई थी। किसी की सहायता करो या न करो, पर जानबूझकर कभी किसी का हृदय मत दुखाओ, क्योंकि जब किसी का दिल तुम्हारी वजह से दुखता है तो वह पीड़ा एक दिन तुम्हें भी अवश्य मिलती है। किसी भी वस्तु की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अति अंततः स्वयं के लिए हानिकारक होती है। जीवन संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ अधर्म या अन्याय करते हैं उनका विरोध करना आवश्यक है, क्योंकि अन्याय सहना भी पाप में सहभागी बनना है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखना चाहिए। जीवन में वही करो जो तुम्हारे लिए सही है, न कि वह जो लोग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी रक्षा स्वयं नहीं करता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो अपने महत्व को नहीं समझता उसे संसार भी महत्व नहीं देता। बुरा व्यक्ति अपनी बुराई नहीं छोड़ता, चाहे तुम उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना करो। इसलिए जैसा व्यवहार सामने वाला करे वैसा ही व्यवहार करना भी कभी कभी आवश्यक हो जाता है। जो समय की कदर नहीं करता समय भी उसकी कदर नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। संगति का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा व्यक्ति यदि बुरी संगति में रहेगा तो एक दिन वह भी बुरा बन सकता है। इसलिए सदैव अच्छे लोगों की संगति अपनाओ। इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त किसी को अपना मत समझो, क्योंकि जब संसार के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग सदैव खुला रहता है। सदा संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, न इस लोक में, न अगले लोक में, न परलोक में। जब तक मनुष्य संदेह में रहता है तब तक वह किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकता। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या उत्पन्न किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ही वह मार्ग है जिसके द्वारा जीवात्मा स्वयं से जुड़ती है। कर्म योग आत्मज्ञान को जागृत करता है
और इसके माध्यम से मनुष्य न केवल अपने वर्तमान जीवन का उद्देश्य समझता है बल्कि जीवन के पश्चात की अपनी गति का भी बोध प्राप्त करता है। इस मार्ग में कर्म के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग माना गया है। गृहस्थ और कर्मशील व्यक्ति के लिए यह योग अत्यंत उपयुक्त है। कर्मयोग यह सिखाता है कि कर्म केवल कर्म के लिए करो, आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है क्योंकि कर्म करना उसके स्वभाव में है। इसके पीछे किसी फल की आकांक्षा नहीं होती। वह कर्म का त्याग नहीं करता बल्कि कर्म फल का त्याग करता है और इसी कारण कर्म से उत्पन्न होने वाले दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान होती है जो देता तो है पर बदले में कुछ पाने की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि देना ही उसका धर्म है और मांगना उसका उद्देश्य नहीं, इसलिए वह दुख के बंधन में नहीं पड़ता। जब कर्म फल का त्याग कर निष्काम भाव से कार्य किया जाता है तब वही कर्म पूजा के समान बन जाता है क्योंकि इस संसार का कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है। इसलिए कार्य की प्रकृति चाहे जैसी भी हो, निष्काम कर्म अंततः ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। गीता के अनुसार पुनर्जन्म का मुख्य कारण वासनाओं और अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्म योगी कर्म फल के बंधन में नहीं पड़ता, इसलिए उसके भीतर वासनाओं का संचय भी नहीं होता और इसी कारण वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तीन का मन वायु की तरह अत्यंत चंचल है। यही मन मनुष्य को कामनाओं और वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। मन को वश में करने से बुद्धि की शक्ति केंद्रित होती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगती है। गीता यह भी बताती है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया वह व्यर्थ की चिंताओं और अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सुख और दुख में समान भाव से शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, जो शुभ और अशुभ की प्राप्ति में न तो हर्षित होता है और न द्वेष करता है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि के समान होता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर चित्त और संयमित इंद्रियों के साथ ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है और सदैव संतुष्ट रहता है। क्रोध को भगवान नरक का द्वार बताते हैं क्योंकि क्रोध से मन अशांत हो जाता है, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, बुद्धि नष्ट होती है और अंततः मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना आए स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करना चाहिए। श्री भगवान यह भी कहते हैं कि जैसे समुद्र भारी से भारी तूफानों और असंख्य नदियों के जल के प्रवाह को अपने भीतर समाहित कर लेने पर भी अपनी मर्यादा और स्थिरता नहीं छोड़ता, उसी प्रकार परमात्मा में स्थित योगी की अवस्था भी अचल रहती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख, लाभ हानि या संयोग वियोग से उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह योगी परमात्मा में निरंतर अटल और एकरस भाव से स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता अहंकार और मोह से रहित होकर जीवन यापन करता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश की ज्योति स्वतः चमक उठती है उसी प्रकार सत्य भी स्वयं प्रकाशित होता है। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वही सत्य है जबकि झूठ सदैव स्वयं को ही सत्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं।
सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम सदैव अनुकूल हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य जन भी उसी का अनुसरण करते हैं, इसलिए सज्जन व्यक्तियों का आचरण सदैव उत्तम होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते वे अज्ञानी होते हैं और जीवन में कभी भी सच्चे सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलने लगती है और वे लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों को गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे अनुचित आचरणों में लिप्त हो जाते हैं और इस लोक तथा परलोक दोनों में पतन को प्राप्त होते हैं। अंत में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, यदि उसकी मृत्यु भी हो जाए तो वह मृत्यु उसके लिए भी परम कल्याणकारी बन जाती है और वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सभी जन्मों को तुम नहीं जानते, किंतु मैं उन्हें भलीभांति जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति के अधीन होकर अपनी योग माया से बार बार प्रकट होता हूं। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर लोगों के सम्मुख आता हूं। मनुष्य जिस भाव और जिस रूप में मेरी उपासना करता है, मैं भी उसे उसी भावना के अनुरूप दर्शन देता हूं। जो भाव लेकर मनुष्य मेरी भक्ति करता है, मैं उसी भाव का अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं भी चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, मैं भी उसके लिए व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पित कर देता हूं। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोगों की इच्छा से लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। परंतु मेरी भक्ति का स्वरूप ऐसा नहीं है। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो मैं उनकी उस कामना को भी पूर्ण करता हूं, जिससे धीरे धीरे उनका विषयों से वैराग्य हो जाए और मेरे प्रति प्रेम व विश्वास बढ़े। इसी कारण सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल तुरंत दिखाई नहीं देता और मंदबुद्धि लोग शीघ्र फल की इच्छा से अन्य देवताओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मनुष्य प्रायः अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके अपने हाथों में है। जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए बीते हुए का पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो, क्योंकि वास्तविक जीवन तो वर्तमान में ही है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वही कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान होता है और वह सुखपूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। न मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और न ही किसी के कर्म फल का। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगता है और उन्हीं कर्मों से उसका भाग्य बनता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी। ज्ञानी पुरुष कर्म योग या भक्ति योग के द्वारा एक ही जन्म में इस संसार रूपी समुद्र को पार कर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जबकि अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वह इस लोक में हो या परलोक में, जहां भी रहता है, परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है,
जो जानबूझकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं और मुझे जानने का प्रयास भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य न इस जीवन में और न ही जीवन के बाद मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह निश्चित ही मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि और निष्काम प्रेमी भक्त के प्रेम से अर्पित उस साधारण से अर्पण को भी मैं प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। हे अर्जुन, तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित कर दो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए न कोई प्रिय है और न अप्रिय, पर जो भक्त प्रेम से मेरा भजन करते हैं वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मेरी शरण में आता है तो वह भी साधु के समान माना जाता है, क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर की भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच या चांडाल कोई भी हो, जो मेरी शरण में आता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हमारे भीतर के तामसिक गुणहीन भावना उत्पन्न कर हमें गिराते हैं और राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु तथा लोभी बना देते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने तामसिक और राजसिक गुणों का त्याग कर सात्विक गुणों को अपनाना चाहिए। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को समस्त सृष्टि से जोड़ता है और प्रेम करना सिखाता है। यदि किसी का भला न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि संसार भले ही दुर्बल हो पर उसे रचने वाला परमात्मा सर्वशक्तिमान है। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह वास्तव में केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अपनी अंतरात्मा। इसलिए अपने आप को पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा सहारा। जिसने इस सहारे को पहचान लिया वह भय, चिंता और दुखों से स्वतः मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए सबसे पहला और सबसे आवश्यक कार्य है स्वयं का आकलन करना, अर्थात अपने बारे में गहराई से जानना, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता और अपनी सीमाओं को पहचानना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तब तक उसका वास्तविक उद्धार संभव नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग स्वयं पर विश्वास करते हैं वे अंततः सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। जैसा व्यक्ति विश्वास करता है वैसा ही वह धीरे धीरे बन भी जाता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है, आज यदि दुख है तो कल सुख भी अवश्य आएगा। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे ही मनुष्य ईश्वर से जुड़ता है वैसे ही उसके जीवन में शांति, सुकून, धैर्य, सहन शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा, सही दिशा और संतोष का आरंभ हो जाता है। कब मन पीड़ा से मुक्त हो जाता है इसका आभास भी नहीं होता। जो लोग अपने हर काम को मन लगाकर करते हैं और छोटे से छोटे कार्य में भी आनंद ढूंढ लेते हैं वे निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपने काम को बोझ समझकर केवल किसी तरह पूरा करना चाहते हैं और उसे सही ढंग से नहीं करते वे प्रायः जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें केवल अपना लाभ दिखाई देता है और दूसरों की भलाई से कोई सरोकार नहीं होता, उनका अंततः कभी भला नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता के सार में ऐसे लोगों के लिए गहन शिक्षा दी है।
भगवान कहते हैं कि स्वार्थ शीशे पर जमी धूल की तरह है, जिसके कारण मनुष्य अपना वास्तविक प्रतिबिंब नहीं देख पाता। स्वार्थ व्यक्ति को दूसरों से दूर करता है और नकारात्मक परिस्थितियों की ओर धकेल देता है, जिससे वह अंततः अकेला रह जाता है। यदि आप जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं तो स्वार्थ को अपने पास आने ही न दें, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति मित्रता भी केवल अपना मतलब निकालने के लिए करता है। ईश्वर सदैव मनुष्य का साथ देता है। जो व्यक्ति इस गहरे सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि का संचालन करने वाला केवल ईश्वर है, मनुष्य तो मात्र उसके हाथ की कठपुतली है। इसलिए न तो भविष्य की अत्यधिक चिंता करनी चाहिए और न ही अतीत में उलझे रहना चाहिए। हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर मनुष्य का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालता है। इसी कारण हमें हर स्थिति में परमात्मा पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि पहले अपने कर्तव्यों और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें, उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करें, तभी दूसरों के कार्यों में हाथ बटाएं। जो लोग अपने काम छोड़कर केवल दूसरों के काम करते रहते हैं, वे अक्सर परेशान और असंतुष्ट रहते हैं। मनुष्य हृदय से जो दान कर सकता है, वह केवल हाथों से संभव नहीं होता, और मौन रहकर जो भाव व्यक्त किए जा सकते हैं, वे शब्दों से नहीं कहे जा सकते। जो विषय हमारे नियंत्रण और दायरे से बाहर हैं, उनमें समय नष्ट करना मूर्खता है। किसी को भी समय से पहले या भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करना आवश्यक है। कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य मुझमें मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें वह सब प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए जीवन के कठिन समय में परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना ही सबसे बड़ा बल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना ही बुरा समय क्यों ना आ जाए, मनुष्य को कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि इस संसार का नियम है कि जो जन्म लेता है, उसे दुख का सामना भी करना ही पड़ता है। रोने और चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता, उलटे दुख और बढ़ जाता है। जीवन में आगे बढ़ने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि परिस्थितियों के अनुसार आपको क्रांतिकारी बदलाव भी करने पड़े, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आवश्यकता के अनुसार स्वयं को बदलना चाहिए और समाज की आलोचना की परवाह किए बिना अपने कर्मों को पूर्ण करना चाहिए। जीवन में मित्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सच्चे मित्रों की पहचान हमेशा कठिन समय में ही होती है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के कठिन काल में उनका साथ दिया, उसी प्रकार हमें भी अपने मित्रों का साथ देना चाहिए और ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो विपत्ति के समय हमारे साथ खड़े रहें। जीवन में हार और जीत का क्रम चलता रहता है, परंतु सफलता उसी को प्राप्त होती है जो अपनी हार और गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ता है। हार मानकर निराश हो जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए सही और सशक्त रणनीति का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना योजना के किसी भी मोर्चे पर विजय संभव नहीं होती। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन न करते, तो कौरवों के विरुद्ध युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त न होती। भगवान कहते हैं कि यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता, तो भगवान उसकी अधूरी साधना को पूर्ण कराने के लिए उसे फिर से श्रेष्ठ और शुद्ध वातावरण में जन्म प्रदान करते हैं। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं है, मैं ही इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूं। जैसे मोती सूत के धागे में पिरोए होते हैं, वैसे ही यह पूरा जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। यह संसार मुझसे उत्पन्न होता है
मुझ में स्थित रहता है और अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान के अतिरिक्त इस संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। सत्व, रज और तम, इन तीनों

पवित्र कर्म करने वाले मेरे चार प्रकार के भक्त होते हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। पहले आर्त भक्त होते हैं जो दुख से मुक्ति चाहते हैं। दूसरे अर्थार्थी भक्त होते हैं जो धन और संपत्ति की कामना से भजन करते हैं। तीसरे जिज्ञासु भक्त होते हैं जिन्हें केवल मुझे जानने की उत्कंठा होती है। और चौथे ज्ञानी भक्त होते हैं जो ज्ञान सहित मुझे जानते हैं। आर्त भक्त वे होते हैं जो प्राण संकट आने पर केवल भगवान को ही पुकारते हैं और अपने कष्ट का निवारण किसी अन्य से नहीं चाहते। द्रौपदी और गजेंद्र का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि जब तक मनुष्य अन्य सहारों पर निर्भर रहता है तब तक वह दुख भोगता रहता है। द्रौपदी ने चीरहरण के समय जब तक भीष्म पितामह और पांडवों पर भरोसा किया तब तक वह पीड़ा में रही, परंतु जब उसने सब सहारे छोड़कर अनन्य भाव से भगवान को पुकारा तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई। इसी प्रकार गजेंद्र भी जब तक अन्य हाथियों और अपनी शक्ति का सहारा लेता रहा तब तक ग्राह से संघर्ष करता रहा, किंतु जब उसने पूर्ण समर्पण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर भगवान को पुकारा तब भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसका उद्धार किया। अर्थ भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि संकट आने पर उसने किसी अन्य उपाय का सहारा न लेकर सीधे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उसने निवेदन किया, हे जगतपति, अश्वत्थामा का यह दहकता हुआ बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ा आ रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। तुरंत भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर गर्भ की रक्षा की और परीक्षित की प्राण रक्षा की। इसका तात्पर्य यह है कि जो भक्त अपने सुख सुविधा और आवश्यकताओं के लिए धन संपत्ति की कामना करता भी है तो वह उसे केवल भगवान से ही चाहता है, किसी अन्य से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वह होता है जिसके भीतर भगवान को जानने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है और वह भक्ति के रहस्यों को समझने के लिए व्याकुल रहता है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो आगे चलकर उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रीमद् भगवद् गीता में उच्च कोटि के भगवत प्रेमी को ज्ञानी भक्त कहा गया है। ऐसे भक्तों के मन में किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छा नहीं रहती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही डूबे रहते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों में ब्रज की गोपियों का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख का पूर्ण त्याग कर प्रियतम भगवान के सुख को ही अपना सुख मान लिया था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता और इसी कारण वह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाता है। अक्सर लोग यह देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि बुरे लोग बुरे कर्म करने के बाद भी जीवन में सुखी और संपन्न दिखाई देते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करने के बाद भी अपमान, पीड़ा और कष्ट झेलते रहते हैं। इसी कारण बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं वे ही क्यों परीक्षा में पड़ते हैं और जो अधर्म के मार्ग पर हैं वे क्यों सुख भोगते प्रतीत होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे इस युग में अच्छाई का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है। यदि आपके मन में भी कभी ऐसा विचार आया है तो इसका उत्तर भागवत कथा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। भागवत में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती थी वे सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार अर्जुन अत्यंत उलझन में थे, वे श्री कृष्ण के समीप आए और विनम्र भाव से बोले कि उनके मन में एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर वे केवल उन्हीं से सुनना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने सहज मुस्कान के साथ पूछा, पार्थ तुम्हारा प्रश्न क्या है? अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं यह जानना चाहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ जीवन में बार बार बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग सुखी और समृद्ध

दिखाई देते हैं। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि मनुष्य जैसा सोचता और अनुभव करता है वास्तविकता वैसी नहीं होती। अज्ञानवश मनुष्य सत्य को समझ नहीं पाता और बाहरी घटनाओं के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल लेता है। अर्जुन यह सुनकर भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। प्रकृति हर मनुष्य को अपनी राह चुनने का अवसर देती है। अब यह उसी पर निर्भर करता है कि वह धर्म का मार्ग अपनाता है या अधर्म का। कथा आरंभ करते हुए श्री कृष्ण बोले कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। उनमें से एक व्यापारी था जो धर्म में गहरी आस्था रखता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, दान धर्म में विश्वास रखता और भगवान की आराधना करता था। दूसरा पुरुष उससे बिल्कुल विपरीत था। वह भी रोज मंदिर जाता था, पर पूजा के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे न धर्म से कोई सरोकार था, न दान पुण्य से। समय बीतता गया। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं। यह बात जब उस दुष्ट व्यक्ति को पता चली तो उसने सोचा कि यही सही अवसर है मंदिर का धन चुराने का। उसने पुजारी की आंखों से बचकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय वह धर्मात्मा व्यापारी भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्यवश पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोग इकट्ठा हो गए और बिना सच्चाई जाने उस व्यापारी को खूब मारा पीटा। किसी तरह वह वहां से जान बचा कर निकला, परंतु दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। घायल अवस्था में वह लंगड़ाता हुआ घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। वह दुष्ट व्यक्ति खुशी खुशी बोला कि आज उसकी किस्मत चमक गई, उसे एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर व्यापारी का मन टूट गया। उसने अपने घर जाकर भगवान की सभी तस्वीरें हटा दीं और निराश हो गया। कुछ वर्षों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब वे यमराज की सभा में पहुंचे और धर्मात्मा व्यापारी ने उस दुष्ट व्यक्ति को वहां देखा, तो उसके मन में क्रोध उमड़ आया। उसने यमराज से प्रश्न किया कि वह तो जीवन भर अच्छे कर्म करता रहा, दान पुण्य करता रहा, फिर भी उसे केवल अपमान और पीड़ा ही मिली, जबकि उस दुष्ट व्यक्ति को धन और सुख क्यों मिला? यह भेदभाव क्यों? यमराज ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम सत्य को नहीं समझ पाए। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वही तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु एक साधारण चोट में बदल गई और तुम्हें जीवन दान मिला। अब इस दुष्ट व्यक्ति को देखो, इसके भाग्य में राजयोग था, परंतु इसके अधर्म और कुकर्मों के कारण वह राजयोग सिमटकर केवल एक छोटी सी धन की पोटली बनकर रह गया। कथा समाप्त कर श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, पार्थ, क्या अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? फिर उन्होंने कहा कि यह सोचना गलत है कि भगवान मनुष्य के कर्मों को नजरअंदाज कर देते हैं। भगवान कब, क्या और किस रूप में देते हैं, यह मनुष्य की समझ से परे होता है। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर अच्छे कर्म करता रहता है उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कभी भी अपने अच्छे कर्मों का मार्ग न छोड़े, क्योंकि उनके फल अवश्य मिलते हैं इसी जीवन में और सही समय पर। क्योंकि श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवद गीता में स्वयं बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो मनुष्य सच्चे मन से अच्छे कर्मों में लगा रहता है उसका अंत कभी अशुभ नहीं होता।
मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनकर जीवन जीना चाहिए, जीवन का आनंद लेना चाहिए, उदार हृदय से बोलना चाहिए, किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी का अहित सोचने से बचना चाहिए। सभी के साथ सद्भाव और करुणा का व्यवहार करना ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। कर्म के नियम के अनुसार प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण और प्रभाव अवश्य होता है। एक जैसे दिखने वाले कर्मों के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनका फल इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म करने वाला व्यक्ति किस भावना और चेतना से कर्म कर रहा है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान मनुष्य के भीतर चल रहे द्वंद्वों और अशांति को भस्म कर देता है और उसे आंतरिक शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस छोटे बच्चे की तरह करना चाहिए, जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास होता है कि उसे थाम लिया जाएगा। इसी प्रकार जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा सहारा है। इस मनुष्य लोक में जो लोग कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं, वे प्रायः देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि उन्हें शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण गुण और कर्मों के अनुसार ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। स्वयं सृष्टि के आदि कर्ता होते हुए भी परमेश्वर वास्तव में अकर्ता है, क्योंकि वे कर्मों के फल में लिप्त नहीं होते। इसका भाव यही है कि मनुष्य को कर्म अवश्य करना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। पूर्व काल में हमारे पूर्वजों ने भी इसी निष्काम कर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त किया था। इसलिए यदि मनुष्य भी मोक्ष की कामना करता है तो उसे उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जिसकी आसक्ति पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, जो देहाभिमान से मुक्त है, जो ममता और अहंकार से रहित होकर निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। वही कर्मयोगी अपने कर्मों को यज्ञ के समान करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए ईश्वर ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वही सच्चा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस परम रहस्यमयी गीता के ज्ञान को प्रेम पूर्वक भक्तों में प्रचार करता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा और शुद्ध भाव से इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र करता है, वह भी समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु हमारा वर्तमान है, क्योंकि एक बार बीत जाने के बाद उसे संसार की सारी संपत्ति देकर भी वापस नहीं लाया जा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन को सरलता से जी सकता है, फिर भी वह चिंताओं में घिरा रहता है। वह बीते हुए कल को सोचकर दुखी होता है और आने वाली मृत्यु से भयभीत रहता है। न वह वर्तमान को ठीक से जी पाता है और न ही मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार कर पाता है। ज्ञानी पुरुष न तो मृत व्यक्ति का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। कान्हा कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीते हुए कल को नहीं बदल सकता, लेकिन यदि तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे आने वाले कल को मैं अवश्य उज्ज्वल बना दूंगा। यदि ईश्वर से कुछ मांगने पर वह तुरंत न मिले तो उससे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा होता है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है,
वैसे ही स्वर्ग और मुक्ति के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम न बोलें तब भी वह सुन ले, इसलिए उसे परमात्मा कहा जाता है, और वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, यही श्रद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवों का जीवन हूं, और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य गीता के इस गूढ़ रहस्य को भक्तों में स्थापित करता है और इसके ज्ञान का विस्तार करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक शांत मन से देखने और सुनने के बाद आपके मन में असीम शांति का अनुभव अवश्य हुआ होगा और आपके विचारों तथा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आया होगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरे मन से सुनता है और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, उसे अपनी हर समस्या और हर कठिनाई का समाधान अवश्य मिलता है। निश्चय ही मित्रों, अब आइए इस पावन ज्ञान को एक सुंदर समापन के साथ अपने हृदय में स्थिर करें। श्रीमद् भगवद् गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य प्रकाश है। यदि इसके एक भी उपदेश को हम अपने आचरण में उतार लें, तो जीवन की अनेक उलझने स्वयं ही सुलझने लगती हैं। आज जो कुछ आपने सुना है, वह केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। जब मन डगमगाए, जब परिस्थितियां कठिन लगें, तब गीता का यही ज्ञान आपको धैर्य, साहस और शांति प्रदान करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने और शांत मन से सुनने के बाद आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा अवश्य जागृत हुई होगी। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू पाया हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प अवश्य लें। इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने भाव कमेंट में साझा करें और जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो नियमित रूप से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आपके जीवन में शांति, प्रेम और संतुलन का वास हो, इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।

सुनेगा। खेल भुज में लत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग भोर सर भोर बनवारी। मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी।

गीत सुहाने आप सुन रहे थे डॉक्टर गाथा मोहंती की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आज का ये सुहाना सुरीला सफर यहीं तक। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।

तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले की जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। सभी का मूड्स ऑफ रफी प्रोग्राम में मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रफी जी ने हर तरह के गाने गाए हैं, चलिए उनके कुछ प्यार भरे रोमांटिक गीत सुनते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 1967 में रिलीज्ड फिल्म शागिद से, जिसमें जॉय मुखर्जी और सायरा बानू थी। इस फिल्म का सदाबहार म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, जो आज तक तरोताजा है। इसी फिल्म का एक सदाबहार रोमांटिक गीत सुनते हैं जिनी और डॉक्टर शरद की आवाज में।

वाह क्या बेहतरीन गीत पेश किया। अगला गाना सुनते हैं 1968 में रिलीज फिल्म हसीना मान जाएगी से, जिसमें शशि कपूर और बबीता जी थीं। प्रकाश मेहरा जी की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म का सदाबहार म्यूजिक दिया कल्याण जी आनंद जी ने, जिसमें मोहम्मद रफी जी और लता जी के गाए हुए गाने बहुत फेमस हुए। ऐसा ही एक मधुर और बेहतरीन गीत सुनते हैं डॉली जी और संजय जोशी जी की आवाज़।

वाह, क्या बेहतरीन गीत पेश किया, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं 1963 में रिलीज फिल्म हमराही से, जिसमें राजेंद्र कुमार और शोभा खोटे थे। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन ने, जिसमें प्लेबैक किया मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी जी जैसे सिंगर्स ने। आइए इसी फिल्म से एक डुएट सुनते हैं, श्वेता जी और संतोष खेरे जी।

0: बहुत खूब। चलिए अगला गाना सुनते हैं 1962 में बनी फिल्म दिल तेरा दीवाना से, जिसमें शमी कपूर और माला सिन्हा थी। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन ने और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी, लता जी और आशा जी जैसे कलाकारों ने। ऐसे ही फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं प्राची और सुबोध जी की मधुर आवाज।
1: पिछली गिरा के

क्या मधुर गीत पेश किया, बहुत खूब। अगला गाना सुनते हैं 1961 में बनी फिल्म जंगली से, जिसमें शम्मी कपूर और सायरा बानो थी। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन ने और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी और लता जी ने। चलिए इसी फिल्म का एक मधुर ड्यूएट सुनते हैं सविता जी और अमित पाठक जी की मधुर आवाज में।

वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। अगला गाना सुनते हैं 1958 में रिलीज्ड फिल्म काला पानी से, जिसमें देवानंद और मधुबाला जी थीं। इस फिल्म का सदाबहार संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी जी और आशा भोंसले जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं सचिन और प्रनीति जी के मधुर स्वरों में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, कहीं ना जाइएगा, रफी जी के मधुर गीतों का सिलसिला अभी जारी है।
1: रफी सोलफुल, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट दिया गया है मुझे। सोलफुल यानी कि रूहानी गाने, वो गाने जो दिल को छू जाएं, चाहे वो दर्द भरे गीत हों, गजल हों, चाहे रोमांटिक हों, चाहे शरारती हों। रूहानी संगीत हमारी रूह की गहराइयों में पहुंचकर हमारी रूह कभी गमगी कर देता है, कभी प्योर लव का एहसास दिलाता है, कभी एक छोटा बच्चा बनकर गुदगुदाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। कुल मिलाकर रूहानी संगीत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी खुद को उन गीतों से जुड़ा पाते हैं। मोहम्मद रफ़ी के ऐसे ही कुछ नगमे, गीत, गज़ल पेश करूंगा आपके सामने आज मैं मनु मृदुल, इंटरनेट रेडियो जयपुर के सौजन्य से, आओ झूमे गाएं समूह की ओर से। सबसे पहले सुनते हैं एक बेहद रुमानी गीत सूर्य रेखा जी और सैंडी की आवाज़ में, फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं, जिसमें मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया है सुमन कल्याणपुर ने।

वाह क्या बात है सूर्य रेखा दी और सैंडी। जैसा कि मैंने कहा, रूहानी संगीत सिर्फ रूमानी गीतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बेचैन दिल की निराशा का भी एहसास दिलाते हुए दिल की गहराइयों में उतर जाता है। ऐसा ही एक गीत सुनिए श्रुति और मुकेश चोपड़ा की आवाज में, जिसे फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त में मोहम्मद रफी ने गाया था।

चलिए अब सुनते हैं दिल की अभिव्यक्ति को उजागर करने वाला मोहम्मद रफी का गाया एक गीत अनिल झुमका वाला की आवाज में, फिल्म तीन देवियों से।

अगला गाना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आपको अवश्य ही ऐसा लगेगा जैसे जन्नत यहीं उतर के आ गया हो। नौशाद का संगीत और मोहम्मद रफ़ी की गायकी, साजों की आवाज़, सुर लय ताल, जैसे शहद की मिठास और दिल में उमड़ता हुआ प्रेम। इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कोई प्रेम की अभिव्यक्ति। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने गाया था फिल्म मेरे महबूब में, और आपके सामने ला रहे हैं संजय हारने।

सिर्फ प्रेम की अनुभूति ही नहीं बल्कि विरह और विरह की उदासी और मोहब्बत की बेचैनी को भी रफी अपने गानों में ऐसे उतारते थे कि चाहे किसी का दिल टूटा हो या ना टूटा हो, हर कोई उस गम को उनके गाए गानों में आसानी से महसूस कर ही लेता है। मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनकर लगता है कि मोहम्मद रफ़ी ना सिर्फ महसूस करके गाते थे बल्कि जो सुनता है वह खुद उसमें खो जाता है। इसी को कहते हैं रूहानी आवाज़। सुनते हैं अगला गीत विमल सोनी की आवाज़ में, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म दिल एक मंदिर में गाया था।

कहते हैं सत्य कड़वा होता है, मगर यकीन मानिए मोहम्मद रफ़ी ने इस बात को झुठला दिया है। और यह हो पाया है मोहम्मद रफ़ी के सत्य को अभिव्यक्त करने के अंदाज से। यही नहीं, अगला गाना सुनकर आपको सत्य बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, बल्कि उस सत्य के आध्यात्मिक को सुनकर

में पड़ जाएंगे। शाश्वत सत्य को मोहम्मद रफी ने जिस गंभीरता से गाया है उससे तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने उसे रूह से महसूस करके गाया है, मगर मुझे विश्वास है कि इस गीत को सुनने के बाद आप भी आत्मविभोर हो उठेंगे। ये गीत फिल्म चित्रलेखा से है, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया है रोशन ने, जिसे आज लेकर आ रही हैं बहुत ही सुरीली और बेहद उम्दा गायिका जूही सिन्हा।

बरसात में भीगती हुई नायिका और शायर दूर से उसे निहारता हुआ। क्या ये भूलने की बात है? जिस तरह शायर ने उस माहौल का व्याख्यान किया है और जिस बखूबी से मोहम्मद रफ़ी ने उसे गाया है, लगता है जैसे सब कुछ आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह घूम रहा हो। यह होता है रूहानी संगीत का असर। पेश करने जा रहे हैं आपके सामने संजय गुप्ता, जम्मू से।

0: इसी खूबसूरत गीत के साथ
1: बने रहिए हमारे साथ।
2: जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। जयपुर रेडियो।
3: उफ, ये सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
4: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा JMD का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाए।
5: JMD, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
6: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान
2: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आज की शाम कुछ खास है क्योंकि हम आज एक ऐसे गायक के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम सब सुरों के बादशाह के नाम से भी जानते हैं जी हाँ सही पहचाना वो कोई और नहीं हम सबके चहेते मोहम्मद रफी जी हैं रफी जी का जन्म 1924 में अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था और उनको बचपन में सब फिंकू के नाम से पुकारा करते थे उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए जैसे कि असमीस कोंकणी भोजपुरी तेलुगु मैथिली उर्दू गुजराती पंजाबी मराठी बंगाली जैसी भाषाएं और तो और उन्होंने इंग्लिश फारसी अरेबिक सिन्हला डच स्पैनिश जैसी भाषाओं में भी गाने गाए उन्होंने हर तरह के गीत भी गाए जैसे कि भक्ति गीत शास्त्रीय गीत गजल कव्वाली देशभक्ति गीत मस्ती भरे गीत और दर्द भरे गीत तो फिर आज के गीतों के कारवां का आगाज करते हैं 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं से जिसमें ऋषि कपूर जी थे इस फिल्म को बेमिसाल संगीत से सजाया आरडी बर्मन जी की धुनों ने और सुरों को लफ्जों से सजाया मजरू सुल्तानपुरी जी ने इस फिल्म के सारे गाने खूब धूम मचा रहे थे पर उस साल का फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला मोहम्मद रफी जी को और साथ ही साथ उसी गाने के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला तो फिर आइए उसी गीत को सुनते हैं मेरी और विद्या प्रकाश जी की मधुर आवाज में

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1980 की फिल्म आप ऐसे तो न थे से है, जिसमें राज बब्बर और रंजीता कौर थीं। इस फिल्म का जादू भरा संगीत दिया उषा खन्ना जी ने और गीत लिखे निदा फाजली जी ने। क्यों ना इसी जादू भरे गीत को सुना जाए विद्या जी और बिंदु जी की मधुर आवाज में।

0: मैंने।
1: क्या खूब पेशकश की। आइए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म एक नारी दो रूप से, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और रश्मि धवन थी। इस फिल्म में मात्र 4 गाने थे और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया गणेश जी ने और बेमिसाल शब्दों से सजाया असद भोपाली जी ने। चलिए इसी फिल्म के एक बेमिसाल गीत को सुनते हैं MD त्यागी जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म उस्तादों के उस्ताद से है, जिसमें प्रदीप कुमार के साथ शशिकला थी। इस फिल्म के सारे गाने खूब हिट हुए। इस फिल्म का बेहद शानदार संगीत दिया रवि जी ने और गीतों को शब्दों से पिरोया असद भोपाली जी ने। आइए इसी शानदार गीत को सुनते हैं अनिल झुमका वाला जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक शानदार पेशकश। दोस्तों, चलिए एक खेल खेलते हैं, पर उसके लिए आप सबको पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जी हाँ, आंखें बंद। ये ना सोचिएगा कि मैं देख नहीं रहा, आंखें बिल्कुल बंद। अब अगर मैं आप सबको इस मौसम में कश्मीर की बर्फीली वादियों में ले चलूं तो कैसा रहेगा? चारों तरफ बर्फीली वादियां, बर्फीले पहाड़ और ये मस्त सर्द हवा। क्या कहा आपने? कोई फिल्म का नाम याद आया? सही कहा, कश्मीर की कली। ये एक ऐसी फिल्म थी जो कश्मीर की बर्फीली वादियों में शूट की गई थी। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे SH बिहारी जी ने और उतना ही मस्ती भरा संगीत दिया ओपी नैयर जी ने। आइए इसी मस्ती भरे फिल्म के मस्ती भरे गीत को सुनते हैं जूही जी और सज्जाद जी की मधुर आवाज में।

कैसी लगी ये बर्फीले पहाड़ों की सैर? कश्मीर की कली एक ऐसी फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर के सभी गीतों को स्वर दिया मोहम्मद रफी जी ने और सारे के सारे गाने खूब सुपरहिट हुए। चलिए एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं गायत्री जी और डॉक्टर आदेश जी की मधुर आवाज में।

कहिए कैसी रही ये मस्ती भरी पेशकश। चलिए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म धर्मा से, जिसमें प्राण, नवीन निश्चल और रेखा थी। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया मास्टर सोनिक और ओम प्रकाश सोनिक जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे वर्मा मलिक जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं अंजलि दत्त के और संजीव जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1967 की सुपरहिट फिल्म तीसरी मंजिल से है, जिसमें शमी कपूर के साथ आशा पारिक थी। इस फिल्म के सभी गीतों में मोहम्मद रफी जी ने शमी कपूर जी को अपनी आवाज दी और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने और उन्हीं गीतों को संगीत से सजाया आर डी बर्मन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक खूबसूरत गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1961 की फिल्म जंगली से है, जिसमें शम्मी कपूर जी के साथ सायरा बानू थी। इस फिल्म ने कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते और हर एक गीत सुपरहिट हुआ। इस फिल्म के शानदार गीतों में हसरत जयपुरी जी की कलम का जादू देखते ही बनता है और उन्हीं गीतों को मस्ती भरे सुरों में सजाया शंकर जयकिशन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं डॉक्टर तरुणा जी और रामकृष्ण जी की मधुर आवाज में।

क्या शानदार गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1967 की फिल्म अदालत से है, जिसमें प्रदीप कुमार जी के साथ नरगिस थी। इस फिल्म के सारे गाने इतने मशहूर हुए कि आज तक गुनगुनाए जाते हैं। और इस फिल्म का संगीत दिया मदन मोहन जी ने और इस फिल्म के गीत लिखे राजेंद्र कृष्णन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मद भरा गीत सुनते हैं श्रुति जी और संजय जी की मधुर आवाज में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूँ।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: उफ, ये सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुकाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
2: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा JMD का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाएं।
3: JMD, the wonder of आयुर्वेदा।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं एक शाम, 100 साल एक आवाज। सुना है आज हवा भी गुनगुनाएगी, और रफी साहब की जन्म शताब्दी में हर धुन रफी साहब की याद दिलाएगी। तो चलिए रफ़ी साहब की यादों के इस गहरे समंदर में डूबते हैं और उनकी अमर आवाज़ को एक बार फिर से दिल से महसूस करने के लिए बुलाते हैं जयपुर रेडियो में पुणे से आज के कलाकार। एक आवाज़ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपके चहेते जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, और वो हैं सुदर्शन फाटक। वेलकम सुदर्शन जी, आपका जयपुर रेडियो में स्वागत है।
5: नमस्कार दोस्तों, आज 24 दिसंबर और आज के दिन आपके सामने रफी जी के गाने पेश करना, ये मेरे लिए किसी अवार्ड रिवॉर्ड से कम नहीं है। सबसे पहले थैंक यू जयपुर रेडियो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं बोलना चाहूँ आज के बारे में, आज के दिन के बारे में, रफ़ी जी के बारे में, तो मैं इतना ही कहूँगा कि समंदर से गहरा और आसमान से ऊंचा अगर कुछ है तो वो रफ़ी जी का सुर है। रफ़ी जी को जब सुनते हैं हम दूर से, सिर्फ सुनते हैं, तब ऐसा लगता है कितनी मुलायम आवाज़, कितने आसानी से गा रहे हैं, लेकिन वही जब हम कोशिश करने जाते गाने की, तब समझता है एक एक सुर कितना गहरा है। और आज मैंने जो कुछ भी कोशिश की है वो शायद उनके नाखून के बराबर भी ना हो, लेकिन ये मेरी तरफ से आज के दिन उनके 100वीं जन्मतिथि के अवसर पर मेरी तरफ से एक आदरांजलि है उनको।
4: थैंक यू सो मच सुदर्शन जी, सच अ ब्यूटीफुल थॉट। फ्रेंड्स, सुनते रहिए जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत। 100 साल पहले एक आवाज ने इस दुनिया में कदम रखा जो हर दिल के दर्द का मरहम बन चुका था, मोहम्मद रफी। रफी साहब का हर सुर एक दुआ बन के उठा और उनकी हर धुन मोहब्बत का पैगाम बन चुकी थी। तो चलिए सुनते हैं पहला नगमा हर दिल अजीज सुदर्शन की आवाज

बेहद खूबसूरत अंदाज सुदर्शन जी का। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, हुजूर चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। फ्रेंड्स, जिस तरह आपकी महबूबा का नूर कोई चुरा नहीं सकता, उसी तरह रफ़ी जी के किरदार की खुशबू कभी फीकी नहीं हो सकती। तो आइए ले चलती हूँ उनकी लाइफ के कुछ अनमोल किस्सों की तरफ और सुदर्शन फाटक के साथ उनके गीतों की तरफ। रफ़ी जी के परिवार का म्यूजिक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उनका दुनिया का सबसे महान सिंगर में शुमार होना सिर्फ उनके जुनून और हार्डवर्क का सबूत है। जिस तरह सैगल साहब के शो में लाइट गुल हो जाने की वजह से मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका मिला और म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर जी ने उन्हें बॉम्बे आने का न्योता दिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री बिकॉज ऑफ हिज हार्डवर्क। चलिए इतिहास के एक पन्ने में से निकला एक सुकून भरा अगला गीत सुनते हैं, दिल को छूने वाली सुदर्शन की आवाज़ में।

जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तबीयत बहलती थी नन्हे रफी जी की, जब एक फकीर गाते हुए उनके गांव की गली से गुजरता था, जो रफी जी की इंस्पिरेशन थे। और रफी साहब उस फकीर से इतने इंस्पायर्ड थे कि उस फकीर के आने से उनका हर दिन मानो रोशन हो जाता और बहार छा जाती थी। तो सुनते हैं ऐसा ही एक गीत सुदर्शन की नर्म आवाज में।

सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये सफर सुदर्शन और गुरप्रीत के संग? मुझे पूरा यकीन है कि दिलदार गायक के दिलदार श्रोताओं का दिल भी बड़ा होगा, जैसे रफी साहब का किरदार। क्या आपको पता है कि नए आने वाले कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को मौका दिया था रफी जी ने, और सिर्फ एक रुपए की साइनिंग अमाउंट लेकर गीत गाए? कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आजकल? तो जिनका किरदार एक राजा जैसा हो, उनके लिए ये गीत तो बनता ही है। फ्रॉम अनदर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग सुदर्शन, जो वर्चुअल सिंगिंग प्लेटफॉर्म स्टार मेकर की फैमिली BML यानी बॉलीवुड म्यूजिक वर्ल्ड के कैप्टन यानी राजा हैं। तो चलिए सुनते हैं

तक है जमाने पे जिस आवाज का जादू, उसके मेरे ऊपर उपकार बड़े थे। कहना है रफी के लिए बड़ा मुश्किल, इंसान बड़े थे या कलाकार बड़े थे। ऐसा कहना था हमारे म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी का। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजेश खन्ना काका और संगीत जगत के मसीहा मोहम्मद रफी की ऐसी जुगलबंदी हुई कि आज भी हर आशिक अपनी महबूबा के लिए वो गीत गाकर उसकी आंखों में डूब जाना चाहता है। उस गीत का जादू आज भी बरकरार है। तो सुनते हैं सुदर्शन की जादुई आवाज में वो गीत।

सो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो गीत सुने, हर गीत ने हमारे दिल में रफ़ी जी के रंग छोड़े हैं सुदर्शन की आवाज़ में। अब जो अगला गीत है वो एक लाइवली एंड प्लेफुल सॉन्ग है, नहीं शम्मी जी पर नहीं, बल्कि बॉलीवुड के एक सौम्य और संजीदा एक्टर नवीन निश्चल पर फिल्माया गीत। तो दोस्तों, आनंद लेते हैं मस्ती और जोश से भरे अगले गीत का।

सुदर्शन फाटक की आवाज में ये गीत एक नए रंग में दिखाई दिया। तो चलिए बढ़ते हैं मस्ती से सरोबार एक और गीत की तरफ।

भर गए ना आप जोश में? ये जोश और उमंग ऐसे ही बरकरार रखी हमारे जोशीले गायक सुदर्शन फाटक ने। और मोहम्मद रफी जी की बात करें तो चाहे जॉनी वॉकर का मजाक मस्ती भरा अंदाज हो, दिलीप कुमार की गहरी और दर्द भरी गजल, अमिताभ बच्चन का पावरफुल परसोना हो या शम्मी कपूर का एनर्जेटिक और फ्लर्टेशियस स्टाइल, रफी साहब की आवाज हर हीरो के लिए एकदम फिट लगती थी। जब उनका गाना सुनते तो ऐसा महसूस होता जैसे वो खुद ही गा रहे हों। और इसी तरह हमारे आज के कलाकार सुदर्शन फाटक भी हर गीत उसी अंदाज से बखूबी निभा रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं, तो सुनते हैं अगला गीत सुदर्शन की आवाज में।

जैसे रफ़ी जी के रोमांटिक नंबर्स उनके सिग्नेचर बन चुके थे, उसी रोमांटिक इमोशंस को सुना सुदर्शन की रोमांटिक आवाज़ में। सुनते हैं अगला क्लासिक सॉन्ग।

ऐसे तो रफ़ी साहब के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब धर्मेंद्र जी के लिए जट्टी अम्मला पगला दीवाना नाश नाश कर स्टूडियो में रिकॉर्ड किया रफ़ी जी ने, तो धर्मेंद्र ने उनको गले लगा कर कहा, वाह क्या अंदाज में गाया है। तो रफ़ी ने उनसे कहा कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब पर्दे पर लाना तुम्हारा काम है। तो सुनते हैं धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया यमला पगला दीवाना से कहीं हटकर अगला गीत।

यूं तो मेरी हर बात समझ जाते हो तुम, फिर भी क्यों मुझे इतना सताते हो तुम? तुम बिन कोई और नहीं है मेरा, क्या इसी बात का फायदा उठाते हो तुम? सुदर्शन की आवाज ने इस गीत को पूरी तरह महसूस करवाया। और आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, 100 साल एक आवाज, मोहम्मद रफी की आवाज। और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं अगला

0: नाउम्मीद थे चारागार मेरी हालत को देखकर, पाया तबस्सुम तेरा दवा उनकी काम कर गई। रफी जी का बेहद खूबसूरत सॉन्ग आपने सुना सुदर्शन की आवाज में। किसी को उसके कद का गुमाना था, वो आसमान था, सर झुका कर बैठा था। रफी जी की सिंगिंग इतनी एफर्टलेस और सोलफुल थी कि लगता ही नहीं था कि कोई गाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। सैड सॉन्ग में वो दर्द भर देते जो सीधा दिल को छू जाता, और कॉमेडी सॉन्ग में ऐसी मस्ती कि चेहरे पर हंसी आ जाए। तो चलिए सुनते हैं उनका एक और रंग सुदर्शन की आवाज में।
1: मारे,

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और आज के कलाकार हैं सुदर्शन फाटक पुणे से, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत। चेहरे पर इसी हंसी को बरकरार रखें, और आज की शाम अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो थोड़ा और करीब आ जाएं और सुनिए ये गीत।

दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। आज की शाम का आखिरी नगमा, ये गीत उन्हें हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर रखेगा। तो दोस्तों, इस गीत और अपने जज्बात के साथ रफ़ी साहब को एक सच्चे ट्रिब्यूट में महसूस कीजिए। सुदर्शन की आवाज़ और गुरप्रीत यानी मेरे साथ पहली बार, सुनते हैं उनका बहुत ही खूबसूरत गीत सुदर्शन की आवाज़ में।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान, नई आवाज़ नई पहचान प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं नए मेहमान, जिनकी सूरत तो हमने नहीं देखी है लेकिन आप हैं सूरत गुजरात से और हम वेलकम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं आपसे नई आवाज़ नई पहचान में। सिंगिंग तो आप करती ही हैं नो डाउट इसमें, और इसके अलावा क्या करती हैं, क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं जीवन के बारे में, हमारे बारे में, सिंगिंग के बारे में, खाने पीने के बारे में और जो हमारा जीवन है उससे संबंध जो भी बातें हैं, उससे संबंधित जो बातें हैं उनको हम आज इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और साथ साथ हम गीता गोदीवाला के गीत भी सुनेंगे। तो देखिए गीत, गीता और गोदीवाला, मेरे ख्याल में 3G हो गया। तो वेलकम है गीता जी आपका जयपुर रेडियो के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान। आप पहली बार जयपुर रेडियो के इस मंच पर आई हैं तो आपकी आवाज आपकी पहचान के इस मंच पर आप सभी श्रोताओं से मुखातिब हैं लाइव, तो क्या कहना चाहेंगी आप सबको?
1: थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच व्यास जी, आपकी वजह से मुझे रेडियो पे आने का मौका दिया आपने। और माई सेल्फ गीता प्रमोद गोदीवाला फ्रॉम सूरत गुजरात से हूँ। मैं एक कैरियर के सिंगर हूँ एंड होम शेफ एंड होम कुक हूँ, जो मैंने शेफ का भी बहुत सारा किया है।
0: अरे वाह।
1: और हेल्दी डिशेज बनाती हूँ मैं, चार वेजिटेरियन हूँ और मैं बहुत बार विनर भी बन चुकी हूँ, अवार्ड लिए है। बट ये मेरा सिंगिंग का एक बचपन का ड्रीम था जो रह गया था। उस टाइम पे उतनी कोई अवेयरनेस नहीं थी, ना तो इतना कोई प्लेटफॉर्म था ना कोई स्टेज था, तो बस एजुकेशन के बाद शादी हो गई, फिर बच्चे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, वो सब कर दिया जो सब लेडीज के शादी के बाद होता ही है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। और वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद आफ्टर 59 की एज पे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मेरे में जो है टैलेंट वो मैं बाहर नहीं निकाल पाई हूँ। और मैं गुनगुनाती तो वैसे भी रहती थी, बाथरूम सिंगर किचन सिंगर जैसे होते हैं वैसे। फिर 60 पे आई तब बच्चों के मैरिज हो गए, दादी नानी बन गई और मैं एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे अभी बहुत वेल नोन डॉक्टर फिजिशियन है MD, और मेरे बच्चे दामाद डॉटर इन लॉ सब डॉक्टर है। तो मैं एक डॉक्टर फैमिली से हूँ और मेरा ये टैलेंट था। तो हस्बैंड ने मेरी बर्थडे 60 बर्थडे पर मुझे बोल दिया, अभी आपको जो करना हो करो, आप अभी आपकी उड़ान जो भी आपको पसंद हो वो कर दो बस। तो मुझे तो एक पंख मिल गया, बच्चे तो पहले से ही मुझे सपोर्ट।
0: वेरी गुड, आपको पंख मिल गया और गीतों को उड़ान मिल गई और ये उड़ते उड़ते जयपुर रेडियो के मंच पर आ गई। जी कहिए आगे।
1: और फिर बस मेरे में कॉन्फिडेंस आने लगा धीरे धीरे, मैं स्टेज शो करने लगी और अभी तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मैं ऑर्केस्ट्रा पे भी प्रोग्राम करने लगी हूँ। ड्यूएट सॉन्ग्स गाती हूँ, सोलो गाती हूँ, भजन गाती हूँ, ये सब

0: मुझे एकदम से अंदर से जैसे भगवान ने मुझे प्रेरणा दे दी कि आप उड़ो, बस हम आपके साथ है, और भगवान का साथ मिले, फैमिली का साथ मिले, हस्बैंड का सपोर्ट मिले, तो एक लेडी को कुछ नहीं चाहिए उससे ज्यादा है। चाहे कुछ भी दुनिया बोले, हमें बस उड़ना है और अपना सपना पूरा करना है। एज इज जस्ट अ नंबर, आप कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, बस आप में ये टैलेंट है, आप ढूंढ लो, आप में जो भी टैलेंट हो आप उसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। और मैं अभी 2 महीने से सुगम संगीत भी सीख रही हूँ, तो मुझे बस यही है कि अब मुझे आगे ही जाना है। यहाँ पे मैंने बहुत नाम कर लिया है, कोई मुझे लता जी जैसे बोलते हैं, आशा जी जैसे बोलते हैं, बट मैं वो लोगों की तो सिद्धि तपस्या कुछ अलग ही थी। मैं एक कैराओके सिंगर हूँ, मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है, बट मुझे सुगम संगीत का भी थोड़ा धुन चढ़ा है कि मुझे ये करना है। तो सीखने के लिए भी ऐसा
1: बिल्कुल
0: नहीं है कि हमारी
1: बिल्कुल
0: उम्र ज्यादा है, आप कभी भी सीख सकते हो, आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए और सीखने का लगन होना चाहिए। आज मैं यहाँ पे सबकी इंस्पिरेशन बन गई हूँ। मैं गुजराती हूँ, गरबा बहुत अच्छा सा खेलती हूँ, हर एक जगह में मैं विनर बनती हूँ, और ये सब मेरे दोनों नी रिप्लेस के बाद, आफ्टर 59। आप
1: ओ माय
0: सोच सकते
1: गॉड,
0: हो कि मैं इतना कर सकती
1: नी
0: हूँ मैं।
1: रिप्लेस के बाद, वाह वाह क्या
0: यस
1: बात, कमाल
0: यस,
1: है।
0: तो मैं तो बस यही सोचती हूँ कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दो, मैं जितनी भी जिंदगी जीऊँ ऐसी ही जीऊँ, खुल के जीऊँ। और मेरे अभी भी बहुत लोगों की मैं इंस्पिरेशन हूँ, आगे भी लोग मुझे ऐसे ही रिस्पेक्ट करते रहे, इंस्पिरेशन
1: वेरी
0: बनती
1: गुड,
0: जाओ
1: बहुत अच्छी बात
0: सबकी।
1: कही आपने, और हम आपकी बातचीत को जारी रखेंगे, पर हम सुनना चाहेंगे आपका पहला गीत, तो आइए सुनते हैं गीता गोदीवाला का ये खूबसूरत गीत, और इसके पीछे क्या स्टोरी है वो तो हम बाद में आपसे बातचीत करेंगे तो हमें मालूम होगा।

0: थैंक यू।
1: जहां पे सवेरा हो बसेरा वहीं है। इस गीत के पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या मंतव्य है आपका, बताएंगी?
2: सर मैं तो यही सोचती हूँ कि हम अपनों का प्यार मिले, अपनों का साथ मिले, तो जहाँ पे भी अपना घर हो हम वहीं पे सवेरा मनाएंगे। बस वही है, चाहे वो छोटा सा घर हो या बड़ा, वो कोई मायने नहीं रखता है। सबके दिलों में प्यार होना चाहिए, अपने लिए विश्वास होना चाहिए, आदर होना चाहिए। बस मान सम्मान सबके लिए होता है, छोटा हो या बड़ा, सबको रिस्पेक्ट दो और सबके साथ घुल मिल के रहो। और छोटा सा घर भी हो तो भी अपना हो, उसे अपना मानकर चलो, एक दिन वो भी बड़ा होगा। इतना परिश्रम हमने भी किया है और आज ये स्टेज पे है तो बहुत खुशी भी है। भले ही मैं डॉक्टर से शादी किया था लेकिन हमारा इतना छोटा सा ही घर था, और आज मैं कहाँ हूँ मुझे पता है कि मैं किस लेवल पे हूँ। हमारा घर, हमारा फैमिली।
1: शुभकामनाएं हमारी ओर से, और उत्तरोत्तर वृद्धि करती जाएं आप हर क्षेत्र में, विकास की ओर अग्रसर हो, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और ये जो सब, बिल्कुल ये जो सब आप कह रही हैं ना, उसके पीछे जो भी बेस है, जो मूल भावना है, वो सब है आपका धैर्य, सब ठीक हो जाएगा, सब सामर्थ्य, वो सब हमें अपने आप ईश्वरीय प्रगति की ओर ले जाता है। और वही ईश्वर जो है वो सब कुछ हमें वरदान के स्वरूप देता है, हमारे कर्म और अपनी सोच के अनुसार देता है। तो इसी की वजह से
2: जिंदगी मिली है, बस खुल के जियो, अपने सपनों को एंड मत करो, वो कभी भी पूरा होगा। बस ये मान के चलो और ठान लो कि हाँ मुझे ये कभी भी करना है, कभी भी पूरा करना है सपनों को।
1: सपना मरना तो नहीं चाहिए,
2: नहीं चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर, चाहे 60 हो या 80 हो, आप अपने लिए जियो, खुल के जियो। आपकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब खत्म हो जाती है उसके बाद, तो 60 के बाद, लेकिन अपने लिए जीना।
1: आपके विचारों को सलाम है, सल्यूट है हमारी ओर से। बहुत अच्छी बातें आप करती हैं, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपकी बातों में, हम एक गीत और सुन लेते हैं आपका, दम अरो दम। खुल के जीने की बात कही आपने।

0: बोलो सुबह और शाम हरे कृष्णा हरे राम, और ना तो डरेंगे और खुल के जिएंगे। यह संदेश, ये प्रेरणा आपके गीत में, सच में लोग कहते हैं वो सच कहते हैं। जैसे आप कह रही हैं कि आपको कोई आशा कहती हैं, कोई लता जी कहते हैं, तो आपके गीतों में वो जादू तो है आपकी आवाज़ में, और इसीलिए हम इस मंच से कहते हैं आपकी आवाज़ आपकी पहचान। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं भाई बारथी, जिनको ईश्वर का वरदान होता है, और उन्हीं आवाज़ों में से हम रोज़ एक ना एक नई आवाज़ के साथ मुखातिब होते हैं। लेकिन आपकी आवाज़ सच में अलग है, अनूठी है, और सुनने के योग्य है, सुनी जा सकती है, और लोगों को ज़रूर पसंद भी आती है। तो हमारे श्रोता सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है नई आवाज़ नई पहचान, और हम फिर से बात को आगे बढ़ाते हैं। गीता गोदीवाला हमारे साथ हैं और गीतों को गोदी में लेके आई हैं, तो हम उनके प्यारे प्यारे गीत सुनेंगे आज इस प्रोग्राम में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, गीता जी गीतों से संबद्ध है, तो कौन से सिंगर्स आपको पसंद है, कौन से गीत आपको पसंद है, किस तरह की गीत आपको पसंद है, वो हम जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी सर, मुझे वैसे तो रॉक सॉन्ग्स ज्यादा पसंद है। आशा जी का मुझे, मैं

0: है मेरी आशा जी, तो मैं उनका ज्यादातर सॉन्ग्स गाती हूँ। और लता जी, लोगों को मेरी आवाज लता जी जैसे भी लगती है, तो मैं उनके भी गाने उतने ही गाती हूँ। मुझे दोनों सिस्टर बहुत पसंद थे पहले से ही, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा ही गाती रहूँ। एक दिन मैं भी ऐसा नाम कमाऊँ। बस उतना तो नहीं मिलेगा मुझे, अभी इतनी जिंदगी भी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी जितनी भी हो, बस मुझे भी ऐसे ही करना है। मेरी आइडेंटिटी बनानी है मुझे जी, कि हर एक लड़की की जिंदगी पापा से शुरू होती है, पापा की आइडेंटिटी से, फिर हस्बैंड की आती है, फिर बच्चे की आती है, और फिर अपना तो नाम भूल कोई होता ही नहीं है समझो। लेकिन मुझे ऐसा है, और मैंने ये नाम कमा लिया 2 साल में, मैंने अपनी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से बनाई। और
1: बिल्कुल
0: ये जब से
1: बिल्कुल।
0: हस्बैंड ने बोला, तब से तो मेरी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से बन गई है,
1: अब तो
0: क्योंकि मैं
1: आप
0: एकदम
1: जयपुर
0: खुल के
1: रेडियो वर्ल्ड
0: बोलने
1: से
0: गाने लगी
1: मुखातिब
0: जी।
1: हैं, वहां से बोल रही हैं, वहां से गा रही हैं, तो इसमें कोई शक नहीं, बेशक आप जो हैं एक एमिनेंट सिंगर हैं, और हमारे सुनने वाले भी इस बात को मानेंगे, जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, पहचानेंगे। तो सुन लेते हैं आपका एक प्यारा संगीत।
0: ओके सर, मैं 90s के भी सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, रोमांटिक
1: हाँ,
0: सॉन्ग,
1: ये गीत सुनते हैं,
0: और
1: पहले
0: मैंने
1: पहले ये गीत
0: ये
1: सुनते हैं,
0: भी
1: फिर बात करते हैं आपसे।
0: गाया है जी। ओके जी।

0: हम दिल दे चुके सनम, तेरी कसम। और सच में कसम, बात चल रही थी और ये गीत यूं ही बेवजह चल पड़ा और चलते चलते इसने अपनी पूरी बात कह दी। हम तो बात कर रहे थे प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान में सूरत की, यानी सूरत गुजरात की, गीता गोदीवाला से। गीता जी, फिर से वेलकम है आपका। इस गीत के बाद आपने दिल की बात कही और दिल का गीत सुनाया, तो क्या कहेंगे और हमारी क्या बात चल रही थी वो भी नामालूम हमें, तो किस तरह से हम बात को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं।
1: थैंक यू सर। अभी तो मेरे कई सारे गाने हैं, वो आप सबको पसंद भी आएंगे और ऐसे ही बस आपके प्यार दुआ आशीर्वाद देते रहे और आगे मैं ऐसे ही बढ़ती रहूं।
0: बिल्कुल, वो तो हो ही गया ना, हम तेरे हो गए सनम, तो जी। आप जयपुर रेडियो की तो हो ही गई हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। तो आप जो मीठे मीठे गीत की हमने बात कही, तो आपने प्रोग्राम के आरंभ में कहा था कि मैं एक अच्छी शेफ भी हूँ, तो क्या क्या बना लेती हैं आप? और आज
1: मैं हेल्दी डिशेज ज्यादातर बनाती हूँ। मैंने अमूल में भी बहुत सारे लाइव शो किए हैं और उसमें भी मैं बहुत बार विनर भी हुई हूँ। फिर मिल्क मेड से भी बनाई है, मिल्क मेड में भी मैंने बहुत सारे वाउचर्स लिए हैं। जैसे थीम आती है, वैसे होली हो दिवाली फेस्टिवल की थीम होती है
0: जी।
1: तो मैं उसी टाइप के स्वीट्स डेजर्ट्स बनाती हूँ। फिर मैंने मैगी में भी किया है, मैगी में भी बहुत सारे वाउचर्स, और वो सब मैं वाउचर भगवान की कृपा से, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है कि घर में कोई भी कमी है, लेकिन मैं वो सब जो भी वाउचर्स आते हैं मैं इकट्ठा करके मैं ऐसा कुछ ना कुछ लेती थी जो मेरी मेमोरी हो जाए। आज मैं सिंगिंग करती हूँ, मैं अर्निंग करती हूँ, तो उसी से मैंने एक साउंड स्पीकर ले लिया है, सिस्टम ले लिया, साउंड सिस्टम, जो मेरा एक मेमोरी बन गया कि मैंने इसमें से अर्न किया और मैंने ये लिया। वैसे ही मैं कुकिंग में भी ऐसा ही करती थी, मैंने ऐसे एयर फ्रायर, फिर घर में कुछ ना कुछ जो भी मुझे किचन के लिए चाहिए। अभी तो कभी मना नहीं करते, लेकिन मैं मेरी मेमोरी बनाती हूँ कि ये मैंने इसी में से लिया था, इसी में से लिया था। बहुत सारी मेरे सब रिलेटिव सब बोलते हैं कि इतना कितने कबर्ड भरे, कितने स्टोरूम भरे, उतना इतना अवार्ड मिला है, इतना मैंने घर में सब ड्राइंग रूम में लगाए हैं मेरे अवार्ड, कभी मैं वो भी दिखाऊंगी। और ये सब बस भगवान ने जो भी मुझे कला दी है, सब में कोई ना कोई कला होती है, बस हमें ढूंढना है, वो ही है बस। और वो मम्मा से सीखते हैं किचन, हम जब भी किचन का कुछ भी करना तो मम्मा से ही सीखते हैं, और पापा भी हमारे बहुत शौकीन थे, तो ये सब मम्मी पापा का आशीर्वाद है। आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी कमी तो बहुत लगती है, और बस ये सब सबका प्रेम। ससुराल में भी आज भी जो जितने भी एजेड पर्सन है वो सब बोलते हैं कि तब वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप हमारे घर की बहू हो, कि ये उम्र में आप स्टेज शो कर रहे हो, वी आर प्राउड ऑफ यू। तो ये सब मुझे बहुत पसंद आता है कि चलो मैंने कुछ किया, भगवान ने जो जिंदगी दी थी उसमें मुझे कुछ कर पाई, मेरे अपने लिए मैं किया मैंने और सबने बहुत सराहा, बस वही मेरा एक ड्रीम था जो बचपन का, वो मैंने पूरा किया है और मुझे बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है उसके लिए कि भगवान ने मुझे जो दिया था और कहा जैसे अंदर था वो आज मैंने बाहर निकाला, बस ऐसे ही भगवान की
0: बहुत
1: कृपा
0: अच्छी
1: बनी
0: बात
1: है
0: कि जो आपने सोचा वही वातावरण आपको मिला आसपास का, और उससे आप आगे बढ़ती रहीं और बढ़ती रहेंगी, ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो इन बातों के साथ एक गीत मीठा सा सुन लिया जाए आपका, तो आइए सुनते हैं आपका ये प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: थैंक यू सो मच।
1: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, नई नई है बातें और नई नहीं है ये बातें, ये बातें हैं पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली है ये जिंदगानी। और जिंदगानी के बारे में हम सब की सोच अलग अलग होती है और उस पहेली को पूछना भी, अलग अलग लोगों से अलग अलग उत्तर मिलेंगे आपको। तो आज हमारी सिंगर मेहमान गीता गोदीवाला सूरत गुजरात से हमारे संग हमारे साथ। और गीता जी, क्या कहेंगी आप इस गीत के बारे में और जिंदगी जो लोग पहेली कहते हैं, तो आप जिंदगी को पहेली मानती हैं या कुछ और?
2: पहेली तो होती है जिंदगी में, जब से आप जन्म लेते हैं तभी से ये पहेली होने शुरू हो जाती है, उसमें तो कुछ है नहीं। बट आपको कैसे जीना है वो आपको आना चाहिए, जो भी सिचुएशन हो जी, जो भी सिचुएशन हो, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती है, कभी किसी की ऊपर नीचे तो होती है, कभी किसी की स्ट्रेट नहीं जाती है, लेकिन आपको जीना आना चाहिए वही लाइफ में। वो तो भगवान सबको देता है, खुद भगवान ने भी ये सब देखा है, झेला है, कृष्ण भगवान या राम भगवान। तो मैं भी यही सोचती हूँ, हम तो इंसान है, हमारे कर्म का फल हमें मिलेगा जैसा भी करते हो।
1: जब भगवान को भी ऐसे से देखने पड़े थे,
2: देखना पड़े, हाँ देखने पड़े ना,
1: तो हम तो आखिर इंसान है। हाँ बिल्कुल
2: इंसान है जी, और हमारे कर्म का हमें मिलता है जो भी फल मिलता है। हम बोलते हैं कि लेकिन इसी जन्म में मिलता है जो भी फल है, ऐसा नहीं है कि वो अगले जन्म पिछले जन्म काम भुगत रहे, ये सब नहीं, ये जन्म में जो किया है वही मिलेगा आपको, जो बोओगे वही पाओगे, ऐसा बोलते हैं ना सब, तो यही है बस। और ये ऐसे हंसी खुशी में आप जिंदगी बिताओ, आपको जो पसंद हो आप करो, अच्छे से रहो, सबके साथ घुल मिल के रहो, जो पसंद हो वो करो। मैं तो डांस भी करती हूँ, ऐसा नहीं है
1: और
2: मुझे डांस का भी शौक है,
1: और आप तो मैं जल्दी डांस कर लेती हूँ। आपकी नी का दोनों
2: यार, नी रिप्लेस हो चुके दोनों, इसके बाद मैंने नवरात्रि में गरबा के लिए विनर बनी हूँ 2-3 बार, तो सब मुझे उसमें भी इंस्पिरेशन मान रहे, अरे यार आप तो इतना कुछ कर लेते हो, ऑलराउंडर हो, ऐसा बोलते है। तो है जो भगवान ने दिया है, और हमारे में थोड़ा कॉन्फिडेंस गट्स होना चाहिए, हम कर लेंगे, सेफली करते हैं जी जी, हमें सेफली करना है, हमें इतना भी नहीं। मेरा मॉर्निंग में आपको बता देती हूँ, मैं 5:30 बजे उठती हूँ, 5:45 बजे तक तो मैं बेड छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा वार्म वाटर ये जो करना है वो सब फ्रेश होके मैं 6:30 बजे योगा, 6:30 से 7:15 बजे तक का मेरा योगा का टाइम होता है, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ, खुद बनाती हूँ हेल्दी फूड, और ब्रेकफास्ट ले लेके चाय भी लेती हूँ थोड़ा सा, और फिर मेरा रूटीन काम चालू हो जाता है, और मैं रात को 11 बजे सो जाती हूँ, शाम को 5 बजे बाद में मिलती ही नहीं हूँ, घर में कोई ना कोई मेरा शो रहता ही है।
1: तो सिंगिंग प्रैक्टिस कब करती हैं आप? सिंगिंग प्रैक्टिस
2: शाम को

0: शाम को 5 बजे बाद,
1: प्रैक्टिस भी
0: शाम को
1: करती हैं
0: 5 बजे से
1: जी।
0: 8 बजे तक जी। फिर 8 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ। मेरे घर में सब लेट से आते हैं, डॉक्टर्स है ना, तो
1: जी
0: हमारा डिनर लेट होता है, तो मैं सारे पकवान 8 बजे तक 2-3 घंटा में ले लेती हूँ। और संडे को मैं पूरा इवनिंग ये प्रैक्टिस में ही रहती हूँ। सैटरडे
1: वेरी गुड।
0: एंड मंडे को मैं सुगम संगीत सीखने जाती हूँ। सैटरडे और संडे, सैटरडे और मंडे
1: सुगम
0: सुगम
1: संगीत भी
0: संगीत के
1: सीखती
0: लिए।
1: हैं, फिर सुगम के बाद क्लासिकल सीखने का भी आपने
0: इच्छा तो है, हाँ
1: सोच रखा
0: कोशिश तो
1: होगा।
0: है, जितना भी सीखना मिले ऐसा सोचती हूँ। कभी कभी मुझे तानपुरा भी सीखना है, ये सीखना है, मुझे सब सीखना है। अभी इतना बस ऐसा ही है कि मैं पूरा दिन सीखती रहूँ कुछ ना कुछ ऐसा है। गार्डनिंग करती हूँ, गार्डनिंग का भी शौक है, घर में है छोटा सा गार्डन, तो उसी में भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ
1: बिल्कुल,
0: जो भी
1: इतना
0: मतलब।
1: इतने
0: हाँ
1: प्यारे से और इनोसेंट विचार आपके हैं, तो इसी की वजह से आप सिंगर हैं और इतना अच्छा गा लेती हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं जयपुर रेडियो की ओर से, और हम सुनने वालों को बता दें कि हमारे संग हैं जिनकी हमने सूरत नहीं देखी है, आप हैं सूरत गुजरात से, और आपका नाम है गीता गोदीवाला। गीत गाती हैं इसलिए 3G तो पक्की हैं, और गुजरात से हैं तो 4G भी कह सकते हैं आप। तो
0: जी, 4G, यस।
1: आपको
0: सबका
1: हम
0: प्यार आशीर्वाद है, सबका भाई
1: तो
0: बहन है, 4 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, ऑल आर वेल सेटल। बहुत अच्छे फैमिली है,
1: बहुत
0: पापा मम्मी
1: बढ़िया,
0: की कमी है
1: बहुत
0: बट
1: बहुत
0: बहुत
1: बढ़िया,
0: अच्छा है।
1: बहुत जो
0: बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे मेरे पापा, तो बस वही गुण मेरे भाई में भी आया है, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर है।
1: बहुत
0: अच्छा
1: बढ़िया,
0: सा है गांव सूरत में, और
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छी
0: ही
1: बात
0: अच्छा
1: है,
0: से रहेंगे।
1: बहुत अच्छी बात, बहुत सुन के हमें बहुत खुशी हुई, और हमारे श्रोताओं भी इसका लाभ उठा ही रहे होंगे। तो आइए सुन लेते हैं आपका एक और प्यारा सा नगमा।

0: थैंक यू।
1: कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, ये गीत आपने सुना और आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज अपनी पहचान अपनी आवाज के माध्यम से कराने आई हैं पहली बार गीता गोदीवाला। जी हाँ, गीता गोदीवाला का फिर से स्वागत है, खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान। गीता जी, बहुत सारी बातें हुई आपसे, हम ये जानना
0: बहुत ही अच्छा लगा जी।
1: हम ये जानना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे आपकी बातों से, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि गीत जो है और गीतों से प्यार झुकाव क्या आपका बचपन से ही था या फिर धीरे धीरे जैसे आपने अपने पिता के घर से गाना शुरू किया और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ी, या अंदर जो गीत आपने दबा के रखा था वो आफ्टर 60 के वो बाहर आया, तो पहला गीत या पहली परफॉर्मेंस जो है वो आपने कब कहाँ कैसे दी उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, और पहला गीत जो आपने गाया होगा वो कौन सा था वो भी हम
0: जी
1: आपसे सुनना चाहेंगे।
0: जी सर, पहले तो मैं स्टेज पे जाने से डरती थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़े क्लास में जाने का स्टार्ट किया कि मुझे कॉन्फिडेंस आए, और मैंने धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस लगा कि अब मैं स्टेज शो कर रही करूंगी, तो मैंने करना स्टार्ट किया। और जब मैं ये पहला गीत जो मेरा है बसेरा का, वो मेरा सीनियर सिटीजन में कंपटीशन था, वो टाइम पे मैंने ये गाया, जो मुझे ये बचपन से बहुत पसंद था ये सॉन्ग। मुझे, मैं ऐसे भी गुनगुनाती थी, जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है, बस मैं, मुझे इतना पसंद था ये गीत कि मेरे बोल जैसे नींद में भी यही आ रहा था कि नहीं, ये सॉन्ग कितना कुछ कह जाता है, इसके वर्डिंग्स कितना कुछ कहता है।

0: और वो सब मैंने अंदर भर भर के रखे थे जो मैं आज बाहर निकाल रही हूँ।
1: वाह, बहुत खूब बात कही आपने।
0: तो बोलते हैं ना कि बच्चे भी कभी हमें सिखा देते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ों से ही सीखना चाहिए, बच्चे
1: सही,
0: भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं हमें। और हर जनरेशन में जब आप मिल जाओगे तभी आप अच्छे लाइफ जी सकोगे, मैं तो ऐसा सोचती हूँ। क्योंकि हमारे से बड़े थे वो इतने एडवांस नहीं थे, उनके विचार एडवांस नहीं थे, वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है, अभी मैं
1: बिल्कुल
0: ग्रैंडसन है मेरे।
1: बिल्कुल, यही यही बात
0: और
1: मैं कहना
0: सब
1: चाह रहा था। मैंने सोचा इस गीत के बाद
0: जी
1: में शुरू करेंगे कि ये जो जनरेशन का गैप है और जी जेन और जो अल्फा और ये सब जो जनरेशन आ रही हैं, इनको सोच के,
0: जी
1: इनको देख के आपके मन में क्या आता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस आपने किया है, बच्चों को बड़ा किया है, तो
0: हाँ,
1: क्या आता है मन
0: मैंने
1: में,
0: तो
1: कितना बदलाव
0: बस
1: आया है?
0: मन में बदलाव में तो यही था कि मेरे मायके में मेरे पापा हमको फ्रीडम दिया था, अच्छे से रहो, बस सिंपल आपका जो लुक है, नो गेटअप वगैरह, खुद शॉप अच्छी सी चल रही थी फिर, लेकिन कभी हमको मेकअप नहीं करने दिया, हम खुद ही इतने ब्यूटीफुल जैसे भी थे बस वैसे ही रखे, लेकिन हमको बहुत अच्छी सी लाइफ दिया, अच्छे संस्कार दिए। फिर मैं ससुराल आई, ससुराल का पूरा ऑर्थोडॉक्स था, एकदम से अलग माहौल मैके से, बिल्कुल अलग, कि बोलना चलना भी बहुत कम, हस्बैंड भी बहुत कम बोलते थे, सास ससुर भी, तो थोड़ा सा वो हो गया,
1: बैलेंस
0: तो
1: बैलेंस नहीं होता फिर वो।
0: जी,
1: जी
0: फिर तो ये सब करके तो दो बच्चे भी हो गए, पहली बड़ी बेटी थी, बेटी है, और छोटा बेटा है 5 साल उससे। तो फिर उसके बाद मेरी सास की तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, तो वो 7 साल के बाद एक्सपायर हो गए, वो पहले से ही बीमार थे। तो फिर पूरी जिम्मेदारी, ननन सबकी जिम्मेदारी, सब निभाते निभाते उन लोगों का काम कर करके, बस तो जिंदगी के समझो 35 साल ऐसे निकल गए। ससुराल में सास नहीं थी बट ससुर जी थे, तो उनके जाने के बाद फिर बेटी की शादी हुई, बेटे की शादी हुई, घर में फिर फैमिली, अपना खुद का फिजिकल ये सब हो गया, लेकिन वो सब मैं वापिस में भूल गई थी, पर फिर भी अंदर से तो एक ही था, मुझे मेरे लिए कुछ करना है, मेरे लिए कुछ करना है। और मुझे बस ये 60 में मेरे हस्बैंड ने फ्रीडम दे दी और मैं उड़ने लगी, ये है मेरा।
1: चलिए फिर तो एक
0: बच्चे
1: उड़ता
0: भी
1: हुआ गीत सुन लेते हैं आपकी आवाज में,
0: क्या क्या
1: हमारे श्रोताओं के लिए के।
0: जी, बच्चों का तो है ही, छोटे से के साथ में छोटी हूँ, अभी ग्रैंडसन है तो उन लोगों के साथ में उन लोगों के जैसी, तो वो जन कहाँ कहीं भी जाओ ऐसे ही बोलते हैं, आइए
1: गीत
0: मेरे
1: सुन लेते हैं
0: साथ
1: पहले हम।
0: जी।

0: दिल को वो हजार बार रोका रोका रोका, लेकिन रुकता नहीं है। और जिस तरह समय चलता है उसी तरह से दिल भी दौड़ता रहता है, चाहे आप उसे कितना भी रोको। और हमारी आज की जो सुरीली मेहमान हैं गीता गोदीवाला, वो भी दिल को रोकती रही, लेकिन जो गीतों के लिए इनके दिल में प्यार जन्म ले चुका था वो तो बाहर आना ही था। और यही हुआ। क्या कहेंगी आप गीता जी इसके बारे में कि रोकने पर भी कोई चीज रुकती नहीं, जिस तरह से इस समय है, तो हमारे सुनने वालों को चलते चलते क्या कहेंगी आप, ये जरूर एक संदेश।
1: जी, बस जिंदगी जियो, खुल के जियो, अपनों के साथ अपना प्यार बांटते रहो, छोटों को अपना प्यार दो, बड़ों के साथ भी मान सम्मान के साथ रहो। भगवान आपको जरूर एक ना एक दिन आपके सपने पूरे करने का मौका जरूर मिलेगा, देंगे, जरूर देंगे भगवान। और आप अपनी हिम्मत मत हारो, जो भी आप में टैलेंट हो आप बाहर निकालो, धीरे धीरे सब आपको ये करें, घर के लोग ही आपको सपोर्ट करेंगे, हाँ करो, कोई बात नहीं करो, और आप चलते जाओ। बस एक जिंदगी मिली है, अच्छे से जी लो, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, चाहे मेल हो या फीमेल, और छोटा से भी इतना ही सीखने को मिलता है, तो आप जरूर करिए। बस मैं तो यही बोलूंगी, आप सबका प्यार दुआ आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए, और मैं ऐसे ही आगे गाती रहूं, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वैश जी, आपने मुझे ये
0: बिल्कुल बिल्कुल हम बस ये बातें नहीं सुनेंगे, हम तो ये कहेंगे कि जो सबसे अच्छा गीत है उसकी एक लाइन हमें बिना म्यूजिक के आप चलते चलते सुना दीजिए, एक ही लाइन, यानी एक अंतरा जो भी है।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान, नई आवाज नई पहचान प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं नए मेहमान, जिनकी सूरत तो हमने नहीं देखी है लेकिन आप हैं सूरत गुजरात से और हम वेलकम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं आपसे नई आवाज नई पहचान में। सिंगिंग तो आप करती ही हैं, नो डाउट इसमें, और इसके अलावा क्या करती हैं, क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं जीवन के बारे में, हमारे बारे में, सिंगिंग के बारे में, खाने पीने के बारे में और जो हमारा जीवन है उससे संबंध, जो भी बातें हैं उससे संबंधित जो बातें हैं उनको हम आज इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और साथ साथ हम गीता गोदीवाला के गीत भी सुनेंगे। तो देखिए, गीत, गीता और गोदीवाला, मेरे ख्याल में 3G हो गया। तो वेलकम है गीता जी आपका जयपुर रेडियो के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान। आप पहली बार जयपुर रेडियो के इस मंच पर आई हैं तो आपकी आवाज आपकी पहचान इस मंच पर आप सभी श्रोताओं से मुखातिब हैं लाइव, तो क्या कहना चाहेंगी आप सबको?
1: थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच व्यास जी, आपकी वजह से मुझे रेडियो पे आने का मौका दिया आपने। और माई सेल्फ गीता प्रमोद गोदीवाला फ्रॉम सूरत गुजरात से हूँ। मैं एक कैरियर के सिंगर हूँ एंड होम शेफ एंड होम कुक हूँ, जो मैंने शेफ का भी बहुत सारा किया है।
0: अरे वाह।
1: और हेल्दी डिशेज बनाती हूँ मैं, प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं बहुत बार विनर भी बन चुकी हूँ, अवार्ड लिए है। बट ये मेरा सिंगिंग का एक बचपन का ड्रीम था जो रह गया था। उस टाइम पे उतनी कोई अवेयरनेस नहीं थी, ना तो इतना कोई प्लेटफॉर्म था, ना कोई स्टेज था। तो बस एजुकेशन के बाद शादी हो गई, फिर बच्चे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, वो सब कर दिया जो सब लेडीज के शादी के बाद होता ही है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। और वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद आफ्टर 59 की एज पे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मेरे में जो है टैलेंट वो मैं बाहर नहीं निकाल पाई हूँ। और मैं गुनगुनाती तो वैसे भी रहती थी, बाथरूम सिंगर, किचन सिंगर जैसे होते हैं वैसे। फिर 60 पे आई, बच्चों के मैरिज हो गए, दादी नानी बन गई और मैं एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे अभी बहुत वेल नोन डॉक्टर फिजिशियन है MD, और मेरे बच्चे दामाद, डॉटर इन लॉ सब डॉक्टर है। तो मैं एक डॉक्टर फैमिली से हूँ और मेरा ये टैलेंट था। तो हस्बैंड ने मेरी बर्थडे 60 बर्थडे पर मुझे बोल दिया, अभी आपको जो करना हो करो, आप अभी आपकी उड़ान जो भी आपको पसंद हो वो कर दो बस। तो मुझे तो एक पंख मिल गया, बच्चे तो पहले से ही मुझे सपोर्ट।
0: वेरी गुड, आपको पंख मिल गया और गीतों को उड़ान मिल गई और ये उड़ते उड़ते जयपुर रेडियो के इस मंच पर आ गई जी। कहिए आगे।
1: और फिर बस मेरे में कॉन्फिडेंस आने लगा, धीरे धीरे मैं स्टेज शो करने लगी और अभी तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मैं ऑर्केस्ट्रा पे भी प्रोग्राम करने लगी हूँ। ड्यूएट सॉन्ग्स गाती हूँ, सोलो गाती हूँ, भजन गाती हूँ, ये सब मुझे एकदम से अंदर से जैसे भगवान ने मुझे एक प्रेरणा दे दी कि आप उड़ो, बस हम आपके साथ है। और भगवान का साथ मिले, फैमिली का साथ मिले, हस्बैंड का सपोर्ट मिले, तो एक लेडी को कुछ नहीं चाहिए उससे ज्यादा है। चाहे कुछ भी दुनिया बोले, हमें बस उड़ना है और अपना सपना पूरा करना है। एज इज जस्ट अ नंबर, आप कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, बस आप में ये टैलेंट है, आप ढूंढ लो, आप में जो भी टैलेंट हो आप उसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। और मैं अभी 2 महीने से सुगम संगीत भी सीख रही हूँ, तो मुझे बस यही है कि अब मुझे आगे ही जाना है। यहाँ पे मैंने बहुत नाम कर लिया है, कोई मुझे लता जी जैसे बोलते हैं, आशा जी जैसे बोलते हैं, बट मैं वो लोगों की तो सिद्धि तपस्या कुछ अलग ही थी। मैं एक कैराओके सिंगर हूँ, मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है, बट मुझे सुगम संगीत का भी थोड़ा धुन चढ़ा है कि मुझे ये करना है। तो सीखने के लिए भी ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र और ज्यादा है, आप कभी भी सीख सकते हो। आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए और सीखने का लगन होना चाहिए। आज मैं यहाँ पे सबकी इंस्पिरेशन बन गई हूँ। मैं गुजराती हूँ, गरबा बहुत अच्छा सा खेलती हूँ, हर एक जगह में मैं विनर बनती हूँ। और ये सब मेरे दोनों नी रिप्लेस के बाद, आफ्टर 59। आप
0: ओह
1: सोच
0: माय गॉड,
1: सकते हो कि मैं इतना कर सकती
0: नी
1: हूँ मैं।
0: रिप्लेस के बाद, वाह वाह क्या
1: यस
0: बात, कमाल।
1: यस, तो मैं तो बस यही सोचती हूँ कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दो, मैं जितनी भी जिंदगी जीऊं ऐसी ही जीऊं, खुल के जीऊं। और सब मेरे अभी भी बहुत लोगों की मैं इंस्पिरेशन हूँ, आगे भी लोग मुझे ऐसे ही रिस्पेक्ट करते रहे, इंस्पिरेशन बनती
0: वेरी गुड,
1: जाओ
0: बहुत अच्छी बात
1: सबकी।
0: कही आपने, और हम आपकी बातचीत को जारी रखेंगे, पर हम सुनना चाहेंगे आपका पहला गीत। तो आइए सुनते हैं गीता गोदीवाला का ये खूबसूरत गीत, और इसके पीछे क्या स्टोरी है वो तो हम बाद में आपसे बातचीत करेंगे तो हमें मालूम होगा।

0: थैंक यू।
1: जहां पे सवेरा हो बसेरा वहीं है। इस गीत के पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या मंतव्य है आपका, बताएंगी?
2: सर मैं तो यही सोचती हूँ कि हम अपनों का प्यार मिले, अपनों का साथ मिले, तो जहाँ पे भी अपना घर हो हम वहीं पे सवेरा मनाएंगे, बस वही है। चाहे वो छोटा सा घर हो या बड़ा, वो कोई मायने नहीं रखता है। सबके दिलों में प्यार होना चाहिए, अपने लिए विश्वास होना चाहिए, आदर होना चाहिए, बस मान सम्मान सबके लिए होता है, छोटा हो या बड़ा, सबको रिस्पेक्ट दो और सबके साथ घुल मिल के रहो। और छोटा सा अगर भी हो तो भी अपना हो, उसे अपना मानकर चलो, एक दिन वो भी बड़ा होगा। इतना परिश्रम हमने भी किया है और आज ये स्टेज पे है तो बहुत खुशी भी है। भले ही मैं डॉक्टर से शादी किया था लेकिन हमारा इतना छोटा सा ही घर था, और आज मैं कहाँ हूँ मुझे पता है कि मैं किस लेवल पे हूँ। हमारा घर, हमारा
1: शुभकामनाएं हमारी ओर से, और उत्तरोत्तर वृद्धि करती जाएं आप हर क्षेत्र में, विकास की ओर अग्रसर हो, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और ये जो सब, बिल्कुल ये जो सब आप कह रही हैं ना, उसके पीछे जो भी बेस है, जो मूल भावना है, वो सब है आपका धैर्य, सब ठीक हो जाएगा, सब सामर्थ्य, वो सब हमें अपने आप ईश्वरीय प्रगति की ओर ले जाता है। और वही ईश्वर जो है वो सब कुछ हमें वरदान के स्वरूप देता है, हमारे कर्म और अपनी सोच के अनुसार देता है। तो इसी की वजह से
2: जिंदगी मिली है, बस खुल के जियो, अपने सपनों को एंड मत करो, वो कभी भी पूरा होगा, बस ये मान के चलो और ठान लो कि हाँ मुझे ये कभी भी करना है, कभी भी पूरा करना है सपनों को।
1: सपना मरना नहीं चाहिए,
2: नहीं चाहिए। एज जो नंबर चाहे 60 हो या 80 हो, आप अपने लिए जियो, खुल के जियो, आपकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब खत्म हो जाती है उसके बाद, तो 60 के बाद, लेकिन अपने लिए जीना।
1: आपके विचारों को सलाम है, सल्यूट है हमारी ओर से। बहुत अच्छी बातें आप करती हैं, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपकी बातों में, हम एक गीत और सुन लेते हैं आपका, दम अरो दम। खुल के जीने की बात कही आपने, तो ये गीत

0: बोलो सुबह और शाम हरे कृष्णा हरे राम, और ना तो डरेंगे और खुल के जिएंगे। यह संदेश, ये प्रेरणा आपके गीत में, सच में लोग कहते हैं वो सच कहते हैं। जैसे आप कह रही हैं कि आपको कोई आशा कहती हैं, कोई लता जी कहते हैं, तो आपके गीतों में वो जादू तो है आपकी आवाज़ में, और इसीलिए हम इस मंच से कहते हैं आपकी आवाज़ आपकी पहचान। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं भाई बारथी, जिनको ईश्वर का वरदान होता है, और उन्हीं आवाज़ों में से हम रोज़ एक ना एक नई आवाज़ के साथ मुखातिब होते हैं। लेकिन आपकी आवाज़ सच में अलग है, अनूठी है, और सुनने के योग्य है, सुनी जा सकती है, और लोगों को ज़रूर पसंद भी आती है। तो हमारे श्रोता सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है नई आवाज़ नई पहचान, और हम फिर से बात को आगे बढ़ाते हैं। गीता गोदीवाला हमारे साथ हैं और गीतों को गोदी में लेके आई हैं, तो हम उनके प्यारे प्यारे गीत सुनेंगे आज इस प्रोग्राम में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, गीता जी गीतों से संबद्ध है, तो कौन से सिंगर्स आपको पसंद है, कौन से गीत आपको पसंद है, किस तरह की गीत आपको पसंद है, वो हम जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी सर, मुझे वैसे तो रॉक सॉन्ग्स ज्यादा पसंद है, आशा जी का मुझे मैं फेवरेट है मेरी आशा जी, तो मैं उनका ज्यादातर सॉन्ग्स गाती हूँ। और लता जी, लोगों को मेरी आवाज लता जी जैसे भी लगती है, तो मैं उनके भी गाने उतने ही गाती हूँ। मुझे दोनों सिस्टर्स बहुत पसंद थे पहले से ही, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा ही गाती रहूँ, एक दिन मैं भी ऐसा नाम कमाऊँ। बस इतना तो नहीं मिलेगा मुझे, अभी इतनी जिंदगी भी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी जितनी भी हो, बस मुझे भी ऐसे ही करना है, मेरी आइडेंटिटी बनानी है मुझे जी, कि हर एक लड़की की जिंदगी पापा से शुरू होती है, पापा की आइडेंटिटी से, फिर हस्बैंड की आती है, फिर बच्चे की आती है, और फिर अपना तो नाम भूल कोई होता ही नहीं है समझो, लेकिन मुझे ऐसा है और मैंने ये नाम कमा लिया 2 साल में, मैंने अपनी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से बनाई, और ये जब से हस्बैंड ने बोला तब से तो मेरी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से बन गई है।
0: अब तो आप जयपुर रेडियो वर्ल्ड से मुखातिब हैं, वहां से बोल रही हैं, वहां से गा रही हैं, तो इसमें कोई शक नहीं, बेशक आप जो हैं एक एमिनेंट सिंगर हैं, और हमारे सुनने वाले भी इस बात को मानेंगे, जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, पहचानेंगे। तो सुन लेते हैं आपका एक प्यारा सा गीत।
1: ओके सर, मैं 90s के भी सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, रोमांटिक सॉन्ग।
0: ये गीत सुनते हैं पहले, पहले ये गीत सुनते हैं, फिर बात करते हैं आपसे।

0: हम दिल दे चुके सनम, तेरी कसम। और सच में कसम, बात चल रही थी और ये गीत यूं ही बेवजह चल पड़ा और चलते चलते इसने अपनी पूरी बात कह दी। हम तो बात कर रहे थे प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान में सूरत की, यानी सूरत गुजरात की, गीता गोदीवाला से। गीता जी, फिर से वेलकम है आपका। इस गीत के बाद आपने दिल की बात कही और दिल का गीत सुनाया, तो क्या कहेंगे और हमारी क्या बात चल रही थी वो भी नामालूम हमें, तो किस तरह से हम बात को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं।
1: थैंक यू सर। अभी तो मेरे कई सारे गाने हैं, वो आप सबको पसंद भी आएंगे, और ऐसे ही बस आपके प्यार दुआ आशीर्वाद देते रहे और आगे मैं ऐसे ही बढ़ती रहूं।
0: बिल्कुल, वो तो हो ही गया ना, हम तेरे हो गए सनम, तो जी। आप जयपुर रेडियो की तो हो ही गई हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। तो आप जो मीठे मीठे गीत की हमने बात कही, तो आपने प्रोग्राम के आरंभ में कहा था कि मैं एक अच्छी शेफ भी हूँ, तो क्या क्या बना लेती हैं आप? और आज
1: मैं हेल्दी डिशेस ज्यादातर बनाती हूँ। मैंने अमूल में भी बहुत सारा लाइव शो किए हैं और उसमें भी मैं बहुत बार विनर भी हुई हूँ। फिर मिल्क मेड से भी बनाई है, मिल्क मेड में भी मैंने बहुत सारे वाउचर्स लिए हैं। जैसे थीम आती है, वैसे होली हो दिवाली फेस्टिवल की थीम होती है
0: जी।
1: तो मैं उसी टाइप के स्वीट्स डेजर्ट्स बनाती हूँ। फिर मैंने मैगी में भी किया है, मैगी में भी बहुत सारे वाउचर्स, और वो सब मैं वाउचर भगवान की कृपा से, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है कि घर में कोई भी कमी है, लेकिन मैं वो सब जो भी वाउचर्स आते हैं मैं इकट्ठा करके मैं ऐसा कुछ ना कुछ लेती थी जो मेरी मेमोरी हो जाए। आज मैं सिंगिंग करती हूँ, मैं अर्निंग करती हूँ, तो उसी से मैंने एक साउंड स्पीकर ले लिया है, सिस्टम ले लिया, साउंड सिस्टम, जो मेरा एक मेमोरी बन गया कि मैंने इसमें से अर्न किया और मैंने ये लिया। वैसे ही मैं कुकिंग में भी ऐसा ही करती थी, मैंने ऐसे एयर फ्रायर, फिर घर में कुछ ना कुछ जो भी मुझे किचन के लिए चाहिए, अभी तो कभी मना नहीं करते, लेकिन मैं मेरी मेमोरी बनाती हूँ कि ये मैंने इसी में से लिया था, इसी में से लिया था। तो बहुत सारी मेरे सब रिलेटिव सब बोलते हैं कि इतना कितने कबर्ड भरे, कितने स्टोर रूम भरे, उतना इतना अवार्ड मिला है, इतना मैंने घर में सब ड्राइंग रूम में लगाए हैं मेरे अवार्ड, कभी मैं वो भी दिखाऊंगी। और ये सब बस भगवान ने जो भी मुझे कला दी है, सब में कोई ना कोई कला होती है, बस हमें ढूंढना है, वो ही है बस। और वो मम्मा से सीखते हैं किचन, हम जब भी किचन का कुछ भी करना तो मम्मा से ही सीखते हैं, और पापा भी हमारे बहुत शौकीन थे, तो ये सब मम्मी पापा का आशीर्वाद है। आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी कमी तो बहुत लगती है, और बस ये सब सबका प्रेम ससुराल में भी। आज भी जो जितने भी एजेड पर्सन है वो सब बोलते हैं कि तब वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप हमारे घर की बहू हो, कि ये उम्र में आप स्टेज शो कर रहे हो, वी आर प्राउड ऑफ यू। तो ये सब मुझे बहुत पसंद आता है कि चलो मैं

0: कुछ किया, भगवान ने जो जिंदगी दी थी उसमें मुझे कुछ कर पाई मेरे अपने लिए, मैं किया मैंने और सबने बहुत सराहा। बस वही मेरा एक ड्रीम था जो बचपन का, वो मैंने पूरा किया है और मुझे बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है उसके लिए कि भगवान ने मुझे जो दिया था और कहा, जैसे अंदर था वो आज मैंने बाहर निकाला। बस ऐसे ही भगवान की
1: बहुत
0: कृपा
1: अच्छी
0: बनी
1: बात
0: रहे मेरे पे और
1: कि जो आपने
0: सबका
1: सोचा
0: प्रेम
1: वही
0: मिलता रहे।
1: वातावरण आपको मिला आसपास का, और उससे
0: जी
1: आप आगे बढ़ती रहीं और बढ़ती रहेंगी, ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो इन बातों के
0: थैंक
1: साथ
0: यू सर।
1: एक गीत मीठा सा सुन लिया जाए आपका, तो आइए सुनते हैं आपका ये प्यारा सा गीत।
0: जी

0: थैंक यू सो मच।
1: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, नई नई है बातें और नई नहीं है ये बातें, ये बातें हैं पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली है ये जिंदगानी। और जिंदगानी के बारे में हम सब की सोच अलग अलग होती है और उस पहेली को बूझना भी अलग अलग लोगों से अलग अलग उत्तर मिलेंगे आपको। तो आज हमारी सिंगर मेहमान गीता गोदीवाला सूरत गुजरात से हमारे संग हमारे साथ। और गीता जी, क्या कहेंगी आप इस गीत के बारे में और जिंदगी जो लोग पहेली कहते हैं, तो आप जिंदगी को पहेली मानती हैं या कुछ और?
2: पहेली तो होती है जिंदगी में, जब से आप जन्म लेते हैं तभी से ये पहेली होने शुरू हो जाती है, इसमें तो कुछ है नहीं। बट आपको कैसे जीना है वो आपको आना चाहिए, जो भी सिचुएशन हो जी, जो भी सिचुएशन हो, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती है, कभी किसी की ऊपर नीचे तो होती है, कभी किसी की स्ट्रेट नहीं जाती है, लेकिन आपको जीना आना चाहिए वही लाइफ में, वो तो भगवान सबको देता है। खुद भगवान ने भी ये सब देखा है, झेला है, कृष्ण भगवान या राम भगवान। तो मैं भी यही सोचती हूँ, हम तो इंसान है, हमारे कर्म का फल हमें मिलेगा जैसा भी करते
1: हैं। जब भगवान को भी ऐसे से देखने पड़े थे,
2: देखने पड़े ना,
1: तो हम तो आखिर इंसान है। हाँ बिल्कुल,
2: इंसान है जी, और हमारे कर्म का हमें मिलता है जो भी फल मिलता है। हम बोलते हैं कि लेकिन इसी जन्म में मिलता है जो भी फल है, ऐसा नहीं है कि वो अगले जन्म पिछले जन्म काम भुगत रहे, ये सब नहीं, ये जन्म में जो किया है वही मिलेगा आपको, जो बोगे वही पाओगे, ऐसा बोलते हैं ना सब, तो यही है बस। और ये ऐसे हंसी खुशी में आप जिंदगी बिताओ, आपको जो पसंद हो आप करो, अच्छे से रहो, सबके साथ घुल मिल के रहो, जो पसंद है वो करो। मैं तो डांस भी करती हूँ, ऐसा नहीं
1: और
2: मुझे डांस का भी शौक है,
1: और तो मैं जल्दी बताया था कि आपके नी का दोनों,
2: या नी रिप्लेस हो चुके दोनों, इसके बाद मैंने नवरात्रि में गरबा के लिए विनर बनी हूँ 2-3 बार, तो सब मुझे उसमें भी इंस्पिरेशन मान रहे, अरे यार आप तो इतना कुछ कर लेते हो, ऑलराउंडर हो, ऐसा बोलते है। तो है जो भगवान ने दिया है, और हमारे में थोड़ा कॉन्फिडेंस गट्स होना चाहिए, हम कर लेंगे, सेफली करते हैं जी जी, हमें सेफली करना है, हमें इतना भी नहीं। मेरा मॉर्निंग में आपको बता देती हूँ, मैं 5:30 बजे उठती हूँ, 5:45 बजे तक तो मैं बेड छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा वार्म वाटर ये जो करना है वो सब, फ्रेश होके मैं 6:30 बजे योगा, 6:30 से 7:15 बजे तक का मेरा योगा का टाइम होता है, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ, खुद बनाती हूँ हेल्दी फूड, और ब्रेकफास्ट ले लेके चाय भी लेती हूँ थोड़ा सा, और फिर मेरा रूटीन काम चालू हो जाता है, और मैं रात को 11 बजे सो जाती हूँ, शाम को 5 बजे बाद में मिलती ही नहीं हूँ, घर में कोई ना कोई मेरा शो रहता ही है।
1: तो सिंगिंग प्रैक्टिस कब करती हैं आप? सिंगिंग प्रैक्टिस
2: शाम को 5 बजे बाद, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक जी, फिर 8 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ, मेरे घर में सब लेट से आते हैं, डॉक्टर्स है ना, तो हमारा डिनर लेट होता है, तो मैं 7:30-8 बजे तक 2-3 घंटा में ले लेती हूँ, और संडे को मैं पूरा इवनिंग ये प्रैक्टिस में ही रहती हूँ। सैटरडे एंड मंडे को मैं सुगम संगीत सीखने जाती हूँ, सैटरडे और मंडे
1: सुगम संगीत भी सीखने के बाद क्लासिकल सीखने का भी सोच रखा होगा।
2: जितना भी सीखना मिले ऐसे सोचती हूँ, कभी कभी मुझे तानपुरा भी सीखना है, ये सीखना है, मुझे सब सीखना है, अभी इतना बस ऐसा ही है कि मैं पूरा दिन सीखती रहूँ कुछ ना कुछ, ऐसा है। गार्डनिंग करती हूँ, गार्डनिंग का भी शौक है, घर में है छोटा सा गार्डन, तो उसी में भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
1: बिल्कुल,
2: जो भी मतलब
1: इतने हाँ। प्यारे से और इनोसेंट विचार आपके हैं, तो इसी की वजह से आप सिंगर हैं, और इतना अच्छा गा लेती हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं जयपुर रेडियो की ओर से, और हम सुनने वालों को बता दें कि हमारे संघ है जिनकी हमने सूरत नहीं देखी है, आप हैं सूरत गुजरात से और आपका नाम है गीता गोदीवाला, गीत गाती हैं, इसलिए 3G तो पक्की हैं, और गुजरात से हैं तो 4G भी कह सकते हैं आप तो
2: जी, 4G, यस।
1: आपको
2: सबका प्यार आशीर्वाद है, सबका तो, भाई बहन है, 4 sisters and 1 brother, ऑल आर वेल सेटल, बहुत अच्छे फैमिली है, पापा मम्मी की कमी
1: बहुत,
2: है,
1: बट बहुत अच्छा, बहुत,
2: बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे मेरे पापा, तो बस वही गुण मेरे भाई में भी आया है, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर है, अच्छा सा है सूरत में, और बहुत ही अच्छा
1: बहुत अच्छी बात, बहुत सुन के हमें बहुत खुशी हुई, और हमारे श्रोताओं भी इसका लाभ उठा ही रहे होंगे। तो आइए सुन लेते हैं आपका एक और प्यारा सा नगमा।

0: गीता जी, बहुत सारी बातें हुई आपसे। हम ये जानना
1: बहुत ही अच्छा लगा जी।
0: हम यह जानना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे आपकी बातों से, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि गीत जो है और गीतों से प्यार झुकाव क्या आपका बचपन से ही था, या फिर धीरे धीरे जैसे आपने अपने पिता के घर से गाना शुरू किया और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ी, या अंदर जो गीत आपने दबा के रखा था वो आफ्टर 60 के वो बाहर आया, तो पहला गीत या पहली परफॉर्मेंस जो है वो आपने कब कहाँ कैसे दी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और पहला गीत जो आपने गाया होगा वो कौन सा था, वो भी हम आपसे सुनना चाहेंगे।
1: जी सर, पहले तो मैं स्टेज पे जाने से डरती थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़े क्लास में जाने का स्टार्ट किया कि मुझे कॉन्फिडेंस आए, और मैंने धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस लगा कि अब मैं स्टेज शो करूंगी, तो मैंने करना स्टार्ट किया। और जब मैं ये पहला गीत जो मेरा है बसेरा का, वो मेरा सीनियर सिटीजन में कंपटीशन था, वो टाइम पे मैंने ये गाया, जो मुझे ये बचपन से बहुत पसंद था ये सॉन्ग। मुझे मैं ऐसे भी गुनगुनाती थी, जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है, बस मैं मुझे इतना पसंद था ये गीत कि मेरे बोल जैसे नींद में भी यही आ रहा था कि नहीं, ये सॉन्ग कितना कुछ कह जाता है, इसके वर्डिंग कितना कुछ कहता है,
0: इसमें अपने आप में एक कहानी है, एक स्टोरी है,
1: एक स्टोरी है। तो बस ये सॉन्ग मैंने सीनियर सिटीजन में गाया और मुझे विनर बना दिया। तभी से तो मेरी एकदम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि अब तो मैं गा सकती हूँ कहीं भी। तो बस उसी से मैं इंस्पायर्ड हुई, और आज मैं जहाँ भी जाती हूँ सब मुझे बोलते हैं आप बहुत अच्छा गाती हो, बहुत लता जी हो आप तो, आप आशा जी हो, ऐसा बोलते। भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो उनके पैर के नेल जितनी भी नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे इतना अच्छा गला दिया है तो मैं अभी थोड़ा उसको वॉश करती हूँ। और मैं बस मुझे जो था ये बचपन का मेरा ड्रीम, वो मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। जब भी मैं इंडियन आइडल वगैरह देखती थी बच्चों का, तो मुझे लगता था इतने छोटे छोटे बच्चे गा रहे तो मैं क्यों नहीं गा सकती, और वो सब मैंने अंदर भर भर के रखे थे जो मैं आज बाहर निकल रही हूँ।
0: वाह, बहुत खूब बात कही आपने।
1: तो बोलते हैं ना कि बच्चे भी कभी हमें सिखा देते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ों से ही सीखना चाहिए, बच्चे भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं हमें। और हर जनरेशन में जब आप मिल जाओगे तभी आप अच्छे लाइफ जी सकोगे, मैं तो ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि हमारे से बड़े थे वो इतने एडवांस नहीं थे, उनके विचार एडवांस नहीं थे, वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। अभी मैं ग्रैंडसन है मेरे।
0: बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाह रहा था। मैंने सोचा इस गीत के बाद में शुरू करेंगे कि ये जो जनरेशन का गैप है और जीजन और जो अल्फा और ये सब जो जनरेशन आ रही है, इनको सोच के, इनको देख के आपके मन में क्या आता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस आपने किया है, बच्चों को बड़ा किया है, तो क्या आता है मन में, कितना बदलाव आया है?
1: मन में बदलाव में तो यही था कि मैं मेरे मायके में मेरे पापा हमको फ्रीडम दिया था, अच्छे से रहो, बस सिंपल आपका जो लुक है, नो गेटअप वगैरह, खुद शॉप अच्छी सी चल रही थी फिर, लेकिन कभी हमको मेकअप नहीं करने दिया, हम खुद ही इतने ब्यूटीफुल जैसे भी थे बस वैसे ही रखे, लेकिन हमको बहुत अच्छी सी लाइफ दिया, अच्छे संस्कार दिए। फिर मैं ससुराल आई, ससुराल का पूरा ऑर्थोडॉक्स था, एकदम से अलग माहौल, मैके से बिल्कुल अलग, कि बोलना चलना भी बहुत कम, हस्बैंड भी बहुत कम बोलते थे, सास ससुर भी, तो थोड़ा सा वो
0: बैलेंस नहीं होता फिर वो।
1: जी फिर तो ये सब करके तो दो बच्चे भी हो गए, पहली बड़ी बेटी थी, बेटी है, और छोटा बेटा है 5 साल उससे। फिर उसके बाद मेरी सास की तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, तो वो 7 साल के बाद एक्सपायर हो गए, वो पहले से ही बीमार थे। तो फिर पूरी जिम्मेदारी ननन सबकी जिम्मेदारी सब निभाते निभाते

0: लोगों का काम कर करके बस, तो जिंदगी के समझो 35 साल ऐसे निकल गए। ससुराल में सास नहीं थी बट ससुर जी थे, तो उनके जाने के बाद फिर बेटी की शादी हुई, बेटे की शादी हुई, घर में फिर फैमिली, अपना खुद का फिजिकल ये सब हो गया। लेकिन वो सब मैं वापिस मैं भूल गई थी, पर फिर भी अंदर से तो एक ही था, मुझे मेरे लिए कुछ करना है, मेरे लिए कुछ करना है। और मुझे बस ये 60 में मेरे हस्बैंड ने फ्रीडम दे दी और मैं उड़ने लगी। ये है मेरा
1: चलिए फिर तो एक
0: बच्चे
1: उड़ता
0: भी।
1: हुआ गीत सुन लेते हैं आपकी आवाज में
0: क्या क्या
1: हमारे श्रोताओं के लिए
0: जी,
1: के।
0: बच्चों का तो है ही, छोटे से के साथ में छोटी हूँ, अभी ग्रैंड सन है तो उन लोगों के साथ में उन लोगों के जैसी, तो वो जन्म कहाँ है
1: जी
0: कहीं भी
1: गीत
0: जाओ ऐसे बोलते हैं। आइए
1: गीत सुन
0: मेरे
1: लेते हैं पहले हम
0: जी।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान, नई आवाज नई पहचान प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं नए मेहमान जिनकी सूरत तो हमने नहीं देखी है लेकिन आप हैं सूरत गुजरात से और हम वेलकम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं आपसे नई आवाज नई पहचान में। सिंगिंग तो आप करती हैं नो डाउट इसमें, और इसके अलावा क्या करती हैं, क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं जीवन के बारे में, हमारे बारे में, सिंगिंग के बारे में, खाने पीने के बारे में और जो हमारा जीवन है उससे संबंध जो भी बातें हैं, उससे संबंधित जो बातें हैं उनको हम आज इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और साथ साथ हम गीता गोदीवाला के गीत भी सुनेंगे। तो देखिए गीत, गीता और गोदीवाला, मेरे ख्याल में 3G हो गया। तो वेलकम है गीता जी आपका जयपुर रेडियो के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान। आप पहली बार जयपुर रेडियो के इस मंच पर आई हैं तो आपकी आवाज आपकी पहचान इस मंच पर आप सभी श्रोताओं से मुखातिब हैं लाइव, तो क्या कहना चाहेंगी आप सबको?
1: थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच व्यास जी, आपकी वजह से मुझे रेडियो पे आने का मौका दिया आपने। और माई सेल्फ गीता प्रमोद गोदीवाला फ्रॉम सूरत गुजरात से हूँ। मैं एक कैरियर के सिंगर हूँ एंड होम शेफ एंड होम कुक हूँ, जो मैंने शेफ का भी बहुत सारा किया है।
0: अरे वाह।
1: और हेल्दी डिशेज बनाती हूँ मैं, प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं बहुत बार विनर भी बन चुकी हूँ, अवार्ड लिए हैं। बट ये मेरा सिंगिंग का एक बचपन का ड्रीम था जो रह गया था। उस टाइम पे उतनी कोई अवेयरनेस नहीं थी, ना तो इतना कोई प्लेटफॉर्म था, ना कोई स्टेज था। तो बस एजुकेशन के बाद शादी हो गई, फिर बच्चे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, वो सब कर दिया जो सब लेडीज के शादी के बाद होता ही है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। और वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद आफ्टर 59 की एज पे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मेरे में जो है टैलेंट वो मैं बाहर नहीं निकाल पाई हूँ। और मैं गुनगुनाती तो वैसे भी रहती थी, बाथरूम सिंगर किचन सिंगर जैसे होते हैं वैसे। फिर 60 पे आई तो बच्चों के मैरिज हो गए, दादी नानी बन गई और मैं एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे अभी बहुत वेल नोन डॉक्टर फिजिशियन है MD, और मेरे बच्चे दामाद डॉटर इन लॉ सब डॉक्टर है। तो मैं एक डॉक्टर फैमिली से हूँ और मेरा ये टैलेंट था। तो हस्बैंड ने मेरी बर्थडे 60 बर्थडे पर मुझे बोल दिया, अभी आपको जो करना हो करो, आप अभी आपकी उड़ान जो भी आपको पसंद है वो कर दो बस। तो मुझे तो एक पंख मिल गया, बच्चे तो पहले से ही मुझे सपोर्ट।
0: वेरी गुड, आपको पंख मिल गया और गीतों को उड़ान मिल गई और ये उड़ते उड़ते जयपुर रेडियो के मंच पर आ गई जी। कहिए आगे।
1: और फिर बस मेरे में कॉन्फिडेंस आने लगा धीरे धीरे, मैं स्टेज शो करने लगी और अभी तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मैं ऑर्केस्ट्रा पे भी प्रोग्राम करने लगी हूँ। ड्यूएट सॉन्ग्स गाती हूँ, सोलो गाती हूँ, भजन गाती हूँ। ये सब मुझे एकदम से अंदर से जैसे भगवान ने मुझे एक प्रेरणा दे दी कि आप उड़ो, बस हम आपके साथ है। और भगवान का साथ मिले, फैमिली का साथ मिले, हस्बैंड का सपोर्ट मिले, तो एक लेडी को कुछ नहीं चाहिए उससे ज्यादा, चाहे कुछ भी दुनिया बोले, हमें बस उड़ना है और अपना सपना पूरा करना है। एज इज जस्ट अ नंबर, आप कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, बस आप में ये टैलेंट है, आप ढूंढ लो, आप में जो भी टैलेंट हो आप उसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। और मैं अभी 2 महीने से सुगम संगीत भी सीख रही हूँ, तो मुझे बस यही है कि अब मुझे आगे ही जाना है। यहाँ पे मैंने बहुत नाम कर लिया है, कोई मुझे लता जी जैसे बोलते हैं, आशा जी जैसे बोलते हैं, बट मैं वो लोगों की तो सिद्धि तपस्या कुछ अलग ही थी। मैं एक कैराओके सिंगर हूँ, मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है, बट मुझे सुगम संगीत का भी थोड़ा धुन चढ़ा है कि मुझे ये करना है। तो सीखने के लिए भी ऐसा
0: बिल्कुल
1: नहीं है कि हमारी
0: बिल्कुल
1: उम्र ज्यादा है, आप कभी भी सीख सकते हो। आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए और सीखने का लगन होना चाहिए। आज मैं यहाँ पे सबकी इंस्पिरेशन बन गई हूँ। मैं गुजराती हूँ, गरबा बहुत अच्छा सा खेलती हूँ, हर एक जगह में मैं विनर बनती हूँ। और ये सब मेरे दोनों नी रिप्लेस के बाद, आफ्टर 59। आप
0: ओह माय
1: सोच
0: गॉड,
1: सकते हो कि मैं इतना कर सकती
0: नी
1: हूँ मैं।
0: रिप्लेस के बाद, वाह वाह क्या
1: यस
0: बात है, कमाल
1: यस, तो मैं तो बस यही सोचती हूँ कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दो, मैं जितनी भी जिंदगी जीऊँ ऐसी ही जीऊँ, खुल के जीऊँ। और सब मेरे अभी भी बहुत लोगों की मैं इंस्पिरेशन हूँ, आगे भी लोग मुझे ऐसे ही रिस्पेक्ट करते रहे, इंस्पिरेशन
0: वेरी
1: बनती
0: गुड,
1: जाओ
0: बहुत अच्छी बात
1: सबकी।
0: कही आपने, और हम आपकी बातचीत को जारी रखेंगे, पर हम सुनना चाहेंगे आपका पहला गीत, तो आइए सुनते हैं गीता गोदीवाला का ये खूबसूरत गीत, और इसके पीछे क्या स्टोरी है वो तो हम बाद में आपसे बातचीत करेंगे तो हमें मालूम होगा।

0: थैंक यू।
1: जहां पे सवेरा हो बसेरा वहीं है। इस गीत के पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या मंतव्य है आपका, बताएंगी?
2: सर मैं तो यही सोचती हूँ कि हम अपनों का प्यार मिले, अपनों का साथ मिले, तो जहाँ पे भी अपना घर हो हम वहीं पे सवेरा मनाएंगे। बस वही है, चाहे वो छोटा सा घर हो या बड़ा, वो कोई मायने नहीं रखता है। सबके दिलों में प्यार होना चाहिए, अपने लिए विश्वास होना चाहिए, आदर होना चाहिए। बस मान सम्मान सबके लिए होता है, छोटा हो या बड़ा, सबको रिस्पेक्ट दो और सबके साथ घुल मिल के रहो। और छोटा सा अगर भी हो तो भी अपना हो, उसे अपना मानकर चलो, एक दिन वो भी बड़ा होगा। इतना परिश्रम हमने भी किया है और आज ये स्टेज पे है तो बहुत खुशी भी है। भले ही मैं डॉक्टर से शादी किया था लेकिन हमारा इतना छोटा सा ही घर था और आज मैं कहाँ हूँ मुझे पता है कि मैं किस लेवल पे हूँ। हमारा घर, हमारा फैमिली।
1: शुभकामनाएं हमारी ओर से और उत्तरोत्तर वृद्धि करती जाएं आप हर क्षेत्र में, विकास की ओर अग्रसर हों, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और ये जो सब बिल्कुल ये जो सब आप कह रही हैं ना, उसके पीछे जो भी बेस है, जो मूल भावना है, वो सब है आपका धैर्य, सब ठीक हो जाएगा, सब सामर्थ्य, वो सब हमें अपने आप ईश्वरीय प्रगति की ओर ले जाता है। और वही ईश्वर जो है वो सब कुछ हमें वरदान के स्वरूप देता है, हमारे कर्म और अपनी सोच के अनुसार देता है। तो इसी की वजह से
2: जिंदगी मिली है, बस खुल के जियो, अपने सपनों को एंड मत करो, वो कभी भी पूरा होगा। बस ये मान के चलो और ठान लो कि हाँ मुझे ये कभी भी करना है, कभी भी पूरा करना है सपनों को।
1: सपना मरना तो नहीं चाहिए जी।
2: नहीं चाहिए, एज इज जस्ट अ नंबर, चाहे 60 हो या 80 हो, आप अपने लिए जियो, खुल के जियो। आपकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब खत्म हो जाती है उसके बाद, तो 60 के बाद, लेकिन अपने लिए जीना।
1: आपके विचारों को सलाम है, सल्यूट है हमारी ओर से। बहुत अच्छी बातें आप करती हैं और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपकी बातों में, हम एक गीत और सुन लेते हैं आपका, दम अरो दम। खुल के जीने की बात कही आपने, तो ये

0: बोलो सुबह और शाम हरे कृष्णा हरे राम, और ना तो डरेंगे और खुल के जिएंगे, यह संदेश ये प्रेरणा आपके गीत में। सच में लोग कहते हैं वो सच कहते हैं, जैसे आप कह रही हैं कि आपको कोई आशा कहती हैं, कोई लता जी कहते हैं, तो आपके गीतों में वो जादू तो है आपकी आवाज में, और इसीलिए हम इस मंच से कहते हैं आपकी आवाज आपकी पहचान। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं बाई बर्थ ही जिनको ईश्वर का वरदान होता है, और उन्हीं आवाजों में से हम रोज एक ना एक नई आवाज के साथ मुखातिब होते हैं, लेकिन आपकी आवाज सच में अलग है, अनूठी है और सुनने के योग्य है, सुनी जा सकती है और लोगों को जरूर पसंद भी आती है। तो हमारे श्रोता सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान, और हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। गीता गोदीवाला हमारे साथ हैं और गीतों को गोदी में लेके आई हैं, तो हम उनके प्यारे प्यारे गीत सुनेंगे आज इस प्रोग्राम में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, गीता जी गीतों से संबद्ध है, तो कौन से सिंगर्स आपको पसंद है, कौन से गीत आपको पसंद है, किस तरह की गीत आपको पसंद है, वो हम जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी सर, मुझे वैसे तो रॉक सॉन्ग्स ज्यादा पसंद है, आशा जी का मुझे मैं फेवरेट है मेरी आशा जी, तो मैं उनका ज्यादातर सॉन्ग्स गाती हूँ। और लता जी, लोगों को मेरी आवाज लता जी जैसे भी लगती है, तो मैं उनके भी गाने इतने ही गाती हूँ। मुझे दोनों सिस्टर्स बहुत पसंद थे पहले से ही, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा ही गाती रहूँ, एक दिन मैं भी ऐसा नाम कमाऊँ। बस इतना तो नहीं मिलेगा मुझे, अभी इतनी जिंदगी भी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी जितनी भी हो बस मुझे भी ऐसे ही करना है, मेरी आइडेंटिटी बनानी है मुझे जी, कि हर एक लड़की की जिंदगी पापा से शुरू होती है, पापा की आइडेंटिटी से, फिर हस्बैंड की आती है, फिर बच्चे की आती है, और फिर अपना तो नाम भूल कोई होता ही नहीं है समझो, लेकिन मुझे ऐसा है और मैंने ये नाम कमा लिया 2 साल में, मैंने अपनी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से बनाई, और ये जब से हस्बैंड ने बोला तब से तो मेरी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से बन गई है।
0: अब तो आप जयपुर रेडियो वर्ल्ड से मुखातिब हैं, वहां से बोल रही हैं, वहां से गा रही हैं, तो इसमें कोई शक नहीं, बेशक आप जो हैं एक एमिनेंट सिंगर हैं, और हमारे सुनने वाले भी इस बात को मानेंगे, जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, पहचानेंगे। तो सुन लेते हैं आपका एक प्यारा सा गीत।
1: ओके सर, मैं 90s के भी सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, रोमांटिक सॉन्ग।
0: ये गीत सुनते हैं पहले, पहले ये गीत सुनते हैं फिर बात करते हैं आपसे।

0: थैंक यू।
1: हम दिल दे चुके सनम, तेरी कसम। और सच में कसम, बात चल रही थी और ये गीत यूं ही बेवजह चल पड़ा और चलते चलते इसने अपनी पूरी बात कह दी। हम तो बात कर रहे थे प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान में सूरत की, यानी सूरत गुजरात की, गीता गोदीवाला से। गीता जी, फिर से वेलकम है आपका। इस गीत के बाद आपने दिल की बात कही और दिल का गीत सुनाया, तो क्या कहेंगे और हमारी क्या बात चल रही थी वो भी ना मालूम हमें, तो किस तरह से हम बात को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं।
0: थैंक यू सर जी। अभी तो मेरे कई सारे गाने हैं, वो आप सबको पसंद भी आएंगे, और ऐसे ही बस आपके प्यार दुआ आशीर्वाद देते रहे और आगे मैं ऐसे ही बढ़ती रहूं।
1: बिल्कुल, वो तो हो ही गया ना, हम तेरे हो गए सनम, तो आप जयपुर रेडियो की तो हो ही गई हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। तो आप जो मीठे मीठे गीत की हमने बात कही, तो आपने प्रोग्राम के आरंभ में कहा था कि मैं एक अच्छी शेफ भी हूँ, तो क्या क्या बना लेती हैं आप? और आज
0: मैं हेल्दी डिशेस ज्यादातर बनाती हूँ। मैंने अमूल में भी बहुत सारा लाइव शो किए हैं और उसमें भी मैं बहुत बार विनर भी हुई हूँ। फिर मिल्कमेड से भी बनाई है, मिल्कमेड में भी मैंने बहुत सारे वाउचर्स लिए हैं। जैसे थीम आती है, वैसे होली हो दिवाली फेस्टिवल की थीम होती है
1: जी।
0: तो मैं उसी टाइप के स्वीट्स डेजर्ट्स बनाती हूँ। फिर मैंने मैगी में भी किया है, मैगी में भी बहुत सारे वाउचर्स, और वो सब मैं वाउचर भगवान की कृपा से, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है कि घर में कोई भी कमी है, लेकिन मैं वो सब जो भी वाउचर्स आते हैं मैं इकट्ठा करके मैं ऐसा कुछ ना कुछ लेती थी जो मेरी मेमोरी हो जाए। आज मैं सिंगिंग करती हूँ, मैं अर्निंग करती हूँ, तो उसी से मैंने एक साउंड स्पीकर ले लिया है, सिस्टम ले लिया, साउंड सिस्टम, जो मेरा एक मेमोरी बन गया कि मैंने इसमें से अर्न किया और मैंने ये लिया। वैसे ही मैं कुकिंग में भी ऐसा ही करती थी, मैंने ऐसे एयर फ्रायर, फिर घर में कुछ ना कुछ जो भी मुझे किचन के लिए चाहिए, अभी तो कभी मना नहीं करते, लेकिन मैं मेरी मेमोरी बनाती हूँ कि ये मैंने इसी में से लिया था, इसी में से लिया था। तो बहुत सारी मेरे सब रिलेटिव सब बोलते हैं कि इतना कितने कबर्ड भरे, कितने स्टोर रूम भरे, उतना इतना अवार्ड मिला है, इतना मैंने घर में सब ड्राइंग रूम में लगाए हैं मेरे अवार्ड्स, कभी मैं वो भी दिखाऊंगी। और ये सब बस भगवान ने जो भी मुझे कला दी है, सब में कोई ना कोई कला होती है, बस हमें ढूंढना है वही है बस। और वो मम्मा से सीखते हैं किचन, हम जब भी किचन का कुछ भी करना तो मम्मा से ही सीखते हैं, और पापा भी हमारे बहुत शौकीन थे, तो ये सब मम्मी पापा का आशीर्वाद है। आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी कमी तो बहुत लगती है, और बस ये सब सबका प्रेम ससुराल में भी। आज भी जो जितने भी एजेड पर्सन है वो सब बोलते हैं कि गीता वी आर प्राउड ऑफ यू, कि आप हमारे घर की बहू हो, कि ये उम्र में आप स्टेज शो कर रहे हो, वी आर प्राउड ऑफ यू। तो ये सब मुझे बहुत पसंद आता है कि चलो मैंने कुछ किया, भगवान ने जो जिंदगी दी थी उसमें मैं कुछ कर पाई, मेरे अपने लिए मैं किया मैंने, और सबने बहुत सराहा, बस वही मेरा एक ड्रीम था जो बचपन का, वो मैंने पूरा किया है और मुझे बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है उसके लिए कि भगवान ने मुझे जो दिया था और कहा जैसे अंदर था वो आज मैंने बाहर निकाला, बस ऐसे ही भगवान की
1: बहुत
0: कृपा
1: अच्छी
0: बनी
1: बात
0: है।
1: जो आपने सोचा वही वातावरण आपको मिला आसपास का, और उससे आप आगे बढ़ती रहीं और बढ़ती रहेंगी, ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो इन बातों के साथ एक गीत मीठा सा सुन लिया जाए आपका, तो आइए सुनते हैं आपका ये प्यारा सा गीत।
0: थैंक यू। जी।

0: थैंक यू सो मच।
1: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, नई नई है बातें और नई नहीं है ये बातें, ये बातें हैं पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली है ये जिंदगानी। और जिंदगानी के बारे में हम सबकी सोच अलग अलग होती है और उस पहेली को पूछना भी अलग अलग लोगों से अलग अलग उत्तर।

0: मिलेंगे आपको। तो आज हमारी सिंगर मेहमान गीता गोदीवाला सूरत गुजरात से हमारे संग हमारे साथ। और गीता जी, क्या कहेंगी आप इस गीत के बारे में? और जिंदगी जो लोग पहेली कहते हैं, तो आप जिंदगी को पहेली मानती हैं या कुछ और?
1: पहेली तो होती है जिंदगी में, जब से आप जन्म लेते हैं तभी से ये पहेली होने शुरू हो जाती है, इसमें तो कुछ है नहीं। बट आपको कैसे जीना है वो आपको आना चाहिए, जो भी सिचुएशन हो जी, जो भी सिचुएशन हो, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती है, कभी किसी की ऊपर नीचे तो होती है, कभी किसी की स्ट्रेट नहीं जाती है, लेकिन आपको जीना आना चाहिए वो ही लाइफ में। वो तो भगवान सबको देता है, खुद भगवान ने भी ये सब देखा है, झेला है, कृष्ण भगवान या राम भगवान। तो मैं भी यही सोचती हूँ, हम तो इंसान है, हमारे कर्म का फल हमें मिलेगा। जैसा भी
0: जब भगवान को भी ऐसे से देखने पड़े थे,
1: देखने पड़े ना,
0: तो हम तो आखिर इंसान है। हाँ, बिल्कुल
1: इंसान है जी, और हमारे कर्म का हमें मिलता है, जो भी फल मिलता है। हम बोलते हैं कि लेकिन इसी जन्म में मिलता है जो भी फल है, ऐसा नहीं है कि वो अगले जन्म पिछले जन्म काम भगत रहिए सब नहीं, ये जन्म में जो किया है वही मिलेगा आपको, जो बोओगे वही पाओगे, ऐसा बोलते हैं ना सब। तो यही है बस, और ये ऐसे हंसी खुशी में आप जिंदगी बिताओ, आपको जो पसंद हो आप करो, अच्छे से रहो, सबके साथ घुल मिल के रहो, जो पसंद हो वो करो। मैं तो डांस भी करती हूँ, ऐसा नहीं है
0: और
1: मुझे डांस का भी शौक है,
0: और आप तो मैं जल्दी डांस कर लेती हूँ। आपकी नी का दोनों
1: यार नी रिप्लेस हो चुके दोनों, इसके बाद मैंने नवरात्रि में गरबा के लिए विनर बनी हूँ 2-3 बार, तो सब मुझे उसमें भी इंस्पिरेशन मान रहे, अरे यार आप तो इतना कुछ कर लेते हो, ऑलराउंडर हो, ऐसा बोलते है। तो है जो भगवान ने दिया है, और हमारे में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, हम कर लेंगे, सेफली करते हैं जी जी, हमें सेफली करना है, हमें इतना भी नहीं। मेरा मॉर्निंग में आपको बता देती हूँ, मैं 5:30 बजे उठती हूँ, 5:45 बजे तक तो मैं बेड छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा वार्म वाटर ये जो करना है वो सब फ्रेश होके मैं 6:30 बजे योगा, 6:30 से 7:15 बजे तक का मेरा योगा का टाइम होता है। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ, खुद बनाती हूँ हेल्दी फूड, और ब्रेकफास्ट ले लेके चाय भी लेती हूँ थोड़ा सा, और फिर मेरा रूटीन काम चालू हो जाता है, और मैं रात को 11 बजे सो जाती हूँ। शाम को 5 बजे बाद में मिलती ही नहीं हूँ, घर में कोई ना कोई मेरा शो रहता ही है।
0: तो सिंगिंग प्रैक्टिस कब करती हैं आप? सिंगिंग प्रैक्टिस
1: शाम को 5 बजे बाद,
0: प्रैक्टिस
1: शाम को 5 बजे से 8 बजे तक जी, फिर 8 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ। मेरे घर में सब लेट से आते हैं, डॉक्टर्स है ना, तो हमारा डिनर लेट होता है, तो मैं 7:30-8 बजे तक 2-3 घंटा में ले लेती हूँ, और संडे को मैं पूरा इवनिंग ये प्रैक्टिस में ही रहती हूँ। सैटरडे एंड मंडे को मैं सुगम संगीत सीखने जाती हूँ, सैटरडे और मंडे
0: सुगम संगीत भी सीखती है, फिर सुगम के बाद क्लासिकल सीखने का भी आपने
1: इच्छा तो है,
0: सोच रखा
1: होगा। कोशिश तो है, जितना भी सीखना मिले ऐसे सोचती हूँ, कभी कभी मुझे तानपुरा भी सीखना है, ये सीखना है, मुझे सब सीखना है, इतना बस ऐसा ही है कि मैं पूरा दिन सीखती रहूँ कुछ ना कुछ ऐसा है। गार्डनिंग करती हूँ, गार्डनिंग का भी शौक है, घर में है छोटा सा गार्डन, तो उसी में भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
0: बिल्कुल,
1: जो भी मतलब
0: इतने प्यारे से और इनोसेंट विचार आपके हैं, तो इसी की वजह से आप सिंगर हैं और इतना अच्छा गा लेती हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं जयपुर रेडियो की ओर से, और हम सुनने वालों को बता दें कि हमारे संग हैं जिनकी हमने सूरत नहीं देखी है, आप हैं सूरत गुजरात से, और आपका नाम है गीता गोदीवाला, गीत गाती हैं, इसलिए 3G तो पक्की हैं, और गुजरात से हैं तो 4G भी कह सकते हैं आप। तो आपको
1: सबका प्यार आशीर्वाद है, सबका, तो भाई बहन है, 4 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, ऑल आर वेल सेटल्ड, बहुत अच्छे फैमिली है, पापा मम्मी की कमी है,
0: बहुत अच्छा है,
1: बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे मेरे पापा, तो बस वही गुण मेरे भाई में भी आया है, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर है, अच्छा सा है गांव सूरत में, और बहुत ही अच्छा से रहेंगे।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत सुन के हमें बहुत खुशी हुई, और हमारे श्रोताओं भी इसका लाभ उठा ही रहे होंगे। तो आइए सुन लेते हैं आपका एक और प्यारा सा नगमा।

0: थैंक यू।
1: कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, ये गीत आपने सुना और आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज अपनी पहचान अपनी आवाज के माध्यम से कराने आई हैं पहली बार गीता गोदीवाला। जी हाँ, गीता गोदीवाला का फिर से स्वागत है, खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान। गीता जी, बहुत सारी बातें हुई आपसे, हम ये जानना
2: चाहेंगे
1: और आगे बढ़ना चाहेंगे आपकी बातों से, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि गीत जो है और गीतों से प्यार झुकाव क्या आपका बचपन से ही था या फिर धीरे धीरे जैसे आपने अपने पिता के घर से गाना शुरू किया और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ी, या अंदर जो गीत आपने दबा के रखा था वो आफ्टर 60 के वो बाहर आया, तो पहला गीत या पहली परफॉर्मेंस जो है वो आपने कब कहाँ कैसे दी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और पहला गीत जो आपने गाया होगा वो कौन सा था, वो भी हम
2: जी सर
1: आपसे सुनना चाहेंगे।
2: जी सर, पहले तो मैं स्टेज पे जाने से डरती थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़े क्लास में जाने का स्टार्ट किया कि मुझे कॉन्फिडेंस आए, और मैंने धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस लगा कि अब मैं स्टेज शो करूंगी, तो मैंने करना स्टार्ट किया। और जब मैं ये पहला गीत जो मेरा है बसेरा का, वो मेरा सीनियर सिटीजन में कंपटीशन था, वो टाइम पे मैंने ये गाया, जो मुझे ये बचपन से बहुत पसंद था ये सॉन्ग। मुझे मैं ऐसे भी गुनगुनाती थी, जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है, बस मैं मुझे इतना पसंद था ये गीत कि मेरे बोल जैसे नींद में भी यही आ रहा था कि नहीं ये सॉन्ग कितना कुछ कह जाता है,
1: इसके
2: वर्डिंग्स कितना कुछ कहता है,
1: इसमें अपने आप में एक कहानी है, एक स्टोरी
2: है, एक स्टोरी है। तो बस ये सॉन्ग मैंने सीनियर सिटीजन में गाया और मुझे विनर बना दिया, तभी से तो मेरी एकदम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि अब तो मैं गा सकती हूँ कहीं भी। तो बस इसी से मैं इंस्पायर हुई और आज मैं जहाँ भी जाती हूँ सब मुझे बोलते हैं आप बहुत अच्छा गाती हो, बहुत लता जी हो आप तो, आप आशा जी हो, ऐसा बोलते। भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो उनके पैर के नेल जितनी भी नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे इतना अच्छा गला दिया है तो मैं अभी थोड़ा उसको वॉश करती हूँ। और मैं बस मुझे जो था ये बचपन का मेरा ड्रीम वो मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। जब भी मैं इंडियन आइडल वगैरह देखती थी बच्चों का, तो मुझे लगता था इतने छोटे छोटे बच्चे गा रहे तो मैं क्यों नहीं गा सकती, और वो सब मैंने अंदर भर भर के रखे थे जो मैं आज बाहर निकल रही हूँ।
1: वाह, बहुत खूब बात कही आपने।
2: तो बोलते हैं ना कि बच्चे भी कभी हमें सिखा देते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े से ही सीखना चाहिए, बच्चे भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं हमें। और हर जनरेशन में जब आप मिल जाओगे तभी आप अच्छे लाइफ जी सकोगे, मैं तो ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि हमारे से बड़े थे वो इतने एडवांस नहीं थे, उनके विचार एडवांस नहीं थे, वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है, अभी मेरे ग्रैंडसन है मेरे।
1: बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाह रहा था, मैंने सोचा इस गीत के बाद में शुरू करेंगे कि ये जो जनरेशन का गैप है और जीजन और जो अल्फा और ये सब जो जनरेशन आ रही हैं, इनको सोच के इनको देख के आपके मन में क्या आता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस आपने किया है, बच्चों को बड़ा किया है, तो क्या आता है मन में,
2: तो
1: कितना बदलाव आया।
2: बदलाव में तो यही था कि मैं मेरे मैके में मेरे पापा हमको फ्रीडम दिया था, अच्छे से रहो, बस सिंपल आपका जो लुक है, नो गेटअप वगैरह, खुद शॉप अच्छी सी चल रही थी फिर, लेकिन कभी हमको मेकअप नहीं करने दिया, हम खुद ही इतने ब्यूटीफुल जैसे भी थे बस वैसे ही रखे, लेकिन हमको बहुत अच्छी सी लाइफ दिया, अच्छे संस्कार दिए। फिर मैं ससुराल आई, ससुराल का पूरा ऑर्थोडॉक्स था, एकदम से अलग माहौल, मैके से बिल्कुल अलग, कि बोलना चलना भी बहुत कम, हस्बैंड भी बहुत कम बोलते थे, सास ससुर भी, तो थोड़ा सा वो हो गया
1: बैलेंस
2: तो
1: बैलेंस नहीं होता फिर वो।
2: जी।
1: जी
2: फिर तो ये सब करके तो दो बच्चे भी हो गए, पहली बड़ी बेटी थी, बेटी है, और छोटा बेटा है 5 साल उससे। फिर उसके बाद मेरी सास की तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, तो वो 7 साल के बाद एक्सपायर्ड हो गए, वो पहले से ही बीमार थे। तो फिर

0: और मैं उड़ने लगी। ये है मेरा
1: चलिए फिर तो एक
0: बच्चे
1: उड़ता
0: भी।
1: हुआ गीत सुन लेते हैं आपकी आवाज में
0: क्या
1: हमारे
0: क्या
1: श्रोताओं के लिए के।
0: जी बच्चों का तो है ही, छोटे से के साथ में छोटी हूँ, अभी ग्रैंड सन है तो उन लोगों के साथ में उन लोगों के जैसी तो वो जन्म
1: कहा। आइए गीत सुन लेते हैं पहले हम।

0: रोका रोका रोका।
1: दिल को वो हजार बार रोका रोका रोका, लेकिन रुकता नहीं है। और जिस तरह समय चलता है उसी तरह से दिल भी दौड़ता रहता है, चाहे आप उसे कितना भी रोको। और हमारी आज की जो सुरीली मेहमान है गीता गोदीवाला, वो भी दिल को रोकती रही, लेकिन जो गीतों के लिए इनके दिल में प्यार जन्म ले चुका था वो तो बाहर आना ही था। और यही हुआ। क्या कहेंगी आप गीता जी इसके बारे में कि रोकने पर भी कोई चीज रुकती नहीं, जिस तरह से समय है। तो हमारे सुनने वालों को चलते चलते क्या कहेंगी आप, ये जरूर एक संदेश।
0: जी, बस जिंदगी जियो, खुल के जियो, अपनों के साथ अपना प्यार बांटते रहो, छोटों को अपना प्यार दो, बड़ों के साथ भी मान सम्मान के साथ रहो। भगवान आपको जरूर एक ना एक दिन आपके सपने पूरे करने का मौका जरूर मिलेंगे, देंगे, जरूर देंगे भगवान। और आप अपनी हिम्मत मत हारो, जो भी आप में टैलेंट हो आप बाहर निकालो, धीरे धीरे सब आपको ये करें, घर के लोग ही आपको सपोर्ट करेंगे, हाँ करो, कोई बात नहीं करो, और आप चलते जाओ। बस एक जिंदगी मिली है, अच्छे से जी लो, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, चाहे मेल हो या फीमेल, और छोटों से भी इतना ही सीखने को मिलता है, तो आप जरूर करिए। बस मैं तो यही बोलूंगी, आप सबका प्यार दुआ आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए, और मैं ऐसे ही आगे गाती रहूं और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वैस जी, आपने मुझे ये
1: बिल्कुल बिल्कुल हम बस ये बातें नहीं सुनेंगे, हम तो ये कहेंगे कि जो सबसे अच्छा गीत है उसकी एक लाइन हमें बिना म्यूजिक के आप चलते चलते ही सुना दीजिए, एक ही लाइन यानी एक अंतरा जो भी है।

0: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
1: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ।
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान

0: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
1: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
0: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
1: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
0: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
1: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा,
1: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
0: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
1: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
0: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
1: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
0: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
1: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो। तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
2: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
4: तवा बुधिरायो जयपुर रेडियो।

संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण। इन राजा परीक्षित डरते नहीं, वे सिंहासन छोड़ देते हैं, राज्य त्याग देते हैं और गंगा तट पर बैठ जाते हैं। उनका प्रश्न केवल एक होता है कि अब जब मृत्यु निश्चित है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। तभी वहां आते हैं महान ब्रह्मज्ञानी सुखदेव। राजा परीक्षित विनम्रता से पूछते हैं कि हे महात्मन, मृत्यु सामने हो तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है। सुखदेव उत्तर देते हैं, भगवान की कथा सुनो, उनका नाम स्मरण करो, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, और वही कथा है श्रीमद् भागवत पुराण। यही प्रथम स्कंद हमें सिखाता है। मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब मन भगवान में लीन हो जाता है। अब भागवत का संदेश सुनिए। कर्म बिना भक्ति अधूरा है, ज्ञान बिना प्रेम अहंकार बन जाता है, और कथा आत्मा को भगवान से जोड़ने वाला सेतु है। कलयुग में ना यज्ञ संभव है, ना कठोर तप, बस एक ही मार्ग है, भगवान का नाम और उनकी कथा। आज के मनुष्य के लिए भागवत का स्पष्ट संदेश है। हर दिन थोड़ी देर भगवान की कथा सुनो, अहंकार छोड़ो, जिज्ञासा रखो और मृत्यु से नहीं अज्ञान से डरो। कल्पना कीजिए, आज नहीं कल नहीं बल्कि ठीक 7 दिन बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। कोई उपाय नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई चमत्कार नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि कैसे बचा जाए, अब सवाल यह है कि अब जिया कैसे जाए। राजा परीक्षित आज राजमहल में नहीं है, वे बैठे हैं मां गंगा के तट पर। ना मुकुट, ना सिंहासन, ना सेना, एक राजा, लेकिन पूरी तरह अकेला, जिसके सामने हजारों सिर झुकते थे, आज वो स्वयं जीवन के सामने सिर झुकाए बैठा है। चारों ओर ऋषि है, मुनि है, ज्ञानी है, लेकिन वातावरण में कोई शोर नहीं है, क्योंकि जहां मृत्यु बैठी हो वहां शब्द अपने आप चुप हो जाते हैं। राजा परीक्षित सोचते हैं, मैंने युद्ध देखे, राज्य चलाया, धर्म निभाया, मैंने स्वयं भगवान कृष्ण को देखा, लेकिन क्या मैंने जीना सीखा। जब मृत्यु सामने आती है तो उपलब्धियां बोलना बंद कर देती है, तब केवल चेतना बोलती है। और तभी राजा परीक्षित वो प्रश्न पूछते हैं जिससे भागवत प्रकट होती है। हे मुनिवर सुखदेव, मेरे पास अब समय बहुत कम है, बताइए मनुष्य को मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। यह प्रश्न किसी राजा का नहीं है, यह प्रश्न हर उस इंसान का है जो जानता है कि एक दिन सब समाप्त होगा। सुखदेव जी धीरे से बोलते हैं, राजन, जिसने जीवन भर भगवान को टाल दिया वो मृत्यु के समय किसी भी उपाय से शांत नहीं हो सकता, और जिसने जीते जी भगवान को पकड़ लिया उसके लिए मृत्यु केवल एक क्षण है। सच ये है, मृत्यु से डर नहीं लगता, डर लगता है अधूरेपन से, डर लगता है इस बात से कि मैं सब कुछ होते हुए भी खाली रह गया। इसीलिए आज का मनुष्य हर चीज की तैयारी करता है, पैसा, घर, भविष्य, लेकिन अंतिम दिन की नहीं। इसीलिए है राजन, जो व्यक्ति मृत्यु के समय डर से मुक्त होना चाहता है उसे चाहिए भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम स्मरण करना और मन को इस संसार से हटाकर ईश्वर में स्थिर करना, क्योंकि मृत्यु के समय जो स्मरण में होता है अगला जीवन उसी दिशा में जाता है। भागवत मृत्यु की कथा नहीं है, ये मृत्यु से पहले जागने की प्रक्रिया है, और स्कंद दूसरे का पहला अध्याय यहीं से आपको जगाना शुरू करता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर भागवत इतनी शक्तिशाली है तो हर कोई इसे सुनकर बदल क्यों नहीं जाता। इसी रहस्य को सुखदेव जी अगले अध्याय में खोलने वाले हैं। राजा परीक्षित का प्रश्न हवा में नहीं खुला था, वो प्रश्न हर ऋषि के हृदय में गूंज रहा था, लेकिन सुखदेव जी तुरंत उत्तर नहीं देते। वे पहले राजा को देखते हैं और फिर सुनने वालों को, और तभी एक बहुत कड़वा सत्य कहते हैं, राजन, हर कोई भागवत सुनने योग्य नहीं होता। ये सुनकर सभा चौंक जाती है, क्योंकि भागवत तो सबके लिए है, फिर ये कैसी बात। सुखदेव जी धीरे धीरे समझाते हैं, भागवत कान से नहीं सुनी जाती, भागवत मन से सुनी जाती है, और जिस मन में अहंकार भरा हो, जिस मन में मैं जानता हूं भरा हो, वहां भागवत प्रवेश नहीं करती। राजन, अगर मन भरा हुआ है तो भगवान कहां आएंगे,
आज का मनुष्य सबसे ज्यादा यही भूल करता है। वो सुनता है लेकिन स्वीकार नहीं करता। वो कथा देखता है लेकिन खुद को नहीं देखता। इसीलिए भागवत सब सुनते हैं पर बदलते बहुत कम है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भागवत सुनने की पहली योग्यता है विनम्रता। ये स्वीकार करना कि मैं नहीं जानता, मैं अधूरा हूं और मुझे मार्गदर्शन चाहिए। दूसरी योग्यता है जिज्ञासा। मन में सवाल जीवित हो, केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सत्य की भूख हो। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता श्रद्धा। अंधी श्रद्धा नहीं बल्कि अनुभव करने की तैयारी। राजन, जिस दिन मनुष्य ये सोचकर भागवत सुनता है कि मैं क्या सीख सकता हूं, उस दिन भागवत उसके भीतर जीवित हो जाती है। लेकिन जिस दिन वो ये सोचकर सुनता है कि देखते हैं इसमें क्या खास है, उस दिन भागवत केवल शब्द बनकर रह जाती है। आज का मनुष्य सब कुछ तेजी से चाहता है, तेज ज्ञान, तेज परिणाम, तेज मुक्ति। लेकिन भागवत धीमी प्रक्रिया है। ये मन को तोड़ती है फिर जोड़ती है। ये अहंकार

कार को छीलती है, फिर हृदय को खोलती है। इसीलिए राजन भागवत उसके लिए नहीं है जो केवल सुनना चाहता है, भागवत उसके लिए है जो बदलने को तैयार है। सुखदेव जी सभा की ओर देखते हुए अंतिम बात कहते हैं, जो व्यक्ति भागवत को अपने ऊपर लागू नहीं करता उसके लिए भागवत भी एक कथा मात्र है, लेकिन जो भागवत को अपने जीवन में उतार लेता है उसके लिए भागवत जीवन बन जाती है। राजन, अब जब तुमने सुनने का अधिकार पा लिया है, अब मैं तुम्हें भगवान का वो स्वरूप बताऊंगा जिसे जानकर अहंकार अपने आप झुक जाता है। अगले अध्याय में भगवान मूर्ति नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड बनकर प्रकट होंगे। सुखदेव जी कुछ क्षण मौन रहते हैं, जैसे जो कहने वाले हैं वो शब्दों से बड़ा है। फिर धीरे से कहते हैं, राजन अब तक तुमने भगवान को मूर्ति समझा होगा, नाम रूप आकार में बांधा होगा, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ देगा। राजन, भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान यही है। इस समय भी जिस आकाश को तुम ऊपर देखते हो वही भगवान का मुख है, जिस वायु में तुम सांस लेते हो वही भगवान का प्राण है, जिस सूर्य की रोशनी तुम्हारी आंखें खोलती है वो भगवान की दृष्टि है, और जो चंद्रमा तुम्हारे मन को शांत करता है वो भगवान का मन है। राजन, जिस पृथ्वी पर तुम बैठे हो वही भगवान के चरण है, जिस दिशा में तुम देख रहे हो वही भगवान का विस्तार है। अब ध्यान से सुनो, ये ब्रह्मांड भगवान में नहीं है, भगवान ही ये ब्रह्मांड है, जिसमें तुम छिपना चाहते हो, जिससे तुम बचना चाहते हो वही भगवान का शरीर है। राजन, जब साधक इस विराट स्वरूप का ध्यान करता है तो भगवान को देखने के लिए नहीं बल्कि अपने मैं को गलाने के लिए करता है, क्योंकि जब तुम्हें ये दिखने लगे कि मैं छोटा हूं और ये सृष्टि असीम है तो अहंकार अपने आप झुकने लगता है। राजन, तुम कहते हो मैं करता हूं, लेकिन जब सूर्य उगता है तो क्या तुम्हारी अनुमति लेता है? जब मृत्यु आती है तो क्या वो तुमसे पूछती है? ये विराट स्वरूप यही सिखाता है कि तुम करता नहीं हो, तुम प्रवाह में बह रहे हो, और जिस दिन मनुष्य इस प्रवाह को स्वीकार कर लेता है उस दिन उसका डर खत्म होने लगता है। राजन, जो व्यक्ति इस विराट स्वरूप का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है वो संकीर्ण शरीर में नहीं जाता, वो विस्तार में विलीन होता है। इसीलिए ये ध्यान डरावना नहीं है, ये मुक्त करने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, विराट स्वरूप को केवल कल्पना मत समझना, ये चेतना की प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिससे मनुष्य छोटा सोचने से मुक्त होता है। राजन, अब तक तुमने सुना भगवान कैसे संपूर्ण सृष्टि है, अब अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा जब यही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो सबसे पहले कौन प्रकट होता है और क्यों सृष्टि शोर से नहीं मौन से शुरू होती है। सुखदेव जी धीरे से बोलते हैं, राजन अब तक तुमने जाना भगवान का विराट स्वरूप, अब मैं तुम्हें उस क्षण तक ले चलता हूं जहां कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना प्रकाश, ना अंधकार, केवल एक अनंत शांति। उस शांति में भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। ये नींद थकान की नहीं थी, ये चेतना की पूर्णता थी। राजन, जब मनुष्य थककर सोता है तो वो अचेत होता है, लेकिन जब भगवान योग निद्रा में होते हैं तो वे सबसे अधिक सचेत होते हैं। उस मौन में कोई इच्छा नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, और फिर भी सब कुछ उत्पन्न होने वाला था। राजन, भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, धीरे धीरे शांत स्थिर, कोई शोर नहीं, कोई विस्फोट नहीं। उस कमल पर एक चेतना जागी, वही थे ब्रह्मा। राजन, ध्यान से समझो, सृष्टि किसी संघर्ष से पैदा नहीं हुई, सृष्टि किसी युद्ध से नहीं निकली, सृष्टि मौन से उत्पन्न हुई। आज का मनुष्य सब कुछ शोर से बनाना चाहता है, नाम, पहचान, सफलता, लेकिन भगवान दिखाते हैं जो सबसे बड़ा है वो सबसे शांत होता है। ब्रह्मा कमल पर बैठे हैं, चारों ओर अनंत शून्य, ना ऊपर ना नीचे ना दिशा ना संकेत। राजन, यही वो क्षण है जहां ज्ञान भी डर जाता है, क्योंकि जहां कोई आधार ना हो वहां अहंकार टिक नहीं पाता। ब्रह्मा चारों दिशाओं में देखते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता, और तभी उन्हें ये समझ आने लगता है मैं कुछ नहीं जानता।
राजन, यही स्वीकार ज्ञान की शुरुआत है। जब तक मनुष्य ये कहता रहता है मैं जानता हूं, तब तक वो सीख नहीं सकता। भगवान ब्रह्मा से कुछ नहीं कहते, कोई आदेश नहीं, कोई निर्देश नहीं, क्योंकि सृष्टि आदेश से नहीं, समझ से रचती है। राजन, अब अगले अध्याय में तुम देखोगे जब सृष्टिकर्ता स्वयं भ्रमित हो जाता है तब भगवान किस एक शब्द से उसे दिशा देते हैं, और वही शब्द मनुष्य को भी अंधकार से बाहर लाता है। ब्रह्मा अब भी कमल पर बैठे हैं, चारों ओर असीम शून्य, ना कोई दिशा, ना कोई संकेत, ना कोई सहारा। राजन, यही वो क्षण है जहां सृष्टिकर्ता भी डर जाता है, क्योंकि जिसने अभी अभी जन्म लिया हो और जिसके सामने अनंत फैला हो उसके लिए ज्ञान भी काफी नहीं होता। ब्रह्मा सोचते हैं, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, और अब मुझे क्या करना चाहिए। राजन, ये प्रश्न केवल ब्रह्मा का नहीं है, ये वही प्रश्न है जो हर मनुष्य अकेलेपन में अपने आप से पूछता है, जब चारों ओर भीड़ हो लेकिन भीतर खालीपन हो, तब यही प्रश्न उठता है। ब्रह्मा कमल की नाल के भीतर झांकते हैं, नीचे उतरते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन ना आदि मिलता है ना अंत। राजन, यहां सुखदेव एक गहरी बात कहते हैं, जब तक मनुष्य बाहर उत्तर ढूंढता है तब तक वो भटकता रहता है, क्योंकि सृष्टि का रहस्य बाहर नहीं भीतर छुपा होता है। ब्रह्मा थक जाते हैं और पहली बार वे ये स्वीकार करते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। राजन, यही क्षण है जहां अहंकार टूटता है, और जैसे ही अहंकार टूटता है वैसे ही एक ध्वनि प्रकट होती है, ना कोई आवाज, ना कोई शब्दों की गूंज, बस एक स्पष्ट अनुभूति। तब राजन, ये कोई आदेश नहीं था, ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक दिशा थी। तब का अर्थ ये नहीं कि शरीर को कष्ट दिया जाए, तब का अर्थ है मन को स्थिर करना, इच्छाओं को शांत करना और चेतना को गहरा करना। ब्रह्मा समझ जाते हैं, जब तक मैं शांत नहीं होता तब तक सृष्टि प्रकट नहीं होगी, और वे तप में लीन हो जाते हैं। राजन, ध्यान रखो, भगवान तुरंत उत्तर नहीं देते, वे पहले मनुष्य को तैयार करते हैं, क्योंकि अधके मन को सत्य दे दिया जाए तो वो उसे भी भ्रम बना लेता है। तप के साथ साथ ब्रह्मा का अंतर्मन शुद्ध होने लगता है, और तभी उसी मौन में, उसी शांति में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, लेकिन आंखों के सामने नहीं, चेतना के भीतर। राजन, यही नियम मनुष्य के लिए भी है, जब तक मन शोर करता है भगवान मौन रहते हैं, और जब मन मौन होता है भगवान बोलते हैं। अब अगले अध्याय में तुम सुनोगे भगवान ब्रह्मा को क्या ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान कैसे पूरी सृष्टि का आधार बनता है। तब के उस गहन मौन में ब्रह्मा अब अकेले नहीं है, कुछ बदल चुका है, वही शून्य, वही शांति, लेकिन अब डर नहीं है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो शून्य खाली नहीं लगता। राजन, तभी ब्रह्मा के भीतर एक प्रकाश जागता है, कोई रूप नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन स्पष्ट अनुभूति, भगवान अब निकट है। और उसी क्षण भगवान ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान शब्दों में नहीं था, ये सीधे चेतना में उतरा। राजन, भगवान कहते हैं, मैं ही सृष्टि से पहले था, मैं ही सृष्टि के समय हूं, और मैं ही सृष्टि के बाद रहूंगा। जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम नहीं देख पा रहे, सब मुझसे ही उत्पन्न है, और जो कुछ मुझसे अलग दिखाई देता है वो भ्रम है। राजन, यही भागवत का सबसे गहरा सत्य है। भगवान कहते हैं, मुझे तर्क से मत पकड़ो, मुझे कल्पना से मत बांधो, मुझे अनुभव करो, क्योंकि जहां अनुभव है वही मैं हूं। ब्रह्मा समझने लगते हैं, सृष्टि किसी योजना का परिणाम नहीं, ये चेतना का स्वाभाविक प्रसार है। राजन, भगवान आगे कहते हैं, भक्ति के बिना ज्ञान सूखा है, और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, लेकिन जब दोनों एक साथ चलते हैं तब मुक्ति स्वाभाविक हो जाती है। ये सुनकर ब्रह्मा का अंतर्मन बाहर आता है, क्योंकि पहली बार उन्हें ये दिखता है कि वे अलग नहीं है, कि उनका अस्तित्व भगवान से जुड़ा हुआ है। राजन, यही ज्ञान मनुष्य को डर से मुक्त करता है, क्योंकि जो ये जान लेता है कि मैं अलग नहीं हूं वो खोने से डरता नहीं। भगवान अंत में एक गहरी बात कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे अपने जीवन का केंद्र बना लेता है उसके लिए कर्म बंधन नहीं बनते, वे सेवा बन जाते हैं।
और जो मुझे जीवन से हटा देता है उसके लिए कर्म भारी बोझ बन जाते हैं। देव जी बोले, राजन, ब्रह्मा जी ने इसी ज्ञान के आधार पर फिर से जगत की रचना की। उन्होंने समय का विभाजन किया, युगों की गणना की और देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया। लेकिन ये सब करते हुए भी वे हमेशा उस चतुश्लोकी भागवत के सार को अपने हृदय में धारण किए रहे। यही कारण है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के स्वामी होकर भी उसके मोह में नहीं बंधे। शुकदेव जी ने परीक्षित को ध्यान की विधि समझाते हुए कहा, हे कुरुनंदन, यदि तुम उस निराकार तक नहीं पहुंच पा रहे तो भगवान के चरणों से ध्यान शुरू करो। पहले उनके चरणों का चिंतन करो, फिर उनकी जंघाओं का, फिर उनकी कटी का और अंत में उनके मुस्कुराते हुए मुखारविंद का। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होगा, तुम्हें अनुभव होगा कि जिस परमात्मा को तुम बाहर खोज रहे हो वो तो तुम्हारे हृदय के आकाश में ही विराजमान है। परीक्षित अब पूरी तरह ध्यान मग्न थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे शुकदेव जी के शब्द केवल कान से नहीं बल्कि सीधे उनकी आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं। कथा की गति अब फिर से तेज होने लगी। शुकदेव जी ने कहा, राजन, सृष्टि की ये प्रक्रिया बड़ी जटिल है। ब्रह्मा जी ने जब रचना शुरू की तो उन्होंने पहले अविद्या के 5 पर्व बनाए, फिर सनकादि ऋषियों को जन्म दिया। लेकिन सनकादि ऋषियों ने सृष्टि बढ़ाने से मना कर दिया क्योंकि वे तो जन्म से ही विरक्त थे। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उस क्रोध से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। फिर स्वयंभुव मनु और शत्रुपा आए जिनसे मानव वंश चला। लेकिन समस्या तब आई जब पृथ्वी रसातल में समा गई। हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर पाताल के गहन अंधकार में छुपा दिया। बिना आधार के सृष्टि कैसे चलती? ब्रह्मा जी फिर से चिंता में डूब गए। वे सोच रहे थे कि अब पृथ्वी को बाहर कौन लाएगा? क्या वो विराट पुरुष फिर से कोई अवतार लेगा? क्या इस अंधकार का अंत होगा? शुकदेव जी के शब्द अब उस महाशक्तिशाली वरा अवतार की ओर संकेत कर रहे थे, जिसके आने की आहट से पाताल का राजा हिरण्याक्ष भी कांपने वाला था। पृथ्वी डूब रही थी और पूरा ब्रह्मांड एक रक्षक की प्रतीक्षा कर रहा था। पृथ्वी रसातल की अथाह गहराइयों में समा चुकी थी और चारों ओर केवल प्रलयंकारी जल का सन्नाटा था। ब्रह्मा जी चिंता के सागर में डूबे थे, लेकिन इस महागाथा का एक सिरा हस्तिनापुर के उन गलियारों से भी जुड़ा है जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। शुकदेव जी बोले, राजन, जब हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के मोह और दुर्योधन के अहंकार ने सारी सीमाएं लांघ दी थी, तब महात्मा विदुर ने शांति का अंतिम प्रयास किया था। लेकिन जब दुर्योधन ने उन्हें दासी पुत्र कहकर अपमानित किया और महल से निकल जाने को कहा तो विदुर जी ने बुरा नहीं माना। उन्होंने अपना धनुष द्वार पर रखा और इसे भगवान की इच्छा मानकर तीर्थाटन पर निकल गए। विदुर जी का ये त्याग ही उन्हें उस ज्ञान की ओर ले गया जिसे पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी तरसते हैं। भ्रमण करते हुए विदुर जी की भेंट यमुना के तट पर भगवान के परम सखा उद्धव से हुई। वहां उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण कर चुके हैं। इस समाचार से विदुर जी का हृदय फट गया, लेकिन उद्धव ने उन्हें ढांढस बंधाया और बताया कि भगवान ने अंत समय में विदुर जी को याद किया था और मैत्रेय ऋषि को आदेश दिया था कि वे विदुर को तत्वज्ञान का उपदेश दें। इसी आज्ञा का पालन करते हुए विदुर जी हरिद्वार पहुंचे, जहां गंगा के पावन तट पर महर्षि मैत्रेय विराजमान थे। विदुर जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे ऋषिवर, संसार के लोग सुख के लिए कर्म करते हैं पर उन्हें केवल दुख ही मिलता है। कृपा कर मुझे वो मार्ग बताएं जिससे मनुष्य शांति पा सके और मुझे उस आदि पुरुष के अवतारों की कथा सुनाए। मैत्रेय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विदुर, तुमने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। सुनो, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे थे तब उनके मानस पुत्रों, सनकादि ऋषियों और स्वयंभुव मनु ने तो अपना कार्य संभाल लिया, लेकिन पृथ्वी का कहीं पता नहीं था। हिरण्याक्ष नामक महाबली दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर रसातल के गहरे और गंदे जल में छुपा दिया था। ब्रह्मा जी व्याकुल होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। वे सोच रहे थे कि अब इस संकट से कौन उबारेगा। तभी एक अत्यंत विस्मयकारी घटना घटी। ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र नाक से अचानक एक अंगूठे के आकार का नन्हा सा वराह सुअर प्रकट हुआ। देखते ही देखते वह नन्हा जीव आकाश में बिजली की तरह बढ़ा और पल भर में एक विशाल पर्वत के समान विशाल हो गया। उसकी गर्जना से दसों दिशाएं कांप उठीं।
आकाश में स्थित जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के ऋषि मुनि इस अद्भुत रूप को देखकर स्तुति करने लगे। वह वरा अवतार कोई साधारण जीव नहीं बल्कि साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु थे। उनकी देह वेद की ऋचाओं से बनी थी, उनके रोम कुश के समान थे और उनकी आंखें सूर्य के समान चमक रही थी। भगवान वराह ने एक बार फिर भयंकर गर्जना की और अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर प्रलय के जल में छलांग लगा दी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि जल दो भागों में विभक्त हो गया। उन्होंने अपनी दिव्य नासिका से पृथ्वी की गंध को पहचाना और पाताल की अतल गहराइयों में उतरते चले गए। वहां उन्होंने देखा कि पृथ्वी असहाय भाव से जल के भीतर पड़ी है। भगवान ने अपने विशाल दांतों दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लिया और ऊपर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी वहां हिरण्याक्ष पहुंचा, कश्यप और दिति का वह पुत्र जिसे वरदान मिला था कि उसे कोई भी ज्ञात जीव नहीं मार पाएगा। अहंकार में अंधा था, उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था और अब वो वरुण देव को चुनौती देकर लौट रहा था। हिरण्याक्ष ने जब देखा कि एक विशाल वराह उसकी चुराई हुई पृथ्वी को ले जा रहा है तो वो अट्टहास करने लगा। उसने ललकारते हुए कहा, अरे ओ जंगली पशु, रुक जा, ये पृथ्वी मेरी संपत्ति है, तू इसे कहां ले जा रहा है? तू देवताओं की माया है, आज मैं तेरा वध करके इस जल को तेरे रक्त से लाल कर दूंगा। भगवान वराह ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका पहला कर्तव्य पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था। वे निरंतर ऊपर की ओर बढ़ते रहे जबकि हिरण्याक्ष अपनी गदा लेकर उन पर प्रहार करने की कोशिश करता रहा। जैसे ही भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर लाकर उसे उसकी कक्षा में स्थापित किया, वे हिरण्याक्ष की ओर मुड़े। समुद्र के भीतर एक ऐसा महायुद्ध छिड़ गया जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो गए। हिरण्याक्ष कोई साधारण योद्धा नहीं था, उसके पास मायावी शक्तियां थी। उसने भगवान पर अपनी भारी गदा से प्रहार किया लेकिन भगवान वराह ने खेल खेल में ही उसे अपनी गदा से दूर फेंक दिया। हिरण्याक्ष का क्रोध सातवें आसमान पर था। उसने अपनी गदा फिर उठाई और भगवान के मस्तक पर प्रहार करना चाहा लेकिन भगवान ने उसे अपने पैर से ऐसे हटा दिया जैसे कोई हाथी किसी मच्छर को हटा देता है। हिरण्याक्ष ने अब अपनी माया का प्रयोग करना शुरू किया। आकाश में अचानक पत्थर बरसने लगे, चारों ओर घना अंधकार छा गया और भयंकर चक्रवात चलने लगे। असुर ने त्रिशूल से वार किया पर भगवान ने उसे अपनी दाढ़ों से पकड़कर तोड़ दिया। हिरण्याक्ष ने अब अपनी मुष्टिकाओं से प्रहार करना चाहा। उस समय भगवान की आंखों में वह तेज था जो प्रलय काल की अग्नि में होता है। भगवान ने असुर के साथ थोड़ा मनोरंजन करने के बाद उसके कान के नीचे अपनी हथेली से एक ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल आई और वह निष्प्राण होकर जल में गिर पड़ा। साक्षात लक्ष्मीपति के हाथों मृत्यु पाकर वह दैत्य भी मुक्त हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पृथ्वी माता ने अपने उद्धारक की स्तुति की। मैत्रेय जी बोले, विदुर, भगवान के इस वराह रूप ने न केवल पृथ्वी को बचाया बल्कि संसार को ये संदेश भी दिया कि जब भी अधर्म की शक्ति सत्य को दबाने की कोशिश करेगी, भगवान किसी भी रूप में प्रकट होकर उसका सहार करेंगे। हिरण्याक्ष के वध के बाद ब्रह्मा जी का कार्य सुगम हो गया। इसके बाद स्वयंभुव मनु ने अपनी दो पुत्रियों और तीन पुत्रों के माध्यम से वंश बढ़ाना शुरू किया। उन्हीं की एक पुत्री थी देवहूति। देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम के साथ हुआ। कर्दम ऋषि ने हजारों वर्षों तक सरस्वती नदी के तट पर घोर तपस्या की थी ताकि उन्हें भगवान जैसा ही पुत्र प्राप्त हो सके। कर्दम ऋषि और देवहूति की ये कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। कर्दम जी ने अपनी तपस्या के बल पर एक दिव्य विमान बनाया था जिसमें बैठकर उन्होंने और देवहूति ने कई वर्षों तक गंधर्व लोकों का भ्रमण किया। लेकिन देवहूति का हृदय केवल सांसारिक सुखों में नहीं था, वह तो साक्षात भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखना चाहती थी। समय आने पर भगवान विष्णु ने स्वयं देवहूति के गर्भ से जन्म लिया। उनका नाम पड़ा कपिल। भगवान कपिल साक्षात ज्ञान के अवतार थे। उनके जन्म के समय आकाश से दिव्य दुंदुभियां बजी और ऋषियों ने उनका स्वागत किया। विदुर जी ने उत्सुकता से पूछा, हे मुने, साक्षात भगवान ने माता देवहूति को क्या उपदेश दिया? सांख्य शास्त्र क्या है जिसने माता को मोक्ष दिला दिया? मैत्रेय जी ने उत्तर दिया, विदुर, कपिल मुनि ने अपनी माता को जो ज्ञान दिया वो इस संसार के बंधनों को काट देने वाली कुल्हाड़ी के समान है। उन्होंने बताया कि ये मन ही है जो बंधन का कारण है और यही मन मोक्ष का द्वार भी है।
जब मन विषयों में लगा रहता है तो जीव दुखी होता है, और जब वही मन ईश्वर में लग जाता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान कपिल का वो शांत और तेजस्वी मुखमंडल अब विदुर की आंखों के सामने तैरने लगा। माता देवहूति ने अपने पुत्र से पूछा था, पुत्र इस अंधेरे संसार में मेरा मन भटक रहा है, मुझे प्रकाश दिखाओ। कपिल मुनि के शब्द अब उस सांख्य योग की गहराइयों में उतरने वाले थे, जहां आत्मा और प्रकृति का भेद स्पष्ट हो जाता है। विदुर जी मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे कि कैसे एक पुत्र ने अपनी माता को ही गुरु बनकर मोक्ष की राह दिखाई। कथा अब भक्ति और ज्ञान के उस शिखर पर पहुंचने वाली थी, जहां से संसार बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। क्या देवहूति अपने ही पुत्र के चरणों में बैठकर उस परम सत्य को पा सकेंगी जो ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है? मैत्रेय जी की वाणी अब उस अलौकिक संवाद का अनावरण करने जा रही थी। मैत्रेय जी बोले, विदुर, बिंदु सरोवर के तट पर वह दृश्य अत्यंत अलौकिक था, जहां साक्षात भगवान विष्णु के अंशावतार कपिल मुनि अपनी माता देवहूति के सामने एक गुरु के रूप में विराजमान थे। कर्दम ऋषि ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुत्र प्राप्ति के बाद संन्यास ले लिया था और वे वन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। अब माता देवहूति अकेली थी, लेकिन उनके पास संसार की सबसे बड़ी निधि थी, उनके पुत्र के रूप में साक्षात परमात्मा का ज्ञान। देवहूति ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से कहा, हे प्रभु, मैं इस अविद्या रूपी अंधकार में भटक रही हूं, मेरा मन इन इंद्रियों और विषयों के जाल में फंसा हुआ है। आप ही वो सूर्य हैं जो मेरे अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं, मुझे वो मार्ग दिखाइए जिससे ये संसार रूपी भय सदा के लिए समाप्त हो जाए। भगवान कपिल ने अपनी माता की व्याकुलता देखी और उनके मुख पर एक शांत मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहना शुरू किया, माता, जीव की मुक्ति और बंधन का एकमात्र कारण उसका मन है। जब ये मन सांसारिक गुणों और विषयों में आसक्त होता है, तब ये बंधन का कारण बनता है, लेकिन जब यही मन भगवान में अनन्य प्रेम के साथ लग जाता है तो ये मोक्ष का द्वार खोल देता है। ज्ञान और वैराग्य दो ऐसी तलवारें हैं जिनसे मोह के जाल को काटा जा सकता है। कपिल मुनि ने सांख्य योग का गहन रहस्य समझाते हुए बताया कि ये सृष्टि 24 तत्वों से बनी है, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां और एक मन। यही वो क्षेत्र है जहां जीव भटकता रहता है, लेकिन इन सबसे परे 25वां तत्व पुरुष, जो साक्षात ईश्वर है और इस प्रकृति का स्वामी है। कपिल देव की वाणी बिजली की तरह तीव्र थी, वे एक के बाद एक रहस्यों से पर्दा उठा रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम। इन गुणों के प्रभाव में आकर ही जीव स्वयं को कर्ता मानने लगता है और कर्मों के फल में बंध जाता है। उन्होंने काल, समय की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि काल ही भगवान की वो शक्ति है जो बड़े बड़े ब्रह्मांडों को उत्पन्न करती है और फिर उन्हें लीन कर देती है। उन्होंने भक्ति के 9 प्रकारों का वर्णन किया, जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। कपिल मुनि ने स्पष्ट किया कि जो भक्त मेरे अवतारों की कथाएं सुनता है, मेरा नाम जपता है और हर प्राणी में मेरा ही रूप देखता है, उसे योग की कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं होती, मैं स्वयं उसे संसार सागर से पार ले जाता हूँ। कथा की गति और तेज हुई जब कपिल मुनि ने जीव की उस भयंकर अवस्था का वर्णन किया जब वो माता के गर्भ में होता है। उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटा सा जीव माता के पेट में मलमूत्र के बीच पड़ा होता है, उसे भयंकर पीड़ा होती है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नग से बाहर निकालिए, मैं बाहर जाकर केवल आपका ही भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, माया का पर्दा उस पर गिर जाता है और वह फिर से उन्हीं खिलौनों और संबंधों में उलझ जाता है जिनसे वह छूटने की कसमें खा रहा था। ये चक्र अनंत है, जब तक कि जीव को अपनी वास्तविक पहचान का बोध न हो जाए। माता देवहूति मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी, उनके भीतर का मोह धीरे धीरे गल रहा था। कपिल मुनि ने अंत में अष्टांग योग की विधि भी समझाई। उन्होंने बताया कि कैसे यम, नियम, आसन और प्राणायाम के माध्यम से मन को स्थिर किया जाता है। उन्होंने भगवान के उस चतुर्भुज रूप का ध्यान करने को कहा जो कमल के समान कोमल चरणों वाला है, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है, जिसका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा शीतल है और जिसकी आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा है। उन्होंने कहा, माता,
जब साधक का मन पूरी तरह भगवान के रूप में तल्लीन हो जाता है तो उसे ये भी भान नहीं रहता कि उसका शरीर कहाँ है और वो क्या कर रहा है। वो अवस्था ही परमानंद की अवस्था है। माता देवहूति के हृदय में अब न कोई प्रश्न शेष था, न कोई इच्छा। उन्होंने अपने पुत्र के तेजस्वी मुख को देखा जो ज्ञान का साक्षात पुंज था। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके सामने बैठा ये बालक केवल उनका पुत्र नहीं बल्कि वह संपूर्ण अस्तित्व है जिसकी वे वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। उनके भीतर एक अपूर्व शांति छा गई। बिंदु सरोवर का जल स्थिर हो गया था, पक्षियों का कलरव थम गया था और मंद पवन चलने लगी थी। देवहूति ने अपनी आंखें बंद कर ली और कपिल मुनि द्वारा बताए गए ध्यान के मार्ग पर चल पड़ी। उनका चित्त अब विषयों से पूरी तरह हटकर केवल और केवल उस परम पुरुष में समा गया था। उनके शरीर से एक दिव्य आभा निकलने लगी। योग की अग्नि ने उनके संचित कर्मों को भस्म कर दिया। धीरे धीरे उनका शरीर गलने लगा, लेकिन यह मृत्यु नहीं थी, ये तो ईश्वर में विलीन होने की प्रक्रिया थी। साक्षात ज्ञान की मूर्ति माता देवहूति का वो नश्वर शरीर देखते ही देखते एक पावन नदी के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे आज भी सिद्धपदा के नाम से जाना जाता है। उनका अस्तित्व अब इस पूरी पृथ्वी के कणकण में समा गया था। उन्होंने वो पद प्राप्त किया जिसे बड़े बड़े योगी जन्म जन्मांतर तक तपस्या करके भी नहीं पा पाते। भगवान कपिल ने अपनी माता का उद्धार होते देखा और फिर वे स्वयं उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गए, जहां वे आज भी सांख्य योग के रूप में ऋषियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। विदुर जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। मैत्रेय ऋषि ने लंबी सांस ली और कहा, विदुर, ये कर्दम और देवहूति का वंश था जिसने साक्षात भगवान को जन्म दिया, लेकिन इस सृष्टि का विस्तार केवल यही नहीं रुका, स्वयंभुव मनु की अन्य संतानों से भी ये संसार फला खुला। उन्हीं में से एक थे राजा उत्तानपाद और उनके भाई प्रियव्रत। लेकिन मनु की पुत्रियों के वंश में एक ऐसी घटना घटी जिसने देवताओं और स्वयं महादेव के जीवन में उथल पुथल मचा दी। कथा का रुख अब ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की ओर मुड़ता है। स्वयंभुव मनु की एक और पुत्री थी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के अत्यंत प्रिय और शक्तिशाली पुत्र थे, उन्हें अपनी शक्ति और पद का बड़ा अहंकार था। दक्ष की कई पुत्रियां थी जिनमें से एक का नाम था सती। सती ने अपनी तपस्या से साक्षात महादेव भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। ये विवाह ब्रह्मांड की एक महान घटना थी क्योंकि यह प्रकृति और पुरुष का मिलन था, लेकिन नियति के गर्भ में कुछ और ही छिपा था। मैत्रेय जी बोले, विदुर, अहंकार और भक्ति का कभी मेल नहीं हो सकता। दक्ष प्रजापति ने एक बार एक विशाल सभा का आयोजन किया था जहां ब्रह्मा जी के साथ साथ सभी देवता और ऋषि उपस्थित थे। जब दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो उनके सम्मान में सभी खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव अपनी समाधि में लीन होने के कारण बैठे ही रहे। महादेव का ये सहज व्यवहार दक्ष को अपना अपमान लगा। उनके भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक उठी। उन्होंने ये भूल कर कि शिव ही सृष्टि के आधार है, उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया और शाप दे दिया कि आज से महादेव को यज्ञ का कोई भाग नहीं मिलेगा। नंदी और भृगु ऋषि के बीच भयंकर तर्क वितर्क हुआ और सभा शाप प्रतिशाप की गूंज में समाप्त हो गई। शिव जी वहां से चुपचाप चले गए क्योंकि वे तो द्वंद्वों से परे हैं। लेकिन दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने शिव का और अधिक अपमान करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसे कनखल में रखा गया। इस यज्ञ में सभी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन अपनी ही पुत्री सती और दामाद शिव को बुलावा नहीं भेजा गया। सती ने जब आकाश मार्ग से देवताओं के विमानों को जाते देखा तो उन्हें पता चला कि उनके पिता के यहां बड़ा उत्सव है। सती का मन अपनी बहनों और माता से मिलने के लिए व्याकुल उठा। उन्होंने महादेव से आग्रह किया कि वे भी उस यज्ञ में चले। शिव जी ने बहुत समझाया, देवी, बिना बुलाए जाना उचित नहीं, विशेषकर वहां जहां अपमान की भावना हो। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष करते हैं, वहां जाना तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए दुखदायी होगा। लेकिन सती का पुत्री हृदय नहीं माना। उन्हें लगा कि पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने अंततः भारी मन से सती को विदा किया और साथ में नंदी सहित अपने गणों को भेजा। सती जब दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंची तो वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। उनकी बहनों ने उन्हें देखकर व्यंग्य किया,
पिता दक्ष ने उनकी ओर देखा तक नहीं और उनकी उपेक्षा की। केवल उनकी माता ने उन्हें गले लगाया। सती ने जब यज्ञ के भाग देखे तो वहां भगवान शिव का कोई स्थान नहीं था। महादेव का ये तिरस्कार देखकर सती के भीतर की शक्ति जागृत हो उठी। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली गर्जना के साथ अपने पिता को ललकारा। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने आपका अन्न खाया है उस शरीर को मैं अब धारण नहीं करूंगी। सती ने वही योगाग्नि जलाई और महादेव का ध्यान करते हुए स्वयं को भस्म कर दिया। यह समाचार जब कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। उनके क्रोध से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ जिसने दक्ष के यज्ञ का सर्वनाश कर दिया। देवताओं के बीच हाहाकार मच गया और सृष्टि के विनाश का खतरा मंडराने लगा। विदुर जी कांप उठे। उन्हें एहसास हुआ कि एक अपमान कैसे पूरी सृष्टि को राख कर सकता है। दक्ष प्रजापति का वो विशाल यज्ञ मंडप जो कभी वेद मंत्रों की ध्वनियों से गूंज रहा था अब एक भयानक सन्नाटे की चादर में लिपटा हुआ था। सती बीच सभा में खड़ी थी। उनके चारों ओर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता ऋषि और गंधर्व विराजमान थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह सती की आंखों में देख सके। दक्ष ने अपनी पुत्री की ओर तिरस्कार भरी दृष्टि डाली और गरजते हुए कहा, सती तुम यहां बिना बुलाए क्यों आई हो? क्या उस शमशानवासी सर्पधारी शिव के साथ रहकर तुम्हारी मति भी वैसी ही भ्रष्ट हो गई है? वो अमंगलकारी पुरुष जो शमशान की राख मलता है इस पवित्र यज्ञ के योग्य नहीं है। मैंने जानबूझकर उसे भाग नहीं दिया, और यदि तुम उसकी वकालत करने आई हो तो यहां से तुरंत चली जाओ। दक्ष की वाणी में अहंकार का जहर घुला था। सती ने देखा कि यज्ञ के कुंडों में हर देवता का स्थान है, लेकिन उनके आराध्य उनके पति महादेव का कहीं नामो निशान नहीं है। सती का हृदय छलनी हो गया। एक पुत्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसका अपना पिता उसके पति को, जो साक्षात जगदीश्वर है, अपशब्द कह रहा है। सती की आंखों से आंसू नहीं बल्कि क्रोध की अग्नि फूट रही थी। उन्होंने सभा की ओर देखकर कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पिताजी आपने उस महादेव का अपमान किया है जो इस चराचर जगत के स्वामी है, जिन्हें केवल शिव कहने मात्र से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। आप उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जिनके चरणों की धूल मस्तक पर रखते हैं उन परम मंगलकारी शिव का ये अनादर अब सहन नहीं होगा। सती ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें मूंद ली। उन्हें इस बात का गहरा मलाल था कि उनका ये शरीर दक्ष के अन्न से बना है। उन्होंने मन ही मन महादेव को प्रणाम किया और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, जिस शरीर में दक्ष का रक्त बह रहा है वो शरीर अब महादेव की संगति के योग्य नहीं है। मैं इस अपवित्र देह का यही परित्याग करती हूँ। सती ने सुखासन लगाया और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह अंतर्मुखी कर लिया। उन्होंने नाभि चक्र से उदान वायु को ऊपर उठाया और उसे हृदय चक्र में स्थित किया। फिर निरंतर ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते हुए उन्होंने अपनी योग शक्ति से शरीर के भीतर ही अग्नि प्रज्वलित की। देखते ही देखते सती का शरीर दिव्य योगाग्नि की लपटों में घिर गया। सभा में हाहाकार मच गया। देवता अपने स्थानों से खड़े हो गए लेकिन कोई भी उस अग्नि को शांत नहीं कर सका। क्षण भर में साक्षात जगदम्बा का वह पार्थिव शरीर राख की ढेरी में बदल गया। सती ने अपनी देह त्याग दी थी ताकि वे अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्थी बनकर फिर से शिव को पा सके, लेकिन उस क्षण पूरी सृष्टि पर शोक और भय के बादल छा गए। इधर कैलाश पर भगवान शिव समाधि में लीन थे, लेकिन जैसे ही सती के प्राण निकले महादेव का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनकी दृष्टि में प्रलय काल का रौद्र रूप था। जब उन्हें पता चला कि सती ने दक्ष के अपमान के कारण आत्मदाह कर लिया है तो महादेव के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने भयानक गर्जना की जिससे दसों दिशाएं हिल उठीं। क्रोध के वशीभूत होकर शिव ने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर पटक दिया। उस जटा से बिजली की कड़क के साथ दो महाभयानक शक्तियां प्रकट हुई। विशाल काय वीरभद्र और काली के समान तेज वाली भद्रकाली। वीरभद्र का शरीर आकाश को छू रहा था। उसकी हजारों भुजाएं थी और आंखों से धधकती ज्वाला निकल रही थी। महादेव ने आदेश दिया, जाओ वीरभद्र, दक्ष के उस यज्ञ का सर्वनाश कर दो जिसने मेरी सती की जान ली है। किसी को भी जीवित मत छोड़ना जो उस पाप का साक्षी बना है।
वीरभद्र अपने साथ शिव के गणों की सेना लेकर कनखल की ओर बिजली की गति से दौड़ा। यज्ञ मंडप में ऋषियों ने जब धूल का गुबार और भयानक चीखें सुनी तो वे कांप उठे। देखते ही

दर्शकों के सामने टिक नहीं सके और वहां से भाग खड़े हुए। दक्ष प्रजापति, जो कुछ देर पहले अहंकार के नशे में चूर थे, अब थरथर कांप रहे थे। वे एक खंभे के पीछे छिपे थे, लेकिन वीरभद्र की पैनी नजरों से नहीं बच सके। वीरभद्र ने दक्ष को बालों से पकड़ा और उसे घसीटते हुए यज्ञ कुंड के पास ले आया। उसने दक्ष के सीने पर पैर रखा और तलवार के एक ही झटके से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह सिर यज्ञ की अग्नि में स्वाहा हो गया। यज्ञ पूर्णतः विध्वंस हो चुका था। जब ब्रह्मा और विष्णु को यह समाचार मिला तो वे कैलाश पहुंचे। उन्होंने देखा कि महादेव सती के वियोग में तांडव करने की तैयारी में है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर स्तुति की और शिव के क्रोध को शांत किया। महादेव, जो अत्यंत भोले और दयालु है, शांत हुए और देवताओं की विनती पर दक्ष को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार हो गए। चूंकि दक्ष का सिर जल चुका था, इसलिए एक बकरे का सिर उनके धड़ पर लगाया गया। दक्ष जब जीवित हुए तो उनका सारा अहंकार चूर हो चुका था। उन्होंने शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। यज्ञ फिर से संपन्न हुआ और महादेव ने सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन सती के जाने का घाव गहरा था। शुकदेव जी ने परीक्षित को बताया कि इसके बाद महादेव सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरी पृथ्वी पर भटकने लगे। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। कथा का ये अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन मनु के वंश की अगली पीढ़ी अब एक नए संघर्ष की ओर बढ़ रही थी। स्वयंभुव मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने भक्ति के मार्ग पर एक नन्हे बालक को अमर बना दिया। उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि से अत्यंत प्रेम करते थे, जबकि बड़ी रानी सुनीति उपेक्षित रहती थी। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर बैठे थे। उसी समय सुनीति का 5 वर्षीय पुत्र ध्रुव वहां आया और उसने भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई। ये देखकर सुरुचि क्रोध से लाल हो गई। उसने नन्हे ध्रुव को धक्का दिया और अत्यंत कड़वे शब्दों में कहा, अरे ओ बालक, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो भगवान की तपस्या कर और मेरे गर्भ से जन्म लेने का वरदान मांग। तू सुनीति का पुत्र है, तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। नन्हा ध्रुव इस अपमान से सहम गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। माँ ने जब सारा हाल सुना तो उनके कलेजे पर पत्थर पड़ गया। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने सच ही कहा है। इस संसार में भगवान विष्णु के सिवा हमारा कोई रक्षक नहीं है, वही सबका दुख हरते हैं। ध्रुव की कोमल बुद्धि में ये बात पत्थर की लकीर बन गई। मात्र 5 साल की उम्र में उसने संकल्प लिया कि वो उस परमात्मा को खोज कर ही रहेगा, जो उसे वो स्थान दे सके जिसे कोई छीन न सके। ध्रुव उसी रात चुपचाप महल से निकल पड़ा। रात का घना अंधेरा था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, लेकिन उस बालक के मन में डर का लेश मात्र भी नहीं था। वह केवल नारायण को पुकार रहा था। रास्ते में उसे महर्षि नारद मिले। नारद जी ने उस बालक की परीक्षा लेने के लिए कहा, बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, ये जंगल भयंकर है, घर वापस चला जा, खेलकूद की उम्र में ये तपस्या कैसी। लेकिन ध्रुव अटल था। उसने कहा, मुनिवर, मेरा हृदय अपमान की आग में जल रहा है, मुझे केवल उस पद तक पहुंचे का मार्ग बताइए जो तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ध्रुव की दृढ़ता देखकर गदगद हो गए। उन्होंने ध्रुव के कान में द्वादशाक्षर मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने उसे मधुवन जाने का आदेश दिया, जहां साक्षात भगवान का वास है। ध्रुव यमुना के तट पर उस पवित्र वन में पहुंचा और वहां एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या शुरू की। पहले महीने उसने केवल फल खाए, दूसरे महीने सूखे पत्ते, तीसरे महीने केवल जल और चौथे महीने हवा पीकर तक किया। 5वें महीने में ध्रुव ने अपनी सांसें भी रोक ली। उस नन्हे बालक की तपस्या की ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मांड का दम घुटने लगा। देवता घबरा गए कि ये बालक क्या मांग लेगा। इंद्र ने उसे डराने की कोशिश की, मायावी राक्षसों को भेजा, लेकिन ध्रुव का मन अपनी नाभि में स्थित उस ज्योति में गड़ा हुआ था जिसे उसने अपने भीतर देख लिया था। मधुवन का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। ध्रुव के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का घेरा बन गया था। वो अपनी आंखों के भीतर जिस चतुर्भुज रूप का दर्शन कर रहा था।

अचानक वो रूप वहां से गायब हो गया। ध्रुव व्याकुल होकर जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि साक्षात भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए उसके सामने खड़े हैं। उनकी मंद मुस्कान और करुणा भरी दृष्टि ने ध्रुव के सारे दुखों को पल भर में मिटा दिया। वो अबोध बालक स्तब्ध रह गया। उसके पास शब्द नहीं थे कि वह भगवान की स्तुति कैसे करे। भगवान ने ध्रुव की इस दुविधा को समझा और अपने दिव्य शंख को ध्रुव के गाल से स्पर्श किया। उस स्पर्श मात्र से ध्रुव के भीतर ब्रह्मांड का सारा ज्ञान प्रवाहित हो उठा। अब ध्रुव के मुख से जो शब्द निकले वे साक्षात वेदों की ऋचाएं थे। उसने भगवान से कोई राज्य या बदला नहीं मांगा, बल्कि केवल उनके चरणों की अविचल भक्ति मांगी। भगवान ने उसे दर्शन देकर धन्य किया और उसे ध्रुव लोक प्रदान किया, जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। ध्रुव वापस अपने राज्य लौटा। पिता ने उसे गले लगाया और अपनी गलती का पश्चाताप किया। ध्रुव ने कई वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य किया और अंत में दिव्य विमान पर चढ़कर उस पद को प्राप्त किया जिसे आज हम ध्रुव तारा के रूप में देखते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये भक्ति की शक्ति है कि एक छोटा सा बालक ब्रह्मांड का आधार बन गया। लेकिन क्या होगा जब इसी वंश में एक ऐसा राजा पैदा होगा जो भगवान का ही शत्रु बन जाएगा? वेन की अधर्मी गाथा अब शुरू होने वाली थी। नारद जी का आशीर्वाद लेकर और साक्षात नारायण के दर्शन पाकर वो नन्हा ध्रुव जब वापस अपनी नगरी हस्तिनापुर की ओर मुड़ा, तो उसके मन में अब न तो अपनी सौतेली माँ के प्रति कोई ईर्ष्या थी और न ही सिंहासन के प्रति कोई मोह। वो तो अब उस परम रस का पान कर चुका था जिसके आगे इंद्र का वैभव भी फीका लगता है। इधर राजा उत्तानपाद अपनी भूल पर निरंतर पश्चाताप कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को वन के हिंसक पशुओं के बीच छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें ये सूचना मिली कि ध्रुव वापस आ रहा है, राजा की आंखों में चमक लौट आई। वे नंगे पैर अपने मंत्रियों और रानियों के साथ नगरी की सीमा पर पहुंचे। ध्रुव को देखते ही राजा ने उसे अपनी छाती से लगा लिया और फफकफक कर रो पड़े। सुरुचि, जिसने कभी ध्रुव को दुत्कारा था, आज उस बालक के चरणों में गिर पड़ी। ध्रुव का तेज इतना दिव्य था कि जिसने भी उसे देखा वो नतमस्तक हो गया। ध्रुव ने कई वर्षों तक न्यायपूर्वक पृथ्वी का शासन किया। उनके राज्य में न कोई दुखी था, न कोई अकाल मृत्यु होती थी।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान, नई आवाज नई पहचान प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं नए मेहमान जिनकी सूरत तो हमने नहीं देखी है लेकिन आप हैं सूरत गुजरात से और हम वेलकम।
1: मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का आज का एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका साथ हूँ सुपर सिंगर अर्चना अग्रवाल और मेल सिंगर अनुराग के साथ जयपुर रेडियो के इस मंच पर। गीत जहाँ संगीत की वजह है और आपके आ जाने से वो वजह सुरीली हो जाती है। लाल कर्मवानी आ रहे हैं अर्चू रानू 16 के साथ आज के अंक के पहले सॉन्ग में। आइए सुनते हैं लाल कर्मवानी और अर्चू रानू का ये दो गाना।

आपने सुना लाल करमवानी और अर्चू रानू को, और अब बबलू आर्य आ गए हैं अर्चू रानू का साथ देने गीत तू ही बता। और दिल क्या बताएगा अपनी बात, वो तो गीत में गा के हमें सुनाने आ गई हैं अर्चू रानू 16। और हाँ, एक बात हम भी बता देते हैं आपसे कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ होती हैं जयपुर रेडियो की सिंगर अर्चू रानू और मेल सिंगर अनुराग। अगर आप भी गाना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9414084901। और आइए अब सुनते हैं इस अंक का ये सेकेंड सॉन्ग, दिल तू ही बता।

दिल की बात आपकी आवाज के साथ लेकर आते हैं हम और पहुंचाते हैं जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स तक। अगर आप भी आना चाहते हैं सिंगिंग के लिए तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। आइए अब सुनते हैं बबलू आर्य और अर्चू रानू की इस जोड़ी को एक बार फिर, छोड़ के ना जा ओ पिया।

0: बहुत अच्छा गाया आपने।
1: किसी का जाना और किसी का फिर से आना, ना हमने समझा ना आपने जाना। छोड़ने छूटने और दिल को छू जाने वाले इस सुरीले गीत के बाद आइए जरा सी चांद तारों की बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग में सोनी शिव कुमार आ गए हैं अर्जुन रानू का सुरीला साथ देने के लिए। सॉन्ग मेरा चांद मुझे आया है नजर। आइए सुनते हैं सोनी शिव कुमार और अर्जुन रानू को।

चांद के नजर आने की तिथि भी निश्चित है और हमारे आने का भी समय निर्धारित है, लेकिन गुजरे हुए पलों को हम वापस नहीं लौटा सकते। लेकिन हमारे वादे, हमारे उसूल, हमारे गीतों के साथ गाए जाते हैं। आइए सुनते हैं दो शॉर्ट वर्जन। अर्चू रानू 16 का साथ दे रहे हैं रजत एसकेएल।

रजत SKL के साथ गाए इन दो शॉर्ट वर्जन के बाद एक शॉर्ट वर्जन में आ गए हैं किशोर 4Q। अर्चू रानू का साथ।

आपने सुना किशोर फॉर क्यू और सुपर सिंगर अर्चू रानू को, और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर अनुराग अपनी हंसनी की तलाश में।

गीतों की उड़ान भरते हुए हमारे साथ हैं अनुराग, इस मंच के मेल सिंगर। क्या आप भी आना चाहेंगे अनुराग की तरह इस मंच पर? तो आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। और जिंदगी का रास्ता और चलने की बात करते हैं अनुराग के साथ।

यहाँ थकने का कोई नाम नहीं, रुकने का कोई काम नहीं, जो रास्ता है जिंदगी का और इस रास्ते पर गीतों के मुकाम की ओर बढ़ते चले जाना है और एक दूसरे को गीत की डोर में प्रीत के संग बांधते बढ़ते जाना है। आइए सुनते हैं अनुराग का ये अगला सॉन्ग।

है नाम होठों पे अब भी, लेकिन आवाज में पड़ गई दरारें। ये तो गीत की लाइंस है साहब, हमारे प्रोग्राम की आवाज में कोई दरार नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, और उसका नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आइए गीतों में आवाज की पुकार को सुनते हैं, और हम कहते हैं सुनने वालों को, सुनाई दे या ना दे, हम तुम्हें आवाज देते हैं। तो आपको भी आमंत्रण देने आ गए हैं अपने स्वर के साथ अनुराग।

गीतों से दीवानगी और गीतों में आपको शामिल करने की आवाज देते अनुराग। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के जिंदगी में शामिल होने का आवाहन करने के बाद गीत से बात करते हुए अपने दिल की बात कह रहे हैं दर्दे दिल वाले इस खूबसूरत गीत में। आइए सुनते हैं अनुराग को इस सुरीले गीत के साथ।

0: थैंक यू।
1: अर्चू रानू 16 और अनुराग आज इस प्रोग्राम में आपके साथ रहे, इस मंच पर जिसका नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, अपने को सिंगर्स के साथ। अब आरजे भूमिका को अनुमति दें। नमस्कार।
2: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है सेलिब्रेशन प्रोग्राम और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दुबई के महेश भाई भाटिया के बर्थडे को। बहुत शुभकामनाएं जयपुर रेडियो की ओर से। आज हम सुनेंगे वही सॉन्ग जो महेश भाई भाटिया ने अपने खूबसूरत अंदाज से गाया। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है सेलिब्रेशन प्रोग्राम और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दुबई के महेश भाई भाटिया के बर्थडे को। बहुत शुभकामनाएं जयपुर रेडियो की ओर से। आज हम सुनेंगे वही सॉन्ग जो महेश भाई भाटिया ने अपने खूबसूरत अंदाज से गाए हैं। जयपुर रेडियो के आप सुरीले सिंगर हैं और दुबई में रहते हैं और आज आपका है हैप्पी वाला बर्थडे, तो मेरी ओर से, जयपुर रेडियो की ओर से और हम सबकी ओर से जो आपके को सिंगर हैं उनकी ओर से आपको हैप्पी बर्थडे। जयपुर रेडियो बोल रहा है और आप तक ये आवाज पहुंच ही रही होगी।

भोले भाले दिल को बहलाते रहे और तेरे ही ख्यालों से हम अपने ख्वाबों को सजाते रहे और आपका ख्याल आज तो आना लाजमी है क्योंकि आज जयपुर रेडियो के सिंगर महेश भाई भाटिया हमारे संग अपने गीतों के साथ है और आपके को-सिंगर्स भी हमारे संग हैं। तो क्यों ना हम पहले चेतना शाह जो आपके साथ बहुत सारे गीत गा चुकी हैं वो क्या कहती हैं आज के दिन आज के इस अवसर पर आइए सुन लेते हैं।

अपने गीत में, संगीत में, अपनी आवाज में चेतना शाह दे रही थी आपको हैप्पी बर्थडे की ये खूबसूरत संगीतमय प्रस्तुति। और अब महेश जी का ये खूबसूरत गीत

स्वप्न चला आए जैसे कोई चोरी चोरी गा रहा हो, जैसे जैसे कोई लोरी। लेकिन ये लोरी नींद को बुलाने के लिए नहीं है, जो नींद में है उनको जगाने के लिए है। और जगा के हम कह रहे हैं, गा रहे हैं और बुला रहे हैं आपको इस मंच पर जिसका नाम है डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सेलिब्रेशन और सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आज महेश भाई भाटिया के जन्म उत्सव को। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच, और अब गा रहे हैं महेश भाई ये सुरीला गीत।

0: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आप
1: देखो धरती चली मिलने।
0: महेश भाटिया की आवाज, आपकी आवाज आपकी पहचान।

अरमानों के पंख लगा के उड़ तो चली है, लेकिन आ रही है इसी मंच पर जिसका नाम है जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आपने सुना ये सुरीला सॉन्ग, इसे आवाज दे रहे थे हमारे आज के सुरीले मेहमान महेश भाई भाटिया, जिनका आज है हैप्पी वाला बर्थडे। आइए सुनते हैं आपका ये अगला सुरीला सॉन्ग।

0: थैंक यू सो मच।
1: और इन प्यारे से गीतों के लिए तो प्यार बनता ही है और शुभकामनाएं ही बनती है। महेश भाई का ये खूबसूरत गीत सुन के और उनके गाए दूसरे गीतों को सुन के हमें जो फीडबैक मिला है, हम उन सबके नाम लेना चाहेंगे। आपको शुभकामनाओं के साथ मंदाकिनी शाह बड़ोदरा गुजरात से, शुभ्रा भट्टाचार्य आमेर राजस्थान से, दक्षा वोरा बड़ोदरा गुजरात से, मीता ठक्कर छत्तीसगढ़ से, अंजना राजदान जेंट के जम्मू एंड कश्मीर से, निशा पाहवा शायद दिल्ली से, रत्ना राव कंचन राठी, बी एल सैनी, श्याम यादव, रेणु सेठ, जय सिंह, हिना महेश, हिना मनीष मेहता अहमदाबाद गुजरात से, अंकित दीक्षित, सोनल पारिक जूनागढ़ गुजरात से, जसपाल बजाज, प्रकाश खत्री, अशोक माथुर जयपुर से, एस सेन, मेघना वाडलिया और नीरज गोड़। आप सबने भी आपको आपके गीत सुनकर शुभकामनाएं दी है, ये प्रोग्राम सुन के हमें शुभकामनाएं दी है। आप सबका बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार। और एक बार पुनः हम कहते हैं महेश भाई को हैप्पी बर्थडे।

0: वहाँ संजय जी हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार।

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाए समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्कार।

0: जय माता दी,
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

एक ऐसा सिंगर जो न केवल बॉलीवुड को पूरी तरह एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहा, बल्कि इस यूनिवर्स को एक ऐसी आवाज दे गया जिसको सुनकर हम ईश्वर, भगवान या अल्लाह की आवाज की कल्पना के नजदीक पहुंच जाते हैं। आज के इस एपिसोड में आवाज के इस सम्राट को अपना स्वर नमन दे रही थी अर्जुन रानू 16 और आपका साथ दे रहे थे अनिल शर्मा 1961। और अब आंखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत को इस मंच पर लेकर आए हैं अर्जुन रानू के संग सोनी शिवकुमार।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चू रानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चु रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चु रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चु रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मनमोहन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में, जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो जीवन की रीत है। ये जीवन है, जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। इस गीत में साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का फनी भूषण। और अब राजा रानी क्या कह रहे हैं अपनी सुरीली आवाजों में, किशोर फॉर यू आए हैं अर्जुन रानू के संग इस शॉर्ट वर्जन में।

राजा रानी की प्यार की कहानी हमने सुनी अर्जुन रानू और किशोर फॉर यू की जुबानी इस गीत में, और इस सुरीले से शॉर्ट वर्जन के साथ ही जयपुर रेडियो के इस मंच से मैं आरजे भूमिका आपको एक बार फिर बतला देती हूँ इस मंच के नंबर। हमारे नंबर हैं 9352-784-724। इस नंबर पर आप अपना सिंगिंग का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज की ये सुरीली सौगात सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग यहीं तक। आरजे भूमिका को विदा दें। नमस्कार।

बहुत शुक्रिया आरजे भूमिका। और इसके बाद अब आ गए हैं हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग, और अनुराग लेके आए हैं अपनी सुरीली आवाज में अपने गाए हुए कुछ गीत। आइए शुरुआत करते हैं, सुनते हैं आपका ये पहला गीत

प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। और ये आवाज रही हमारे सुरीले सिंगर अनुराग की। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास एपिसोड। हमारे संग है अर्चुरानो 16 और अनुराग सिंगर के रूप में। आइए सुनते हैं अगला गीत अनुराग की आवाज में।

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, और यदि गीतों से प्यार हो जाए, बेशुमार हो जाए, तो आप जयपुर रेडियो पर आ जाएं। यही कह रहे हैं अनुराग, हमारे आज के मेल सिंगर। आपकी आवाज, आपकी पहचान और बहुत सारे तकनीकी कारणों के वजह से हम अनुराग से यही अनुमति लेंगे और जारी रखेंगे प्रोग्राम। भूमिका आज के सिंगर अर्चुरानू के संग।
1: और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चुरानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर। हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चू रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है, लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

0: सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
1: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा JMD का बाम वेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाएं।
2: JMD, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
3: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान
2: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आज की शाम कुछ खास है क्योंकि हम आज एक ऐसे गायक के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम सब सुरों के बादशाह के नाम से भी जानते हैं जी हाँ सही पहचाना वो कोई और नहीं हम सबके चहेते मोहम्मद रफी जी हैं रफी जी का जन्म 1924 में अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था और उनको बचपन में सब फिंकू के नाम से पुकारा करते थे उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए जैसे कि असमीस कोंकणी भोजपुरी तेलुगु मैथिली उर्दू गुजराती पंजाबी मराठी बंगाली जैसी भाषाएं और तो और उन्होंने इंग्लिश फारसी अरेबिक सिन्हला डच स्पैनिश जैसी भाषाओं में भी गाने गाए उन्होंने हर तरह के गीत भी गाए जैसे कि भक्ति गीत शास्त्रीय गीत गजल कव्वाली देशभक्ति गीत मस्ती भरे गीत और दर्द भरे गीत तो फिर आज के गीतों के कारवां का आगाज करते हैं 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं से जिसमें ऋषि कपूर जी थे इस फिल्म को बेमिसाल संगीत से सजाया आरडी बर्मन जी की धुनों ने और सुरों को लफ्जों से सजाया मजरू सुल्तानपुरी जी ने इस फिल्म के सारे गाने खूब धूम मचा रहे थे पर उस साल का फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला मोहम्मद रफी जी को और साथ ही साथ उसी गाने के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला तो फिर आइए उसी गीत को सुनते हैं मेरी और विद्या प्रकाश जी की मधुर आवाज में

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1980 की फिल्म आप ऐसे तो न थे से है, जिसमें राज बब्बर और रंजीता कौर थीं। इस फिल्म का जादू भरा संगीत दिया उषा खन्ना जी ने और गीत लिखे निदा फाजली जी ने। क्यों ना इसी जादू भरे गीत को सुना जाए विद्या जी और बिंदु जी की मधुर आवाज में।

क्या खूब पेशकश की। आइए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म एक नारी दो रूप से, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और रश्मि धवन थी। इस फिल्म में मात्र 4 गाने थे और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया गणेश जी ने और बेमिसाल शब्दों से सजाया असद भोपाली जी ने। चलिए इसी फिल्म के एक बेमिसाल गीत को सुनते हैं MD त्यागी जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म उस्तादों के उस्ताद से है, जिसमें प्रदीप कुमार के साथ शशिकला थी। इस फिल्म के सारे गाने खूब हिट हुए। इस फिल्म का बेहद शानदार संगीत दिया रवि जी ने और गीतों को शब्दों से पिरोया असद भोपाली जी ने। आइए इसी शानदार गीत को सुनते हैं अनिल झुमका वाला जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक शानदार पेशकश। दोस्तों चलिए एक खेल खेलते हैं, पर उसके लिए आप सबको पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जी हाँ, आंखें बंद। ये ना सोचिएगा कि मैं देख नहीं रहा, आंखें बिल्कुल बंद। अब अगर मैं आप सबको इस मौसम में कश्मीर की बर्फीली वादियों में ले चलूं तो कैसा रहेगा? चारों तरफ बर्फीली वादियां, बर्फीले पहाड़ और ये मस्त सर्द हवा। क्या कहा आपने, कोई फिल्म का नाम याद आया? सही कहा, कश्मीर की कली। ये एक ऐसी फिल्म थी जो कश्मीर की बर्फीली वादियों में शूट की गई थी। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे SH बिहारी जी ने और उतना ही मस्ती भरा संगीत दिया OP नैयर जी ने। आइए इसी मस्ती भरे फिल्म के मस्ती भरे गीत को सुनते हैं जूही जी और सज्जाद जी की मधुर आवाज में।

कैसी लगी ये बर्फीले पहाड़ों की सैर? कश्मीर की कली एक ऐसी फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर के सभी गीतों को स्वर दिया मोहम्मद रफी जी ने और सारे के सारे गाने खूब सुपरहिट हुए। चलिए एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं गायत्री जी और डॉक्टर आदेश जी की मधुर आवाज में।

कहिए कैसी रही ये मस्ती भरी पेशकश। चलिए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म धर्मा से, जिसमें प्राण, नवीन निश्चल और रेखा थी। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया मास्टर सोनिक और ओम प्रकाश सोनिक जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे वर्मा मलिक जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं अंजलि दत्त के और संजीव जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1967 की सुपरहिट फिल्म तीसरी मंजिल से है, जिसमें शम्मी कपूर के साथ आशा पारेख थी। इस फिल्म के सभी गीतों में मोहम्मद रफी जी ने शम्मी कपूर जी को अपनी आवाज दी और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने और उन्हीं गीतों को संगीत से सजाया आर डी बर्मन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक खूबसूरत गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1961 की फिल्म जंगली से है, जिसमें शम्मी कपूर जी के साथ सायरा बानू थी। इस फिल्म ने कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते और हर एक गीत सुपरहिट हुआ। इस फिल्म के शानदार गीतों में हसरत जयपुरी जी की कलम का जादू देखते ही बनता है और उन्हीं गीतों को मस्ती भरे सुरों में सजाया शंकर जयकिशन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं डॉक्टर तरुणा जी और रामकृष्ण जी की मधुर आवाज में।

क्या शानदार गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1967 की फिल्म अदालत से है, जिसमें प्रदीप कुमार जी के साथ नरगिस थी। इस फिल्म के सारे गाने इतने मशहूर हुए कि आज तक गुनगुनाए जाते हैं, और इस फिल्म का संगीत दिया मदन मोहन जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे राजेंद्र कृष्णन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मद भरा गीत सुनते हैं श्रुति जी और संजय जी की मधुर आवाज में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूँ।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: और ये बंद नाक और जुखाम कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
1: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा JMD का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाएं।
2: JMD, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं एक शाम, 100 साल एक आवाज। सुना है आज हवा भी गुनगुनाएगी और रफी साहब की जन्म शताब्दी में हर धुन रफी साहब की याद दिलाएगी। तो चलिए रफी साहब की यादों के इस गहरे समंदर में डूबते हैं और उनकी अमर आवाज को एक बार फिर से दिल से महसूस करने के लिए बुलाते हैं जयपुर रेडियो में पुणे से आज के कलाकार। एक आवाज जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपके चहेते जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, और वो हैं सुदर्शन फाटक। वेलकम सुदर्शन जी, आपका जयपुर रेडियो में स्वागत है।
4: नमस्कार दोस्तों, आज 24 दिसंबर और आज के दिन आपके सामने रफी जी के गाने पेश करना, ये मेरे लिए किसी अवार्ड रिवॉर्ड से कम नहीं है। सबसे पहले थैंक यू जयपुर रेडियो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं बोलना चाहूँ आज के बारे में, आज के दिन के बारे में, रफी जी के बारे में, तो मैं इतना ही कहूँगा कि समंदर से गहरा और आसमान से ऊंचा अगर कुछ है तो वो रफी जी का सुर है। रफी जी को जब सुनते हैं हम दूर से, सिर्फ सुनते हैं, तब ऐसा लगता है कितनी मुलायम आवाज़, कितने आसानी से गा रहे हैं। लेकिन वही जब हम कोशिश करने जाते गाने की, तब समझता है एक एक सुर कितना गहरा है। और आज मैंने जो कुछ भी कोशिश की है वो शायद उनके नाखून के बराबर भी ना हो, लेकिन ये मेरी तरफ से आज के दिन उनके 100वीं जन्मतिथि के अवसर पर मेरी तरफ से एक आदरांजलि उनको।
3: थैंक यू सो मच सुदर्शन जी, सच अ ब्यूटीफुल थॉट। फ्रेंड्स, सुनते रहिए जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत। 100 साल पहले एक आवाज ने इस दुनिया में कदम रखा जो हर दिल के दर्द का मरहम बन चुका था, मोहम्मद रफी। रफी साहब का हर सुर एक दुआ बन के उठा और उनकी हर धुन मोहब्बत का पैगाम बन चुकी थी। तो चलिए सुनते हैं पहला नगमा हर दिल अजीज सुदर्शन की आवाज में।

बेहद खूबसूरत अंदाज सुदर्शन जी का, और किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, हुजूर चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। फ्रेंड्स, जिस तरह आपकी महबूबा का नूर कोई चुरा नहीं सकता, उसी तरह रफ़ी जी के किरदार की खुशबू कभी फीकी नहीं हो सकती। तो आइए ले चलती हूँ उनकी लाइफ के कुछ अनमोल किस्सों की तरफ और सुदर्शन फाटक के साथ उनके गीतों की तरफ। रफ़ी जी के परिवार का म्यूज़िक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उनका दुनिया का सबसे महान सिंगर में शुमार होना सिर्फ उनके जुनून और हार्डवर्क का सबूत है। जिस तरह सैगल साहब के शो में लाइट गुल हो जाने की वजह से मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका मिला और म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर जी ने उन्हें बॉम्बे आने का न्योता दिया, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री बिकॉज ऑफ हिज हार्डवर्क। चलिए इतिहास के एक पन्ने में से निकला एक सुकून भरा अगला गीत सुनते हैं, दिल को छूने वाली सुदर्शन की आवाज़ में।

जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तबीयत बहलती थी नन्हे रफी जी की, जब एक फकीर गाते हुए उनके गांव की गली से गुजरता था, जो रफी जी की इंस्पिरेशन थे। और रफी साहब उस फकीर से इतने इंस्पायर्ड थे कि उस फकीर के आने से उनका हर दिन मानो रोशन हो जाता और बहार छा जाती थी। तो सुनते हैं ऐसा ही एक गीत सुदर्शन की नर्म आवाज में।

सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये सफर सुदर्शन और गुरप्रीत के संग? मुझे पूरा यकीन है कि दिलदार गायक के दिलदार श्रोताओं का दिल भी बड़ा होगा, जैसे रफी साहब का किरदार। क्या आपको पता है कि नए आने वाले कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को मौका दिया था रफी जी ने, और सिर्फ एक रुपए की साइनिंग अमाउंट लेकर गीत गाए? कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आजकल? तो जिनका किरदार एक राजा जैसा हो, उनके लिए ये गीत तो बनता ही है। फ्रॉम अनदर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग सुदर्शन, जो वर्चुअल सिंगिंग प्लेटफॉर्म स्टार मेकर की फैमिली BML यानी बॉलीवुड म्यूजिक वर्ल्ड के कैप्टन यानी राजा हैं। तो चलिए सुनते हैं।

अब तक है जमाने पे जिस आवाज का जादू, उसके मेरे ऊपर उपकार बड़े थे। कहना है रफी के लिए बड़ा मुश्किल, इंसान बड़े थे या कलाकार बड़े थे। ऐसा कहना था हमारे म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी का। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजेश खन्ना काका और संगीत जगत के मसीहा मोहम्मद रफी की ऐसी जुगलबंदी हुई कि आज भी हर आशिक अपनी महबूबा के लिए वो गीत गाकर उसकी आंखों में डूब जाना चाहता है। उस गीत का जादू आज भी बरकरार है। तो सुनते हैं सुदर्शन की जादुई आवाज में वो गीत।

सो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो गीत सुने, हर गीत ने हमारे दिल में रफी जी के रंग छोड़े हैं सुदर्शन की आवाज में। अब जो अगला गीत है वो एक लाइवली एंड प्लेफुल सॉन्ग है, नहीं शम्मी जी पर नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक सौम्य और संजीदा एक्टर नवीन निश्चल पर फिल्माया गीत। तो दोस्तों, आनंद लेते हैं मस्ती और जोश से भरे अगले गीत का।

0: शीला।
1: सुदर्शन फाटक की आवाज में ये गीत एक नए रंग में दिखाई दिया। तो चलिए बढ़ते हैं मस्ती से सरोबार एक और गीत की तरफ।

भर गए ना आप जोश में? ये जोश और उमंग ऐसे ही बरकरार रखी हमारे जोशीले गायक सुदर्शन फाटक ने। और मोहम्मद रफी जी की बात करें तो चाहे जॉनी वॉकर का मजाक मस्ती भरा अंदाज हो, दिलीप कुमार की गहरी और दर्द भरी गजल, अमिताभ बच्चन का पावरफुल परसोना हो या शम्मी कपूर का एनर्जेटिक और फ्लर्टेशियस स्टाइल, रफी साहब की आवाज हर हीरो के लिए एकदम फिट लगती थी। जब उनका गाना सुनते तो ऐसा महसूस होता जैसे वो खुद ही गा रहे हों। और इसी तरह हमारे आज के कलाकार सुदर्शन फाटक भी हर गीत उसी अंदाज से बखूबी निभा रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं, तो सुनते हैं अगला गीत सुदर्शन की आवाज में।

जैसे रफ़ी जी के रोमांटिक नंबर्स उनके सिग्नेचर बन चुके थे, उसी रोमांटिक इमोशंस को सुना सुदर्शन की रोमांटिक आवाज़ में। सुनते हैं अगला क्लासिक सॉन्ग।

ऐसे तो रफी साहब के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब धर्मेंद्र जी के लिए जट यमला पगला दीवाना नाश नाश कर स्टूडियो में रिकॉर्ड किया रफी जी ने, तो धर्मेंद्र ने उनको गले लगा कर कहा, वाह क्या अंदाज में गाया है। तो रफ़ी ने उनसे कहा कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब पर्दे पर लाना तुम्हारा काम है। तो सुनते हैं धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया यमला पगला दीवाना से कहीं हटकर अगला गीत।

यूं तो मेरी हर बात समझ जाते हो तुम, फिर भी क्यों मुझे इतना सताते हो तुम? तुम बिन कोई और नहीं है मेरा, क्या इसी बात का फायदा उठाते हो तुम? सुदर्शन की आवाज ने इस गीत को पूरी तरह महसूस करवाया। और आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, 100 साल एक आवाज, मोहम्मद रफी की आवाज। और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं अगला।

0: नाउम्मीद थे चारागार मेरी हालत को देखकर, पाया तबस्सुम तेरा, दवा उनकी काम कर गई। रफ़ी जी का बेहद खूबसूरत सॉन्ग आपने सुना सुदर्शन की आवाज़ में। किसी को उसके कद का गुमान न था, वो आसमान था, सर झुका कर बैठा था। रफ़ी जी की सिंगिंग इतनी एफर्टलेस और सोलफुल थी कि लगता ही नहीं था कि कोई गाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। सैड सॉन्ग में वो दर्द भर देते जो सीधा दिल को छू जाता, और कॉमेडी सॉन्ग में ऐसी मस्ती कि चेहरे पर हंसी आ जाए। तो चलिए सुनते हैं उनका एक और रंग सुदर्शन की आवाज में।
1: मारे,

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज के कलाकार हैं सुदर्शन फाटक पुणे से, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत। चेहरे पर इसी हंसी को बरकरार रखें, और आज की शाम अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो थोड़ा और करीब आ जाएं और सुनिए ये गीत।

0: नौशाद साहब के कुछ अल्फाज रफ़ी साहब के लिए। महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास यह सदा गूंजेगी सदियों तक दिल के आसपास। मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। एक और खूबसूरत प्रोग्राम आपके समक्ष पेश है और ये प्रोग्राम लेके आए हैं यूके से रवि कुमार। रफी साहब के गीतों को खूबसूरत तरीके से आपने पिरोया है, आपने अपने स्वर में गाया है और उन गीतों को हम तक पहुंचाया है। तो हम वेलकम करते हैं रवि कुमार साहब का जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर, आपकी आवाज आपकी पहचान और हम क्या दें मिसाल।

आवाज में जो एक्टिंग अदायगी थी रफी साहब के, वही अदायगी रवि कुमार साहब की है। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं ये खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता जिसे लेके आए हैं रवि कुमार साहब यूके से हमारे साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो पर।

अमानत फिल्म के लिए इस गीत को रफ़ी साहब ने गाया था और आज हमारे साथ गा रहे हैं रवि कुमार साहब। इस गीत का संगीत दिया था रवि ने और गीत था साहिर लुधियानवी का। बेहद खूबसूरत गीत हम सुन रहे हैं रवि कुमार साहब की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान, जी हाँ, जयपुर रेडियो की पहचान बन चुकी है आपकी आवाज। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं।

गीत की अपनी जुबान होती है, गीत की अपनी कहानी होती है, और रवि कुमार ये कहानी कह रहे हैं अपनी जुबानी। आपकी आवाज, आपकी पहचान, अब क्या मिसाल दूं।

इंसान बन गई है किरण महताब की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबा की। एक खूबसूरत गीत आरती फिल्म से लिया गया है और ऑन स्क्रीन प्रदीप कुमार और मीना कुमारी एक्ट्रेस पे फिल्माया गया था। इस गीत का संगीत दिया था रोशन ने और इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। बेहद खूबसूरत गीत है ये और इस गीत को हम रोमांटिक गीतों में अमर गीत कह सकते हैं। और हमारे आज के जो स्वर हैं रवि कुमार साहब, उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस गीत को अपनी आवाज से सजाया और आप तक पहुंचाया। बहुत बधाई, आपकी आवाज आपकी पहचान।

शमशान नहीं देखा, इस फिल्म का ये गीत शमी कुमार साहब पर ऑन स्क्रीन फिल्माया गया था और अमिताभ ही साथ में एक्ट्रेस के रूप में था और गीत था साहिर लुधियानवी साहब का और आवाज हमारे इस प्रोग्राम में रही रवि कुमार साहब की। आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी स्पेशल प्रोग्राम और उसको स्वर दे रहे हैं हमारे आज के स्वर रवि कुमार। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

फिल्म असली नकली का ये गीत देवानंद साहब और साधना एक्ट्रेस पर फिल्माया गया ऑन स्क्रीन। म्यूजिक शंकर जयकिशन साहब का था और गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और अपनी आवाज अपने स्वर में सजाया हमारे लिए यूके से रवि कुमार साहब ने। ये खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आपकी आवाज आपकी पहचान और रफी साहब का एक बहुत मशहूर गीत है ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। आइए सुनते हैं रवि कुमार साहब से ये गीत। आपकी आवाज आपकी पहचान

इस गीत को फिल्म महबूब की मेहंदी के लिए रफी साहब ने गाया था। म्यूजिक इस गीत का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का रहा और गीत लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। और आपके लिए आज के स्वर में रवि कुमार साहब ने ये गीत आप तक पहुंचाया। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो फर्ड।

जब भी मौसम की बात चलेगी तो लोफर फिल्म का ये गीत कभी भी हमारे जहन से दूर नहीं हो सकता। इस गीत को ऑन स्क्रीन एक्टर धर्मेंद्र साहब और मुमताज पर फिल्माया गया था। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी साहब ने।

आपने सुना फिल्म प्यार ही प्यार का ये गीत। ऑन स्क्रीन धर्मेंद्र और वैजयंती माला पर फिल्माया गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और हमारे आज के स्वर रवि कुमार आप तक पहुंचा रहे थे ये गीत, आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड आज के

तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। जी हाँ, गीत को संगीत से सजाया था SD बर्मन साहब ने और इसको ऑन स्क्रीन देवानंद साहब और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था। और आप तक इस गीत को पहुंचा रहे थे हमारे आज के स्वर, आज के कलाकार रवि कुमार साहब। आपकी आवाज़, आपकी पहचान।

आज के छोटे प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। अभी आपने सुना एक गीत जिसे आवाज दे रहे थे रवि कुमार आज के स्वर। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था और धर्मवीर फिल्म से इस गीत को लिया गया। ऑन स्क्रीन जीनत अमान और धर्मेंद्र पे फिल्माया गया था ये गीत। आपकी आवाज आपकी पहचान आप सुन रहे हैं आज के स्वर प्रोग्राम में रवि कुमार साहब के वो गीत जो रफी साहब ने गाए हैं।

मुझे दर्द-ए-दिल का पता न था मुझे आप किस लिए मिल गए। ये खूबसूरत गीत आकाशदीप फिल्म से था। इसका संगीत दिया था चित्रगुप्त ने और गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। और आज इसको स्वर दे रहे थे हमारे आज के स्वर रवि कुमार साहब।

0: हसरत जयपुरी साहब का गीत, शंकर जयकिशन का संगीत और ऑन स्क्रीन शमी कपूर साहब और आशा पारिक पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म पगला कहीं का से था और इसे आज स्वर दे रहे थे इस मंच से हमारे आज के स्वर रवि कुमार साहब यूके से। दुआ है हमारी आवाज सुने आपकी दुनिया सारी। रवि कुमार साहब बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं, यूं ही गाते रहें और यूं ही हमारे लिसनर तक अपने गीत पहुंचाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये संगीतमय सफर यहीं तक, आपकी आवाज आपकी पहचान। बहुत आभार बहुत शुभकामनाएं रवि कुमार साहब यूके से। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: हे हाय दोस्तों, मेरा नाम है, अब तक तो आप मेरी आवाज पहचान गए होंगे। इतना पुराना और लंबा रिश्ता जो बन गया है आप लोगों के साथ, कोई फेमस सेलिब्रिटी तो नहीं, फिर भी खजाने की कमी नहीं है मेरे पास। अनमोल खजाने लेके आई हूँ अपने आओ झूमे गाए म्यूजिक ग्रुप से।

सिर्फ जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान पे। मेरा नाम है रति भार्गव और पास में मेरे जो कोहिनूर हैं, नवरत्न हैं, उनके नाम कुछ यूं हैं: किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आरडी बर्मन, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, गुलजार और हमारी बॉलीवुड जगत के जगमगाते सितारे जैसे माधुरी, श्रीदेवी, डिंपल कपाड़िया, शर्मिला टैगोर, जूही चावला, जयप्रदा, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, शाहरुख खान, सनी देओल, संजय दत्त, आशा पारेख, शर्मिला, नीतू वगैरह वगैरह। हमारा आज का ये एपिसोड है बॉलीवुड की चांदनी और लोगों के दिलों पर राज करने वाली हवा हवाई पे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए हैं, मैं बात कर रही हूँ श्रीदेवी की, जो सिनेमा जगत की पहली महिला सुपरस्टार रह चुकी हैं। श्रीदेवी को लेडी अमिताभ बच्चन और पहली सुपरस्टार का दर्जा दिया जाता है। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का जन्म हुआ था शिवकाशी तमिलनाडु में। श्रीदेवी ने 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और चाइल्ड एक्टर के तौर पर साल 1967 में तमिलनाडु कंदन करुणे में काम किया था। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले श्रीदेवी तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी थी। श्रीदेवी ने बॉलीवुड में 4 दशक से भी ज्यादा समय तक लोगों को अपनी एक्टिंग से मनोरंजन किया। तो चलिए दोस्तों, आपको श्रीदेवी से जुड़े कुछ अनकहे किस्से सुनाते हैं और उनके कुछ बेहतरीन गाने जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो सुनते हैं श्रीदेवी का ये जादू भरा परफॉर्मेंस बिमल और कविता की मधुर आवाज़।

चांदी के पर्दे पे जो चांदनी थी, जो बेजान सीन को अपने प्रेजेंस से जिंदा कर देती थी, ओ जिनकी आंखों में इन्फेक्शस सी चमक थी, एन एक्ट्रेस हु लिटरली ब्रॉट स्क्रीन टू लाइफ, वो लाइफलेस कैसे हो सकती हैं? श्रीदेवी, आपने हमें जादू दिखाया और जादू सिखाया। मेरी आंखों के सामने उभर रहे हैं वो इम्पेक्शियस एक्सप्रेशंस, वो चमकती आंखें, वो दमकते एक्सप्रेशंस, और हम तो उन्हें ऐसे ही याद रखेंगे। ट्रांसपेरेंट छतरी, ट्रांसपेरेंट रेनकोट, ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंसेस, श्रीदेवी सच में इस जादू के लिए शुक्रिया। फिल्म लम्हे को 30 साल हो चुके हैं। इस फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना, तानिया और जगदीश की मधुर आवाज।

क्या आप जानते हैं दोस्तों, श्रीदेवी का वास्तविक नाम श्री अम्मा अय्यर अयप्पन था। पर्दे पर उनके लिए श्रीदेवी नाम तय किया गया। बता दें कि श्रीदेवी उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल दोनों के साथ काम किया। श्रीदेवी के करियर की बात करें तो उन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर साउथ इंडस्ट्री से शुरुआत की थी। इसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने 16 सावन से डेब्यू किया, जिसमें वह जितेंद्र के साथ नजर आई थी। जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में से 13 उनकी सुपरहिट फिल्में रहीं। सुनते हैं ये हमारा अगला गाना फिल्म हिम्मत वाला से, बोल इंडिवर के, म्यूजिक दिया बपीदा ने और गाया बेहद खूबसूरती से किशोर दा और लता मंगेशकर ने। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं आपके लिए किशोर और संगीता अपनी सुरीली आवाज से।

श्रीदेवी ने 90s में आई थिंक लड़कियों से बहुत सारा प्रेशर हटा दिया है ना। हमेशा स्लिम होना, हमेशा खूबसूरत दिखना, एलिगेंट होना, प्रॉपर होना, स्टाइल मारना कोई जरूरी नहीं, ये समझा दिया। बी योर नेचुरल मैड क्रेजी सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, आई मीन जो मूछे लगा के आंखें भेंगी करके भी पूरे देश का दिल जीत सकती थी, वो कितनी हेल्दी रोल मॉडल थी सोच के देखिए। पर्दे पर अपने चुलबुले अंदाज से सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली थी हवा हवाई, हर उम्र के लोगों की पसंदीदा थी। अगर आप भी तनाव फील कर रहे हो, अपना मूड अच्छा करने के लिए बस ये गाना सुन लीजिए और आपका मूड झट से अच्छा हो जाएगा। इसे सुनाने आ रही हैं गायत्री और मनीषा आपके लिए।

सिग्नेचर श्रीदेवी इन ऑल हर ग्लोरी, एक ही इंसान एक साथ मैड, इनसेन, सेक्सी, एलिगेंट, ब्यूटीफुल एंड स्टेलर परफॉर्मर कैसे हो सकता था। एक तरफ ऐसे गानों की मैडनेस सच एज न जाने कहां से आई, या करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, या फिर ऑफ कोर्स हवा हवाई न जाने कितने, तो दूसरी तरफ सेंसुअलिटी जो स्क्रीन पे आग लगा दे, मतलब जाबाज ले लो या मिस्टर इंडिया का दूसरा गाना ले लो एंड मेनी अदर्स, बीच में हम मेस्मराइज्ड। सुनते हैं दोस्तों वो गाना जाबाज मूवी का, हर किसी को नहीं मिलता, श्रीदेवी की स्टेलर परफॉर्मेंस जिसने आग लगा दी थी, मेरी यानी रति और गगन की आवाज में।

हिंदी फिल्मों में समाज को संपूर्ण बनाने की सारी विधा मौजूद है। नायक की खुद्दारी हो या नायिका का त्याग, या फिर आपसी प्रेम भाव का आचार विचार हो या समाज को एकजुट रखने का संदेश, यह सभी चीजें हिंदी फिल्मों में दिखाई जाती हैं। नायक और नायिकाओं के बीच प्रेम और आकर्षण की मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी और अनिल कपूर पर फिल्माया गीत कांटे नहीं कटते दिन ये रात इश्क और हुस्न की इंतहा को जग जाहिर करता है। किशोर कुमार और अलीशा चिनॉय की आवाज ने इस गीत को मधुरतम बनाया है। गीत आई लव यू के भाव से शुरू होता है और इसी भाव के साथ खत्म भी होता है। आइए सुनते हैं ये गीत प्रेरणा और रेस की आवाज में।

1989 में प्रदर्शित फिल्म चांदनी का ये गीत, इसमें श्रीदेवी और ऋषि कपूर ने पानी में आग लगा दी थी। हुस्न की अदा बारिश के मौसम में इस गीत में काफी सुहावनी बन पड़ी है। गीत संगीत और श्रीदेवी के बेजोड़ नृत्य के गीत को मधुर अंदाज दिया है आनंद बख्शी के लिखे इस गीत में। गीत काफी मनोहरी बना। इसे सुनते हैं मानवेंद्र और संगीता की सुमधुर आवाज में।

मैं आपके साथ रति भार्गव अपने आओ झूमे गाएं के कलाकारों के साथ आज के इस स्पेशल सेगमेंट में याद कर रहे हैं उन्हें जो कुछ ज्यादा ही जल्दी चली गईं। हम उन्हें तो मिस करेंगे ही और अभी उन्हें जितनी बेहतरीन फिल्में करनी थी उन्हें भी मिस करेंगे। 80 के दशक में एक और गीत देखने और सुनने को मिला जिसमें हुस्न और इश्क का बेजोड़ संगम था। हमारा अगला गाना हुस्न और इश्क की अदा पर चांदनी मूवी का ये गाना सुनते हैं प्रियंका और गिरीश की मधुर आवाज में।

श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा में एक कमर्शियल हीरोइन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में नागिन से लेकर चाल पास, चांदनी, जुदाई, खुदा गवाह, नगीना, मिस्टर इंडिया जैसे कई शानदार फिल्मों में दमदार अभिनय किया। अभिनेत्री फिल्मी पर्दे से दूर हो गई थी, हालांकि 15 साल के लंबे समय के बाद 2013 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश फिंग्लिश में शानदार वापसी की। सुनते हैं हमारा अगला नगमा दो दोस्तों की दास्तान पे, और इसे सुनाने आ रहे हैं मुकेश और मंदार अपनी मधुर आवाज में।

रानी मेरा नाम, जूली और सोलवा सावन जैसी छुटपुट फिल्में करने के बाद हिंदी सिनेमा को अपने करियर का अगला मुकाम बनाने वाली श्रीदेवी 1983 में जितेंद्र के साथ फिल्म हिम्मत वाला की तो पूरी हिंदी पट्टी में हंगामा हो गया था। इतनी मादक और इतनी मोहक अभिनेत्री इससे पहले हिंदी सिनेमा में कोई दूसरी उनको नजर ही नहीं आई। इसके बाद श्रीदेवी ने हिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। आखिरी रास्ता, नगीना, जाबाज और कर्मा जैसी फिल्म करने के बाद वह 3 साल में ही नंबर 1 की कुर्सी पर आ बैठी थी। इसके बाद मिस्टर इंडिया, निगाहें से होते हुए करियर उनका अगला टर्निंग पॉइंट था चांदनी। श्रीदेवी को सफेद लिबास में ढली चांदनी देख उस समय हर लड़की उन्हें कॉपी करना चाहती थी। श्रीदेवी की ये फिल्म गवाही देती है इस बात की कि आज 30 साल के बाद भी चांदनी की चमक फीकी नहीं पड़ी है। और सुनते हैं उनका ये सुपरहिट गाना रूही और विश्वजीत की सुमधुर आवाज में।

बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

0: कौन? मैं?
1: यस यस यस यस।
0: क्यों?
1: कोई फूल कोई तोहफा, तुम कुछ भी साथ नहीं लाते, बड़े बहू समझाऊं तुम्हें?

0: सपनों से सुंदर लग रही थी चांदनी बनकर इस गाने में, याद रहेंगी वो हमें हमेशा। रेस्ट इन पीस श्रीदेवी जी, थैंक्स फॉर द मैजिक। श्रीदेवी के जितने सॉन्ग्स करो कम है, इतने सॉन्ग्स हैं, इतनी बातें हैं, पर ट्रिब्यूट पूरा नहीं लग रहा। भरपूर तब होता है ट्रिब्यूट जब भरपूर जी कर जाए वो जिन्हें हम चाहते। ऐसे ही अचानक से बेवक्त बीच में से जब कोई चला जाए, व्हाट डू यू से, हाउ डू यू रिमेम्बर देम। जिस चेहरे में इतनी जान थी वो अब बेजान है, अभी तक यकीन नहीं होता है। इतनी जिंदा दिल परफॉर्मेंस जो दे गई वो अब खुद जिंदा नहीं है, पर रहेंगी ना हमेशा उसी चांदी के पर्दे पर जिसकी वो चांदनी थी, एंड ऑफ कोर्स हमारे दिलों में भी।
1: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम भजनों की सरिता में। लक्ष्मी का सादर प्रणाम। मित्रों, भक्ति गीत प्रार्थना की एक विशेष अंश है, भगवान के साथ एक मिलाप का समय है। प्रार्थना में हम अपने आप को एक ऐसी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं जो

वाह संजीव जी, बहुत खूब। मित्रों, भारतीय परंपरा के कई महान संत थे, जैसे रामानुजाचार्य, संत रविदास, कबीर आदि, जिन्होंने हमें धार्मिकता का सही मार्ग दर्शाया। इनमें से एक थे गुरु अर्जन, जिन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ को संकलित किया

जिसमें पिछले कई गुरुओं के गुरुवाणी शामिल थे। गुरु ग्रंथ साहिब में आधे से अधिक शब्द गुरु अर्जन द्वारा रचित हैं। चलिए एक शब्द सुनते हैं ललिता कृष्णमूर्ति की मधुर वाणी में।

वाह ललिता जी, अति मधुर प्रस्तुति। मित्रों, भक्ति संगीत में ऐसी शक्ति है कि वह सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। संगीत ऐसा सात्विक आनंद है जो जाति, धर्म, लिंग, आयु, वर्ग सभी से परे है। संगीत सबके लिए है। संगीत को न सीमाओं से बांधा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये आबाद धारा सबके लिए सर्वत्र सुलभ है। हमारा अगला गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए इंदी वर्जी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्या शंकर जी।

वाह विद्या जी, इस सुमधुर प्रस्तुति से मन प्रफुल्ल हुआ। मित्रों, हमारे देश के संतों ने समय समय पर यह शिक्षा दी है कि वास्तव में भगवान और उनके नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम भगवान राम से भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि कलयुग में श्री हरि के नाम के जाप से ही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सब में राम और राम में है सब। तुलसी का प्रभु भी वही, नानक का रब भी वही। नाम भजन में ज्योति असीमित। पेश है एक राम धुन जो मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है प्रसिद्ध एल्बम राम श्याम गुण गान में। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागता पॉल और संजय।

संजय जी, हम मन विभोर हुए। मित्रों, भगवान राम एक अवतार पुरुष थे, असाधारण पुरुष थे, करुणा मूर्ति थे। ये सभी के प्रति स्नेह और अपनापन का सामान्य भाव रखते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन हो। वह तो ऐसे करुणा मूर्ति थे जो उनके शत्रु के प्रति भी स्नेही और दयालु थे। चलिए सुनते हैं एक भजन जो श्री अरबिंदो सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा रचाया गया है। इस भजन को स्वरबद्ध किया था जगजीत सिंह जी ने। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय फड़के जी और मैं लक्ष्मी बालचंद्र।

0: बेहद खूबसूरत संजय जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा साथ दिया। मित्रों, सुविचार, सत्संग और निरंतर भगवान के जाप से सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होती है। हम आशा करते हैं आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से प्रकाशित हो।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
0: मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि संकट के समय हम भगवान की ओर रुख करते हैं। हम घोर विनम्रता और प्रत्याशा दोनों के दोहरे रवैया के साथ आते हैं। हम परमेश्वर को आदेश तो नहीं देते, लेकिन हम साहसपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनके सिंहासन के सामने आते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। नक्शलयालपुरी की ये पंक्तियां फिल्म राम नगरी के लिए लिखा गया था। इसे संगीत से सजाया था जयदेव जी ने। इस गीत को मूल रूप से हरिहरन जी और नीलम सानी जी ने गाया है। आपके लिए इस गीत को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय फड़के जी।

वासंदे जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, एक व्यक्ति का आंतरिक जीवन और बाहरी ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। मन एक दर्पण की तरह है, जो कुछ भी सामने आता है वह उसमें प्रतिबिंबित होता है। आप जिस किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी भावनाएं और उसकी मनस्थिति आप पर टिकी रहती है। अगर आप खुश लोगों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। दुखी चीजों के बारे में सोचकर आप दुखी महसूस करते हैं। इसलिए साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस गीत को काजल फिल्म के लिए संगीतकार रवि ने स्वरबद्ध किया था और आशा भोसले जी ने अपने मधुर वाणी से इसे सजाया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मोनिका दश और अनुराधा वैद्यनाथन।

वाह मोनिका जी और अनुराधा जी, अति मधुर प्रस्तुति। हमारे अगले भक्ति गीत में कौशल्या मैया कागर से पूछती है, तुम सच बोलो और मुझे बताओ कि मेरे प्राणों से प्यारे वे लोग कब आएंगे। तुलसीदास जी की गीतावली से ये रचना बैठी सगुन मनावती माता, आइए सुनते हैं संजय हरने जी की आवाज में।

ही सुंदर प्रस्तुति संजय जी, आइए स्वागत करते हैं इस खूबसूरत शिव धुन के साथ। इस पारंपरिक धुन को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय हरने जी, संजय फड़के जी, अनूप शर्मा जी, जय कृष्णन जी, ललिता कृष्णमूर्ति, श्वेता, शोमा सी रॉय, प्रेरणा जकादार, मधुलिका शर्मा और स्वयं मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बेहद खूबसूरत प्रस्तुति, हम सचमुच मन विभोर हुए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम भजनों की सरिता। इस भक्तिमय संगीतमय साधना को प्रस्तुत कर रही थी लक्ष्मी बालाचंद्रन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: आप सुन रहे थे बिंदु व्यास की आवाज में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो आपका अपना रेडियो,
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चाचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा,
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चाचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
0: आज की हमारी सिंगर हैं दुबई की।

जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम भी हमने यही रखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आप सुन रहे हैं राम रेडियो। जी हाँ, स्वतः ही ये नाम मुंह से निकला है और आप तक पहुंचा है। और जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को अनाउंस किया, जयपुर रेडियो के सभी सिंगर्स ने हमें बहुत ही उत्साह दिया और हर्ष से भरे हुए अपने गीत अपनी आवाज में हमें प्रेषित किए। हम उन सब का आदर करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और सभी के गीत हम इस मंच पर इस प्रोग्राम के तहत रखेंगे, जिसका नाम है पायो जी मैंने।

राम रतन धन पायो। और आज की इस संगीत यात्रा की शुरुआत हमने की है दुबई की बहुत ही सुरीली सिंगर संगीता माल्या। कुछ गीतों में आपका साथ देंगे यूके के रवि कुमार। तो शुरू करते हैं ये सुरीली यात्रा का विशेष प्रोग्राम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।

हे राम, तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है। कोई सिंगर बन जाए सहज सौभाग्य है, और ये सहज सौभाग्य जयपुर रेडियो के सभी सिंगर्स को प्राप्त है। राम का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे सभी सिंगर्स पे, लिस्टर्स पे बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम वेलकम करते हैं संगीता माल्या का। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

राम भजन कर मन, राम है स्वनाम धाम, राम है स्वनाम धन, राम धन्य है नाम, राम को प्रणाम, राम धाम को प्रणाम। अयोध्या में आए हैं श्री राम, वो राम जो केशव है, जो माधव है, जो अच्युत है और जो सबके दृष्टा हैं, उस राम को प्रणाम, उस केशव को प्रणाम। अगले भजन में संगीता माल्या, अच्युतम केशवम।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का राम रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रोग्राम पायू जी मैंने राम रतन धन पायू। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं दुबई से संगीता माल्या। हे राम, जग में सबसे सांचा तेरा नाम। हे अवध बिहारी, पधारो, स्वागत है, अभिनंदन है आपका। इस गीतमाला में इसको सफल बनाएं और हमारे सिंगर्स के साथ आप भी गाएं। मैं खोजता रहा अपने आप को, खोजता रहा सच को, लेकिन सच तो केवल केवल और केवल आपका ही नाम है। संगीता माल्या के साथ।

आप सुन रहे हैं राम रेडियो और राम से कृपालु कौन है? कोई नहीं ना, उसकी दयालुता, उसकी कृपालुता को प्रणाम है, शत शत प्रणाम है, अभिनंदन है, स्वागत है।

श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। ये खूबसूरत भजन आपने सुना रवि कुमार और संगीता माचिया की आवाज में। आप सुन रहे हैं राम रेडियो।